आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 29 जुलाई सन 2026 ईस्वी। प्रातः की 5:49 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातः कालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन।
1: यही संसार में न केओ ककरो मित्र अछि आ न केओ ककरो शत्रु। स्वार्थवश मैत्री होइ छ आ स्वार्थ साधन भ गने मैत्रियो समाप्त भ जाइ छ। स्वार्थ टकरे न मैत्री शत्रुता में परिणत भ जाइ छ आ परिस्थितिवश वा कहू जे स्वार्थ साधनक संभावना उत्पन्न भने शत्रुता मैत्री में बदल जाइ छ। कोनो वन में बड़क एकटा विशाल गाछ छल। गाछक जड़ि में बिहड़ी बनाकर एकटा मूस रही छल आ गाछ पर मूसक शत्रु बिलाड़ रही छल। एक दिन बिलाड़ व्याधक फांस में फंस गेल। मूस बिलाड़ के बाझल देख प्रसन्न भेल आ बिहड़ से निकल स्वच्छंद भकर चारू दिस घूमा लागल। तखन ही ओकर नजरि सपनौर पर पड़ले। मूसक गंध पाम ओ फुरफुरा कर उठ कर बैसल छल, साकांक्ष भ गेल छल। गाछक ठाड़ पर बैसल देखलक ओ उल्लू के। उल्लू सेहो मूस पर गृद्ध दृष्टि देने छल। नीचा सपनौर ऊपर उल्लू, आप की कैल जाए। मूस सोचलक जँ बिलाड़ सँ मैत्री क ली तो अनायासे सपनौर आ उल्लूक भय समाप्त भ जाए। ओ बिलाड़ लग आबि कर बाजल, हे बिलाड़, तो फांस में बाझल छ, भोर होते ही व्याधा आबि कर तोरा मारि देतौ। तोहर प्राण संकट में छौ, हमरो प्राण संकट में अछि, दू दूटा शत्रु हमरा पाछा लागल अछि, ई सपनौर आ ओ उल्लू। उचित ई थिक जे हम तोहर रक्षा करी आ तो हमर रक्षा करा। आबा

0: त्रुताकें बिसरि जाए आ मैत्री कहली। रक्षाक आश्वासन पाबि मूस बिलार लग जा कऽ बैस रहल। बिलारक डरे सपनोर आ उल्लू दुनू भाग गेल। मूस शनै शनै फाँस काटऽ लागल। जेना जेना विलम्ब होय तेना तेना बिलारक मृत्यु भय बढ़ल जाय। ओ मूसकें शीघ्रता करक लेल कहे, मुदा मूस सोचे जे जो तुरंत फाँस काटि देबै तऽ ई भुखायल बिलार हमरा खाइए जायत। तैं जखन व्याध समीप आबि जेतै तखन अंतिम फाँस काटबै जे प्राण भयसँ ई भागि जायत आ हमहूँ अपना बिलमे चल जायब। सब फाँस काटि कऽ मूस अंतिम फाँस छोड़ि देलक। फरिच भेलै। व्याधकें जाल लगबैत देखि मूस अंतिम फाँस काटि देलकै। बिलार गाछक छिपंगी पर चलि गेल आ मूस अपना बिहड़िमे नुका रहल। व्याध जाल समेट कऽ चलि जाइत रहल। तखन बिराल मूसके संबोधित कऽ कऽ बाजल, हे मूस, बिलसँ बाहर आबह। व्याध गेल, हमर भय समाप्त भऽ गेल आ तोरो कोनो भय नहि, तो हमरा संरक्षणमे छह। बाहर आबह, निर्भय विचरण करह, हमरा दुनू गोटेक मैत्री स्थिर रह। मूस उत्तर देलकै, तों तऽ हमर घोर शत्रु छह। स्वार्थवश हम दुनू गोटे किछु कालक हेतु मित्र बनि गेल रही। तों हमरा पराक्रममे मुक्त भेलह आ हम तोरा पराक्रम। आब परस्पर अनुग्रह समाप्त अछि। आब हमरा खा लेबाक अतिरिक्त तोरा हमरासँ कोनो काज नहि भऽ सकै छौ। आब तँ ओतहिसँ हमर कुशल कामना कर। एहि लघुकथाक अभिप्राय एतबे जे शत्रुता आ मैत्री निष्कारण नहि होइ छै। बुद्धिमान व्यक्ति सांसारिक सम्बन्धकेँ एहि दृष्टिएँ देखै छथि।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज ऑन EIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा। अब प्रस्तुत है किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज का विषय है सूक्ष्म पोषक तत्व का महत्व। जानकारी दे रहे हैं गोपी चंद्र झा।

श्रोता लोकनि सुप्रभात। आजुक कृषि चर्चा के संग उपस्थित छी हम गोपी चंद्र झा। सूक्ष्म पोषक तत्व ओ विटामिन और खनिज अछि जेकर आवश्यकता हमर शरीर और पौधा के बहुत कम मात्रा में होइत अछि, मुदा ई स्वास्थ्य वृद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लेल बेसी महत्वपूर्ण होइत अछि। शरीर के लेल महत्वपूर्ण रोग प्रतिरोधक क्षमता ई शरीर के संक्रमण और बीमारी से लड़े के शक्ति देत अछि। ऊर्जा उत्पादन भोजन के ऊर्जा में बदलने और तंत्रिका तंत्र के स्वस्थ राखे में मदद करत अछि। कोशिका मरम्मत हड्डी के स्वास्थ्य मस्तिष्क के विकास और कोशिका के मरम्मत के काज करत अछि। गाछ और कृषि के लेल महत्व विकास और पैदावार लोहा जस्ता और बोरान जेहन तत्व गाछक वृद्धि और फसल के गुणवत्ता बढ़ाबैत अछि। एंजाइम सक्रियता गाछ के आंतरिक जैविक कार्य और प्रकाश संश्लेषण के उचित तरीका से चलावे में मदद करत अछि। पौधा के लेल आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व के कुल संख्या 8 होइत अछि, जखन कि मानव पोषण में सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत विटामिन और खनिज आबैत अछि। पौधा के स्वस्थ रहने और बढ़वाक लेल कम मात्रा में एहि 8 सूक्ष्म पोषक तत्व के आवश्यकता होइत अछि। लोहा मैग्नीज जस्ता या जिंक तांबा या कॉपर बोरॉन मोलिब्डेनम क्लोरीन और निकेल। मानव शरीर के स्वस्थ रखबाक लेल मुख्य रूप से 2 श्रेणी में सूक्ष्म पोषक तत्व का आवश्यकता होइत अछि। विटामिन कुल 13 प्रकार के विटामिन होइए, जेमे विटामिन ए विटामिन बी समूह सी डी ई और के। आ खनिज में शरीर के कई टा प्रकार के खनिज का आवश्यकता होइत अछि, जेमे लोहा जस्ता आयोडीन और तांबा प्रमुख अछि। मानव आहार से संबंधित अधिकांश चर्चा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और स्वस्थ वसा के इर्द गिर्द घूमित अछि। ई हमर पोषण संबंधी आवश्यकता के मुख्य

0: बनाबैत अछि। एहि लेल एकरा बृहद पोषक तत्व कहल जाइत अछि। परञ्च एकरा अतिरिक्त हमर पोषण संबंधी आवश्यकता के एकटा छोटगर परञ्च महत्वपूर्ण हिस्सा सूक्ष्म पोषक तत्व नामक एकटा संपूर्ण वर्ग द्वारा पूरा कयल जाइत अछि। एहिमे विटामिन, खनिज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, एंजाइम और सह एंजाइम शामिल अछि। सूक्ष्म पोषक तत्व हमर शरीर के लिए महत्वपूर्ण अछि, किया तो विभिन्न चयापचय कार्य करैत अछि या नियंत्रित करैत अछि। विटामिन संक्रमण से लड़े में मदद करैत अछि, तंत्रिका तंत्र के स्वस्थ रखैत अछि, भोजन से ऊर्जा उत्पन्न और मुक्त करैत अछि, ओ रक्त के उचित ढंग से जमे में सहायता करैत अछि, प्रोटीन और कोशिका के निर्माण करैत अछि, कोलेजन बनाबैत अछि, हड्डी के निर्माण करैत अछि, दृष्टि के रक्षा करैत अछि, एक दोसरक संग अनुकूल रूप से क्रिया करैत अछि और समग्र रूप से शरीर के रक्षा करैत अछि। किछु सूक्ष्म पोषक तत्व शरीर द्वारा संश्लेषित होइत अछि परञ्च बेसीतर नहि। एकर अलावा शरीर में बहुत दिन तक बहुत समय तक संग्रहित रहला पर ओ कम भऽ जाइत अछि या विघटित भऽ जाइत अछि। इएह कारण अछि कि ओकरा नियमित रूप से भोजनक माध्यम से पुनः प्राप्त केनाइ आवश्यक अछि। आ विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्व हुनक जे भूमिका अछि, जेना कैल्शियम हड्डी और दाँत के स्वास्थ्य के लेल महत्वपूर्ण, ई डेयरी उत्पाद, हड्डी सहित खाए जाय वाला मांस, हरी पत्तेदार तीमन तरकारी कैल्शियम से फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ में पाएल जाइत अछि। विटामिन सी प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि। एकटा एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में ई कोशिका के उम्र बढ़वा के कारण बने वाला फ्री रेडिकल से लड़े में मदद करैत अछि। ई खट्टा फल, अंगूर, चेरी, केल आ लाल मिर्च आदि में पाएल जाइत अछि। ओमेगा थ्री ई रक्त संचार प्रणाली, मस्तिष्क कार्य प्रणाली और मनोदशा के नियंत्रित करैत अछि। ई तैलीय मछली, मछली के तेल, शैवाल के तेल, भांग के बिया आदि में पाओल जाइत अछि। आ विटामिन डी में हड्डी और आंत के स्वास्थ्यक लेल अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन डी शरीर द्वारा सूर्य के रोशनी के संपर्क में आबे पर संश्लेषित होइत अछि। ई वसायुक्त मछली, ब्रोकली, अनाज और अंडा के जर्दी में पाओल जाइत अछि। आयरन संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन के वाहक होइत अछि और एहि कारण रक्त के रंग लाल होइत अछि। आयरन के कमी या एनीमिया से ल्यूपस जेहन ऑटोइम्यून विकार उत्पन्न भऽ सकैए। ई पालक, अमरंथ, चुकंदर, बीन्स, क्लैम और लीवर में पाएल जाइत अछि। तऽ एहि के संगे आजुक कृषि चर्चा के समय सम्पन्न भेल। गोपी चंद्र झा के आज्ञा दिया, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा। अब हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।
2: कुछी पुलों में हिंदी, पुलों में हिंदी और अंग्रेजी में।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
4: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
3: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
5: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
3: वहीं भाजपा सांसद बासुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न

0: शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
1: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बासुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाऊ श्रीकृष्ण देवरियालू और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिस्टर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मढ़गांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं। टिकट की बुकिंग 1 अगस्त से सभी टिकट काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
3: दांत में छेद या दांतों का क्षरण दांतों के उस हिस्से को कहते हैं जो दांतों के प्लाक में कीटाणुओं द्वारा तैयार एसिड से नष्ट हो जाता है। प्लाक एक ऐसी चिपचिपी परत को कहते हैं जो म्यूकस, लार, अन्नकण और कीटाणुओं से बनी होती है। दांतों की क्षरण या छेद एक बहुत ही आम बीमारी है। खासकर जानकारी के अभाव और अशिक्षा की वजह से लोग इस रोग से अपेक्षाकृत अधिक पीड़ित होते हैं। दांत में छेद या क्षरण का असली कारण है प्लाक। प्लाक के भीतर मौजूद कीटाणु मुख्य रूप से शक्कर और भोजन में मौजूद स्टार्च पर ही पनपते हैं और बढ़ते हैं। ये कीटाणु एसिड तैयार करते हैं जो धीरे धीरे दांतों का इनामिल नष्ट करके दांतों में छेद या कैविटी तैयार कर देता है। दांतों की चबाने वाली बाहरी सख्त

0: चमकदार परत को एनामल कहते हैं। एक बार एनामल नष्ट होने के बाद एसिड दांतों की नर्म भीतरी सतह पर हमला करता है, इससे दांतों में दर्द भी होता है और छेद भी बड़ा होता जाता है। इसके बाद कीटाणु दांतों के बीच में मौजूद पल्प के खुले हिस्से को अपना शिकार बनाते हैं और स्नायु को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण दांत निकलवाने की आवश्यकता पड़ जाती है। इसके लक्षणों में अक्सर शुरुआत में दांतों की सड़न से कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन एक बार इस सड़न के कारण दांतों के सख्त और बाहरी हिस्से का ज़्यादा भाग नष्ट होने के बाद कोई भी गर्म, ठंडा या मीठा पदार्थ खाते समय दांतों में तेज दर्द होने लगता है। दर्द के अलावा सांस में बदबू आना आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके निदान के मुख्य दो हिस्से हैं, पहला दांतों को सड़न से बचाने के उपाय और दूसरा सड़े हुए दांतों का उपचार। सड़न से बचने के उपायों में प्रमुख हैं दांतों की जीवन के शुरुआती दिनों से ही सही देखभाल, जिसमें अभिभावक एवं शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, और बच्चों को नियमित ब्रश करने, अधिक टॉफी, मिठाई या दांतों पर चिपकने वाले पदार्थ से बचने के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा हर 6 महीने पे दांतों का डेंटिस्ट से जांच अधिक आवश्यक है। सड़े हुए दांतों के उपचार के लिए अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें और छेद का फिलिंग करा लें। अगर सड़न से दांत का स्नायु नष्ट हो गया हो तो रूट केनाल द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है, और ऐसे दांत इलाज के बाद वर्षों आपका साथ निभा सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आप सुनिए भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले ये देशगान।

संबित स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भजन के अंतर्गत देशगान। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। अब सुनिए कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहला ये भजन जो कि गणेश जी को समर्पित है। स्वर है एल नितेश का।

अनूप जलोटा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR ऐप। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है सोनू निगम का।

इसी भजन के साथ भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है रामचरितमानस का। मुख्य स्वर है वाणी जयराम का।

देवाधिदेव महादेव तथा पार्वती का धाम, पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, जिस पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो सभी ऋतुओं में समान रूप से हरा भरा रहता है, शीतल स्निग्ध छाया देता है, जहां मंद सुगंधित वायु बहती रहती है। ये स्थान शिवजी का विश्राम स्थल है। इसी वृक्ष की शीतल छाया में शिव इस मुद्रा में बैठे हैं, जैसे स्वयं शांत रस मूर्तिमान हो उठा हो। सुअवसर पाकर पार्वती वहां आती हैं। आदर सत्कार की भंगिमा के साथ शिवजी ने उन्हें अपनी बाईं ओर आसीन किया। पार्वती को अनायास अपने पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी की प्रशस्ति करते हुए उन्होंने श्री रघुनाथ की कथा सुनी।

रामचरित मानस का अभी आप सुन रहे थे प्रसारण आकाशवाणी की दरभंगा केंद्र से किया गया। जानकारी प्राप्त कीजिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला 7:05 पर। उर्दू प्रोग्राम अंजुमन आप सुना करते हैं 9:10 से। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे दिन के 10:00। 10:30 पर समय होगा लोक गीत का।

शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे दिन के 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुना करते हैं 11:30 से। फिल्म संगीत का समय होगा दिन के 12 बजे।

बानो को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार आप सुना करते हैं 12:30 से। देशभक्ति गीत का समय होगा 1:10 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 1:15 से। रोजगार सूचना आप सुना करते हैं 2:10 से। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 2:30 से।

सुगम संगीत का समय होगा दोपहर 3 बजे। सांतकालीन सभा के अंतर्गत आप सुनेंगे युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवावाणी के अंतर्गत तरुण कुसुम संध्या 5 बजे। विद्यापति गीत आप सुना करते हैं संध्या 6:10 से।

ग्रामीण भाइयों को संबोधित कार्यक्रम गांव घर आप सुना करते हैं संध्या 6:30 से। किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी का समय होता है संध्या 7:00। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 7:52 से। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का समय होता है 8:15 से।

चर्चा का विषय है। यह कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 से, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से लेकर आपको सुनवाएंगे। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे रात 10 से। और फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों के रंग का समय होगा रात 10:30 से।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, क्रमशः संस्कृत में, फिर हिंदी में।

0: यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की, एक ऐसा घोल जो शरीर को निर्जलीकरण से बचाकर जीवन रक्षक
1: बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नागरिक केंद्रित शासन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि भारत की जनता प्रत्येक निर्णय और नीति के केंद्र में रहनी चाहिए। लोकसभा में आज लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन

0: रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल

0: ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
1: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को एक क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई। पीठासीन अधिकारी संध्या रॉय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। भारत समुद्री नाविक उपलब्ध कराने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। वैश्विक जहाजरानी उद्योग में भारत ने 3,11,936 समुद्री पेशेवरों का योगदान दिया है। BIMCO, ICS, Seafarer, Workforce रिपोर्ट 2026 के अनुसार अब वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत का 12.16% का हिस्सा है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक जहाजरानी मार्गों को प्रभावित कर रहे बढ़ते भू राजनैतिक तनावों के बीच संघर्ष संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापारिक जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों की समीक्षा की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलबीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला,
1: नमस्कार मिथिला सुननिहार, समस्त श्रोता लोकनि के आशीषक नमस्कार
0: और शिवशंकर का भी नमस्कार।
1: और जेना कि हम सब नमस्कार मिथिला में शुरुआत जे करै छी से सुविचार से करै छी।
0: उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का।
1: निश्चित तौर पर जा धरि हम सब सफल नहीं भऽ जाइ छी हमरा अहाँके रुकबाक नहीं चाही, किएक तऽ कए बेर एहन होइत अछि कि हम अहाँ कोनो काज के शुरुआत तऽ करै छी, आधा से बेसी जखन ओ काज खत्म भऽ जाइत अछि ताहिमे कोनो ने कोनो एहन समस्या आबैत अछि तऽ बुझाइत अछि कि आब ई काज के बंद कऽ दियौ, और ओ बंद कऽ दै छी हमसब। और बुझियौ तऽ आधा से बेसी मेहनत बर्बाद भऽ जाइत अछि, ताहि दुआरे कनिए अगर अहाँ ओ समस्या तऽ सब चीज मे अछि दुनिया मे, जखन हम अहाँ एलहुँ हँ तऽ समस्या के संगे आयल छी, हमरा अहाँके ई सोचबाक अछि कि ओकर समाधान केना हमसब कऽ सकै छी, किएकि कोनो एहन समस्या नहि छै जकर समाधान

0: हुए। एकटा छोट सनक अगर विचार करियौ, आइ से 5 साल 6 साल 7 साल पहिले हम आइ के दिन यानी कि 29 जुलाई के अगर गप करी या फिर आइ कोनो डेट के गप करी तऽ सोचैत रही आइसँ 5 साल बाद हमसब केना रहब, आइ तऽ 5 साल बाद हमरा ई हेबाक चाही, एना हेबाक चाही। आओर आइ वएह ओ 5 साल के बाद वाला दिन अछि जे पर हमसब आइ अहाँके भोरे भोर आइ नमस्कार मिथिला सुनि रहल छी। तऽ कतौ ने कतौ हम अहाँ रुकै नहि छी, जिंदगी नहि रुकैत अछि। तहिना जखन जिंदगी नहि रुकैत अछि तऽ हमर अहाँके ई एक तरह से बुझियौ कि कर्तव्य बनैत अछि कि हमहूँ अहाँ नहि रुकी,
1: आगू बढ़ैत रही। जिंदगी चलने का नाम है, रुकना थकना मना है।
0: आओर जे आदमी रुकै नहि छथि से इतिहासमे सेहो नाम करै छथि। आओर आइके दिन इतिहासमे क्या महत्वपूर्ण अछि ताहिपर चर्चा कऽ ली।
1: जी,
0: आइक दिन 1876 साइंस एसोसिएशन के स्थापना भेल छल। आओर आइके दिन 1904 भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति जेआरडी टाटा के सेहो जन्म भेल रहन। आओर 1911 मोहन बगान पहिल बेर IFA शील्ड पर अपन कब्जा जमौने रहत। और गप करी आइ के दिन तो 1980 मास्को ओलंपिक में भारत हॉकी के स्वर्ण पदक जीतल छल। और 1982 दिलीप बोस के डेविस कप देश सबके प्रबंधन के लेल चुनल गेल छलन। और पहिल चालक रहित विमान का परीक्षण कैल गेल आइए के दिन 1983। और भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौता पर हस्ताक्षर सेहो आइए के दिन 1987 भेल छल। और महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा टेस्ट क्रिकेट में 624 के विश्व रिकॉर्ड साझेदारी केने छलत आइए के दिन 2006। और पहिल बेर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनबै के निर्णय सेहो आइए के दिन 2010 लेल गेल छल। तऽ ई जानकारी हमसब प्राप्त करैत रही आइ के दिन इतिहास में क्या महत्वपूर्ण अछि।
1: अभी इतिहास के बारे में जाने और इतिहास के बाद आप आइए वर्तमान में, और वर्तमान में हम आपको सुनवाते हैं कुंज बिहारी मिश्र के स्वर में एक मैथिली सुगम संगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
3: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन,
4: 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का, 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का।
5: देश हो रहा है आयुष्मान।
4: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हाल चाल से अभी आप सुन रहे थे मैथिली सुगम संगीत विज्ञापन से पहले। आप सुनिए सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधि पर आधारित कार्यक्रम हाल चाल, जिसको लेकर उपस्थित हैं आशीष कुमार सिंह।
3: धन्यवाद शिवशंकर जी। आजुक सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि पर आधारित हाल चालक संग हम आशीष। सहरसा के एमएलटी कॉलेज खेल मैदान में दू दिनक श्री व्यास गुरु पूर्णिमा महोत्सव के शुभारंभ भेल। स्वामी अगमानंद जी महाराज के सानिध्य में आयोजित एहि कार्यक्रम में बहुत रास गणमान्य लोक सब उपस्थित रहत। समस्तीपुर मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के बैसार में सुपौल स्टेशन और कोसी क्षेत्र के रेल समस्या सब पर गपसप भेल। सदस्य सब के सुझाव से बहुत रास यात्री सब के फायदा हेतन। ग्रामीण महिला सब के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनबई के लेल गाम गाम धरि सुधा के दुग्ध उत्पाद के पहुंच सुनिश्चित करे के लेल बिहार सरकार एकटा बहुत पैघ पहल शुरू केलत है। जीविका और बिहार राज्य दुग्ध सहकारी महासंघ के संयुक्त योजना के अंतर्गत राज्य के सबटा 38 जिला में के पंचायत सब में चरणबद्ध तरीका से सुधा बिक्री केंद्र खोलल जायत। योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से जुड़ल जीविका दीदी सब गाम में रोजगार के हुनका सबके अवसर भेट रहल छन। एहि के लेल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कऽ देल गेल अछि। पिपरा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायत सँ राशन कार्ड बनबाबे के लेल और नाम संशोधन के लेल प्राप्त लक्ष्य से बेसी आवेदन प्राप्त भेल अछि। गरीब लोक सबके राशन कार्ड बनबे के लेल विभाग के दिशा निर्देश देल गेल अछि, जेकरा लेल जिला प्रशासन महाअभियान चला रहल छथि। एहि अभियान के अंतर्गत छूटल पात्र लाभुक सबके राशन कार्ड बनबे के लक्ष्य राखल गेलन हैं। पिपरा प्रखंड में 2598 टा राशन कार्ड बनबे के लक्ष्य देल गेल छल, जे पूरा कऽ लेल गेल अछि और कार्ड बनबे के प्रक्रिया एखनो चलि रहल अछि। श्रावणी मेला के अवसर पर श्रद्धालु सबके सुविधा के लेल रेलवे विशेष ट्रेन के परिचालन शुरू केने छथि। इस श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन जयनगर से आसनसोल के बीच सप्ताह में 3 दिन चलत। 31 जुलाई से एक यात्रा शुरू है जो 30 अगस्त धरि रहत। एहि से देवघर आबे जाय वाला लोक सबके

0: सुविधा हेतन। मधुबनी जिला के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा सबके मजबूत करे के दिशा में नबका पहल भेल अछि। जिला के 10 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नव भवन के निर्माण कयल जायत। एहि में कलवाही प्रखंड के लोहा सेहो शामिल अछि। एकर अलावा बाबूबरही के रामपुर व और घंघोर, घोगडिया के ब्रह्मपुर आ खोपा, जयनगर के कमलाबाड़ी, झंझारपुर के इमादपट्टी, कलवाही के लोहा, लदनिया के पिपराही और मधेपुर के भीट भगवानपुर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण के प्रक्रिया आगू बढ़ गेल अछि। जोड़ला के सोनेलाल महतो प्लस टू हाई स्कूल में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन कयल गेल। सत्यनेश्वर प्रसाद के अध्यक्ष बनाल गेलन हैं। सबटा सदस्य विद्यालय के सुविधा सब पर चर्चा कैलथ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बढ़वे पर के आवश्यकता पर जोर दलथ। नवतोल रेलवे गुमती के लग बरसों पहले से उपयोग में आबि रहल सड़क संपर्क के फिलहाल एखन बंद नहीं कयल जायत। एहि संबंध में अंतिम निर्णय जाधरि नहीं भऽ जायत अछि, एहि स्थल पर रेलवे निर्माण कार्य नहीं करतत। ये निर्णय काल्हिखन मंगल दिन SDM टोनी कुमारी दिशा स्थल के निरीक्षण कला के बाद संबंधित विभाग के अधिकारी सबके संगे बैसार में लेल गेल। अपने सब सुन रहल छी हालचाल।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: श्रावणी मेला के मौका पर शिव भक्त सबके सुविधा आ सुरक्षा और बाबा गंगेश्वरनाथ के चल अचल संपत्ति के संरक्षण के लेल काल्हि मंगल दिन बाबा गंगेश्वरनाथ महादेव मंदिर न्यास समिति के कार्यालय में न्यास समिति के अध्यक्ष सह सदर SDO कुमार गौरव के अध्यक्षता में न्यास समिति के एकटा अहम बैसार भेल। दरभंगा के बेटी कीर्ति चंदन देश के प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंडिया 2026 में द्वितीय रनर अप के खिताब जीतलत। ओ ब्यूटी विथ पर्पस, बेस्ट इन नेशनल कॉस्ट्यूम और बेस्ट इन टैलेंट जेहन तीन प्रतिष्ठित सम्मान अपन नाम कैलथ। दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यरत आ सेवानिर्मित कर्मी सबके बकाया आ लंबित वेतन पेंशन के लेल 2 दिवसीय विशेष शिविर आयोजित कयल गेल छल। एहि शिविर में 200 से बेसी आवेदन प्राप्त भेल। दरभंगा में 52वां बिहार राज्य स्तरीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता के तैयारी के लेल बालक वर्ग के प्रशिक्षण शिविर कुमार सिंह कॉलेज में काल्हि यानी मंगल दिन से शुरू भ गेल। एहि में 20 खिलाड़ी भाग लऽ रहल छथि। जिला सीनियर डिवीजन क्रिकेट लीग के फाइनल में काल्हि मंगल दिन भासवान और त्रिपुरारी के शानदार बल्लेबाजी के बदौलत मिथिला क्रिकेट क्लब आजाद क्रिकेट क्लब के 60 रन से हरा कर विजेता ट्रॉफी पर अपन नाम कह ललत। अपने सब सुन रहल छी हालचाल।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: एखन अपने सुन रहल छी हालचाल। श्रावणी महोत्सव 2026 के बाबा मटेश्वर धाम में तैयारी अंतिम रूप में अछि। तपस्वी सबके संख्या बढ़े के कारणे सुरक्षा आ सुविधा सब पर ध्यान देल जा रहल अछि। 70 कटैया में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में गुरुपूजा पूर्णिमा महोत्सव के तैयारी पूरा भ चुकल अछि। आश्रम के सजाओल गेल अछि। भोरे 7 बजे से कार्यक्रम शुरू अछि। एहि में सत्संग, भजन कीर्तन आ भंडारा के आयोजन हैत। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सुपौल के बाबूजन विशेश्वर बालिका उच्च विद्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान के आयोजन भेल।

0: कक्षा 9 से 12 धरि के छात्रा सब बढ़ चढ़ के इमें भाग लेलत। जागरूकता के उद्देश्य से क्विज, भाषण, पेंटिंग, रंगोली आ निबंध प्रतियोगिता में अपन प्रतिभा देखौलत। मधुबनी में स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के लिए जिला प्रशासन तैयारी तेज कर देने छथि। समारोह 15 अगस्त के 9 बजे दिन में आयोजित हैत। एहि संग सम्पन्न होइत अछि आजुक हालचाल।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: हालचाल के बाद पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार मिथिला में। आप जानिए आज का मौसम। मौसम विभाग द्वारा जारी 29 जुलाई से 2 अगस्त तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में आमतौर पर मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। कहीं कहीं हल्का वर्षा हो सकती है। 30 एवं 31 जुलाई के आसपास कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और न्यूनतम तापमान 24 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इस अवधि में सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता लगभग 80 से 85% तथा दोपहर में सापेक्षिक आर्द्रता 40 से 45% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान हवा मुख्यतः पूर्वी दिशा से 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है।
0: देखें हम सब मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करते रहे और एकर हिसाब से अगर देखी तो कतौ कतौ हल्का से मध्यम वर्षा होने की संभावना मात्र व्यक्त कैल गेल अछि। तो एखनो गर्मी जे अछि प्रचंड गर्मी पड़ि रहल अछि से कर कारणे अहाँ के धान के खेत में सेहो दिक्कत भ रहल अछि और लोक सब बीमार सेहो पड़ि रहल छथि। एहन में हमरा अहाँ के कहे छै कनी सतर्क रहबाक चाही। घर से निकले छी तो पानि जरूर पीबी और माथ के ढक के राखी और जे कोनो आदमी अगर मेहनत वाला काज करे छै तो बीच बीच में अहाँ के आधा घंटा 45 मिनट घंटा भरि में अहाँ के आराम जरूर कऽ लेत। 5 मिनट आराम कऽ के किछु अहाँ के किछु आराम केला के बाद पानि शरीर के भीतर पूरा हेबाक चाही।
3: हो सके जी जी हो सके संभव अगर हो तो कुछ हल्का नाश्ता भी कर ले, कुछ खा भी ले।
0: हाँ, क्योंकि अखन के समय में बच के रहबाक अछि, क्योंकि अस्पताल में मरीज सबके संख्या ज्वर बुखार सर्दी के लगातार बढ़ रहा अछि। तो इएह दिशा में अछि कि हम अहाँ कनी अगर सावधानी रखब तो हमरा अहाँ के सब कोई हम सब सुरक्षित रह सकै छी।
3: और कहावत है सावधानी गई दुर्घटना हुई। अगर आप सावधान नहीं रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ना संभव है।
0: ताहि दुआरे सावधान रही और सावधान के संगे संगे समय के संग चलबाक चाहिए और कार्यक्रम में सेहो हमसब समय के संग चली और अपन श्रोता सबके किया ने एकटा गीत सुनबियन।
3: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम आपकी मन की बात समझ रहे हैं।

0: नमस्कार, मैं आशीष और अभी मेरे साथ हैं एडवोकेट तनवीर हसन आजाद। तनवीर जी, एडवोकेट होने के अलावा आप व्यायाम से जुड़े हुए हैं, तो इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ?
1: नमस्कार आप सभी को, मैं अधिवक्ता तनवीर हसन, और जैसा कि हमसे पूछा आपने कि मैं इस क्षेत्र में कैसे आया, तो पारंपरिक तौर पे ये हमारा शौक ही नहीं, ये हम लोगों के पूर्वजों में चला आ रहा है और हम इसमें आज नहीं बरसों से, जब स्कूल लाइफ में थे तब से इंटर किया, इंटर ग्रेजुएशन LLB CM साइंस कॉलेज से करने के बाद जब मैं पैरामिलिट्री फोर्स में गया तो वहाँ फिजिकल ट्रेनिंग कोच की मैंने ट्रेनिंग ली, और उसके बाद जब मैं दरभंगा सिविल कोर्ट ज्वाइन किया तो साथ में यहाँ ग्रुप हेल्थ सुरक्षा संस्थान जो हेल्थ के लिए काम करती है, नशा मुक्ति और स्वच्छता अभियान के लिए काम करती है, लगातार पिछले 1999 से, चूँकि मैं फिजिकल ट्रेनिंग कोच था तो यहाँ आर्मी नेवी एयरफोर्स में बच्चे लोग आते ट्रेनिंग लेने के लिए, NCC के बच्चे आते, सभी आते, तो लाखों बच्चे यहाँ पिछले 26-27 साल में ट्रेंड हुए। दरभंगा का सबसे पुराना फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर है ये, और पुराने तरीके से ही सुसज्जित है आज भी। और फिजिकल ट्रेनिंग में हम लोग वेट पे, अंडर वेट, ओवर वेट और एक्सरसाइज के माध्यम से बैक मसल्स और रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, बैक मसल्स या ऑस्टियोथेराइटिस या ज्वाइंट पेन या ओवर वेट से होने वाले प्रॉब्लम्स को हम लोग इसी से ठीक करते हैं। और आज भी सिर्फ ये है कि लोगों में जागरूकता जो होनी चाहिए, लोगों के पास समय था और मोबाइल का माध्यम नहीं था। पहले हम लोग जब स्टूडेंट थे तो लोग जो है मैदान में, व्यायामशाला में, दलों में जा जा कर, कसरत और अखाड़ों में जा जा कर हम लोग इसकी प्रैक्टिस किया करते थे। महिलाएं हो, लड़कियां हो, हम लोगों की छात्र हो, हम लोग खुद हो, सब लोग करते थे। लेकिन आज मोबाइल होने के साथ साथ लोगों का सिटिंग ओबेसिटी भी बढ़ा है, जिसके वजह से लोगों का पेट, एब्लोइक्स, जॉइंट्स, पेन ये सब भी बढ़ा है। मोबाइल की लत भी कम से कम करें, लोग एक ही जगह बैठ बैठ के जो है 8-8, 10-10 घंटे मोबाइल चलाते हैं, सारा काम कंप्यूटराइज हो गया है, तो कंप्यूटर में और एक्सरसाइज करने के दरमियान भी लोगों को मूवमेंट बनाए रखना चाहिए। हर 45 मिनट के बाद कम से कम 5 मिनट मूवमेंट होना चाहिए बॉडी में, और एक्सरसाइज के माध्यम से ज़रूरी यह है कि हम अपने लिए सुबह या शाम, हम खुद भी आज 54-55 हमारा एज हुआ तो खुद भी हम वर्कआउट करते हैं तभी करा पाते हैं, और आज भी हम फिट हैं, 6 फीट हाइट है हमारा और 85-90 के बीच में वेट कंसंट्रेशन मेरा रहता है। तो ये मेरा रहेगा कि छात्र युवाओं को कि ये ध्यान रखे कि आप एक युवा और जब जवान रहते हैं, जब यंग रहते हैं तो नेचुरल बॉडी होती है और नेचुरल ईश्वर का दिया हुआ सारा सिस्टम मेरे बॉडी में फीड होता है, लेकिन जब एज बढ़ती है तभी लोग वर्कआउट और व्यायाम और योगा इस सभी चीज़ों से लोग दूर होते चले जाते हैं, जो कि 25-30 जब हम क्रॉस करते हैं और बॉडी का सेल, मसल्स, कैल्शियम्स उस प्रचुर मात्रा में जब बनना बंद हो जाए तो उस पीरियड में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है। जब हम 25-30-35 क्रॉस कर रहे होते हैं, जब हमारा उम्र बढ़ रहा होता है, उम्र सीमा हमारी बढ़ रही होती है, तो हमको निश्चित अपने स्वास्थ्य को ध्यान देना चाहिए। और जैसे जैसे वेट एज बढ़ता है, थोड़ा वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, थोड़ा स्टेयर अप एंड डाउन, सीढ़ी चढ़ना उतरना, जनरली ओवरवेट होने के साथ साथ लोग जो है सीधा सीधा जॉगर पे दौड़ जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ जगह पे दौड़ जाते हैं, थोड़ा उससे बचें और प्रॉपर कोच की निगरानी में ही वर्कआउट करें। आजकल जिम सेटअप हर गली मोहल्ले, चौक चौराहे खुल गए हैं शौक के तौर पे, जो लोग जानते हैं वो जाके कर लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन जो नए लोग हैं वो भी जाते हैं, तो वहाँ कोच अगर अवेलेबल ना है तो वहाँ इंजरी लेने का कोशिश ना करें, अपने से कोई बगैर जाने हुए व्यायाम ना करें, कौन व्यायाम, कौन इंस्ट्रूमेंट, किस वेट में, किस एज में, किस फिजिकल स्टेटस पे ज़रूरी है अप्लाई करना, उस आधार से ही हम मशीन का प्रयोग करें, जो जानना ज़रूरी है, जो कोच का काम है बताना। ज़्यादातर जो है जिम में यहाँ कोच ना होने की वजह कर हम लोग गलत धारा में वर्कआउट और एक्सरसाइज करते हैं, जिसके वजह से हमको परिणाम खराब मिलता है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि बस जिम में जाके भारी भारी मशीन को खींच लेना, उठा लेना, ओवर वेट है, 100 किलो, 80 किलो, 75 किलो वेट है ले, और

0: वो जॉगर पे धाम धाम दौड़ रहे हैं, घुटने खराब कर रहे हैं। एक्सरसाइज बड़ा ग्रेजुअली धीरे धीरे धीरे धीरे, एक लंबे समय में जब हम अपने शरीर को खराब करते हैं तो एक लंबा समय भी लगता है उसको अपने शेड्यूल में लाना, शरीर को तो केयर करना होता है कि हमारे स्किन के लिए केयर कैसे करना है, हमको अपने मसल्स को केयर कैसे करना है, हमको अपने कैल्शियम को कैसे मैनेज करना है, अपने डाइट प्लान को कैसे मैनेज करना है। अब हम जितना वर्कआउट करते हैं, जितनी कैलोरी बर्न करते हैं, उससे ज़्यादा के ज़्यादा जाकर हम किसी ठेला पर किसी गली में बहुत खा लेते हैं। खाना चाहिए ठीक है, लेकिन आप उस लेवल का अगर वर्कआउट करते हैं तो बॉडी में कंज्यूम भी होना चाहिए। बॉडी में कंज्यूम नहीं हो रहा है और सभी स्टोर हो रहा है, तो ये एक बड़ी ख़राब मतलब प्रक्रिया है बॉडी के लिए। निश्चित इस चीज़ का ध्यान रखें। हमको लगता है कि आने वाले समय में ये मोबाइल और बहुत सारे सिस्टम हमारे पेपरलेस हो जाएंगे, तो निश्चित हम लोगों को चेयर ज़्यादा पकड़ना पड़ेगा। तो चेयर जब भी ज़्यादा पकड़ना पड़ेगा तो हम लोगों को वर्कआउट भी सुबह शाम ज़्यादा करना होगा, 25 मिनट 30 मिनट 40 मिनट करना होगा अगर हमें स्वस्थ ज़िंदगी जीना है तो। और निश्चित इस चीज़ का ध्यान रखें, और एक्सरसाइज जीवन से मृत्यु तक बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरीके से आस्था और ईश्वर में आस्था ज़रूरी है, प्रार्थना ज़रूरी है, उसी तरह से व्यायाम भी ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।
1: धन्यवाद। एखन हमसब किछु मिथिला के आवाज के अंतर्गत गप करैत रही, जानकारी प्राप्त करी तनवीर हसन से। और व्यायाम जे छै जीवन के हिस्सा निश्चित तौर पर हमरा अहाँके बनेबाक चाही। एखुनका जे खास कऽ के जे एखुनका समय चलि रहल अछि, जाहिमे लोक मैदान से दूरी बना चुकल छथि, पहिले हम अहाँ चाहे पैघ रहत चाहे छोट रहत, घुमै लए टहलै लए या फिर कोनो कारणे चलैत रही, मुदा आब चलनाइ बंद भऽ गेल है।
2: अब के बच्चे सिमट गए हैं सिर्फ मोबाइल तक। पहले के बच्चे थे कि मैदान में जाते थे, तरह तरह के खेल खेलते थे, जिससे उनका फिजिकल बना रहता था। आज के हैं कि कोई भी फिजिकल वर्क होता ही नहीं उनसे, और पूरी दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, सिर्फ एक खेल ही बच गया है मोबाइल का। पहले के बच्चे जाते थे मैदान में तो आपको फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, कबड्डी है, ये जितने भी खेल थे सब उनके फिजिकल के लिए बहुत ही फायदेमंद थे।
1: निश्चित तौर पर तै दुआरे एखुनका समय में हमरा अहाँके लेल जरूरी भऽ जाइत अछि कि अगर चल ली बहुत नीक, चल नहीं पबै छी तो एकटा नीक कोच के जतय रहे ओहि जिम में जाए, क्योंकि जिम के किछ बाढ़ सनक आबि गेल अछि और ओहन में जिम केनाइ नीको नहीं अछि।
2: सही सही,
1: क्योंकि भऽ सकैत अछि अहाँके किछु न किछु खराबी कऽ जाए,
2: खराबी हो जाएगा। और एक जानकार व्यक्ति के अंतर्गत आप करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। किस तरह करना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है, ये जाने आप बिना कर लेते हैं तो आपको फायदा के जगह पर नुकसान ही लगभग हो सकता है। और अगर कोई बताने वाले हैं, अच्छे कोच हैं, तो फायदा ही फायदा है उसका।
1: तो हम सब आगे किछु एखन चर्चा करब फायदा के। अगर गप केलहुँ तो जंगल भेनाइ सेहो फायदा के काज होइत अछि
2: जी,
1: क्योंकि बिना जंगल के हम अहाँ कल्पना नहीं कऽ सकै छी जीवन के।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि जा धरि गाछ वृक्ष नहीं रहत ता धरि अहाँ ई नहीं सोच सकै छी कि हम अहाँ केना रहब।
2: बिल्कुल,
1: एखने एकटा छोट सनक अगर एखन जे हिसाब से रौद पड़ि रहल अछि, अहाँ रोड पर चलैत रहू अहाँके गर्मी से अहाँ तप जायब, मुदा एकटा गाछ के नीचा अहाँ जाकर ठाढ़ भऽ जाओ, अहाँके ओतबे काल में बस दू चार कदम के अंतर पर अहाँके तापमान में अंतर देखा पड़ जाते हैं।
2: दिखाना पड़ेगा और दिखाई देगा ही, और लगेगा कि हाँ पेड़ का क्या फायदा है। हमको उस समय तत्काल ऐसा राहत मिलेगा जैसे लगेगा पूरा जीवन इस पेड़ के नीचे ही काट लिए तो अच्छा है।
1: जंगल और कहलिए है जी, कि जंगल कतौ न कतौ जीवन का आधार है।
2: बिल्कुल,
1: अहाँके कहे छे पृथ्वी पर जतेक जीवन है ओकर संतुलन जंगले पर टिकल है। जंगल अगर हम अहाँ सांस लऽ रहल छी ओ जंगल के कारणे लऽ रहल छी। पेड़ दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लै छथि और ऑक्सीजन छोड़े छथि। एकटा अगर पैघ गाछ के हमसब चर्चा करी तो दिन में 4 व्यक्ति के लेल पर्याप्त ऑक्सीजन ओ दऽ दै छथि।
2: बिल्कुल,
1: तो यदि जंगल नहीं रहत तो सांस लेनाइ सेहो मुश्किल भऽ जायत।
2: हरियाली ही जीवन का रास्ता है, जलवायु और वर्षा का आधार भी है। जंगल बादलों को आकर्षित करते हैं और वर्षा कराते हैं। अगर जंगल नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो हम लोग जानते ही हैं कि हम लोग का अनाज नहीं उपजेगा, अनाज नहीं उपजेगा तो खाएंगे क्या। पेड़ों की जड़ें जमीन में पानी को रोकती है,

0: जिससे भूजल का स्तर बना रहता है। नदियां भी जंगलों से ही निकलती है, जैसे गंगा यमुना जैसी नदियां का उद्गम भी हिमालय के जंगलों से हुआ है।
1: कहल जा सकत अच्छे कि हम अहाँ कतौ न कतौ जंगले पर निर्भर छी और जैव विविधता के सेहो ई घर अछि जंगल। एकटा अगर किछु गाछ पर देखियौ तऽ कतेक प्रकार के कीट पक्षी पौधा सब लागल रहैत अछि।
0: सही सही।
1: एकटा अहाँके जंगल मे कतेक तरह के जानवर पायल जाइत छै, मुदा अगर ई जंगल काटि दै छी हमसब, जंगल एखन जे हिसाब से कटि रहल अछि ओ कटैत जंगल के बाद बहुत रास जीव जे छथि से विलुप्त भऽ रहल छै।
0: विलुप्त हो
1: जाए तऽ ई कतौ न कतौ अबै वला समय मे हमरा अहाँके असर करत।
0: जंगल सबको आश्रय दे रहे हैं, चाहे जीव हो जंतु हो प्राणी हो, उनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है।
1: और आदिवासी समुदाय के जे गप करियो तो हजारों साल से जंगले पर निर्भर छथि, पूरा के पूरा अपन जिंदगी जंगले में रहि के काटि लै छथि। यानी बुझि सकै छी कि जंगल अहाँके जिंदगी के कतेक पैघ हिस्सा भऽ सकैत अछि, कि अगर अहाँ जंगल पर निर्भर रहै छी तऽ अहाँके जिंदगी में कोनो चीज के काज नहि पड़त, सबटा चीज अहाँके जंगल से प्राप्त भऽ जायत। जंगल हमरा अहाँके फल दैए, फूल दैए, जड़ी बूटी दैत अछि, लकड़ी और दवाई दैत अछि। आइयो 70% जे दवाई जे अछि से अहाँके पेड़ पौधा से ही बनैत अछि।
0: घर के जो भी सामान है जैसे कि खिड़की दरवाजा, वो भी तो आप जंगल से ही मिलते हैं। मिट्टी और प्राकृतिक आपदा से रक्षा भी हमारे जंगल ही करते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, इससे बाढ़ और भूस्खलन रुकता है, जंगल आंधी तूफान की गति को भी कम करते हैं।
1: आई एखन पहाड़ सब पर देख रहल छी हम सब के लगातार बाढ़ आबि रहल अछि, पहाड़ किछु अहाँके दरकि रहल अछि, तऽ हमर अहाँके कारणे भऽ रहल अछि। पहाड़ पर से जंगल काटि के ओतौ हमसब लगातार किछु होटल घर बनि रहल अछि, आदमी सब ततेक जाय लगलत कि जंगले ओकर बदला कटि रहल अछि, आओर कटैत जंगल कतौ न कतौ पहाड़ के लेल खराब साबित भऽ रहल अछि।
0: अभी जो भी आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, वो भी जंगल के कारण है। जंगल कट रहे हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहे हैं। इतनी गर्मी हम लोग पहले नहीं देखते थे जो गर्मी अभी देख रहे हैं। वर्ष ये जो भौगोलिक परिवर्तन हुआ है, जो भी मौसम में परिवर्तन हुआ है, सब जंगल कटने के कारण ही हुआ है।
1: कतौ न कतौ हमर अहाँके ई कर्तव्य बनैत अछि कि हमसब जंगल के बचाबी, आओर ओना हमर अहाँके जे देश अछि ताहिमे सामाजिक समरसता एकटा परम्परा रहल अछि। सामाजिक समरसतामे हम अहाँ एक दूसरा से जुड़ि के रहै छी, एक दूसरा के सङ्गे रहै छी, तऽ जखन एक दोसर के जुड़ि के एक दोसर के सङ्गे रही तऽ जंगल सेहो हमसब बचाबी, आओर सामाजिक समरसता जे हमर अहाँके खूबी अछि तकरो बचा के राखी।
0: समाज में सभी वर्ग को लेकर चलेंगे तभी हमारा जीवन सफल होगा।
1: अब समय जे से धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो बढ़ित समय के उपयोग करै छी आप हमहू सब। समसामयिक घटना पर कनी चर्चा कर ली। सुल्तानगंज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाल जात, एकर घोषणा केलत है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और एकटा ऐलान स्कूल से संबंधित अछि सेहो एकटा ऐलान केलत है कि शनि दिन आप सरकारी विद्यालय आधा दिन के तक हैत। यानी कि जेना पहले विद्यालय किछु टिफिन तक चलै छलै, आधा दिन तक चलै छलै, सहए ऐलान भेल है। तऽ ई दूटा अहाँके किछु ऐलान एकटा कतौ न कतौ बढ़ै के दिशा मे अछि। आओर सुबह मे पूरा क्षेत्र मे चीनी मिल के चलबै मे आब निवेशक सब रुचि देखबऽ लगलत है, और कोसी मेची इंटर स्टेट लिंक परियोजना का काम तेजी से पूरा करे के निर्देश देल गेल अछि, और 30,000 पुल पुड़िया के सर्वेक्षण सेहो कयल गेल अछि। तो ये समसामयिक घटना सब पर चर्चा करते रही, और चले चले अपन श्रोता सबके फिर गीत सुनाएल जाए।
0: क्यों नहीं जी।

0: आब समय कहि रहल अछि आजुक नमस्कार मिथिलासँ विदा लैके लेल, तऽ हमरा आशीषके
1: आओर शिवशंकरको
0: दिया विदा। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तक इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल ले
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
2: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी

0: गाम घर संध्या 6:30 पर।
1: जिंदगी कैसी है बहेली हाय,
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
3: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
4: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
5: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
4: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
3: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
6: अब नन्हे मुन्हे बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
7: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक कई क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
8: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
9: पैसे दो हस्बैंड जी,
10: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
9: और लाइट बिल के
10: अब 0 रुपए कैसे दूं?
9: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
10: पक्का।
11: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
12: हर घर सूर्य घर।
13: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
14: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया।

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने

0: के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फूर्ती और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा, ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
3: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
4: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लावू श्री कृष्ण देव रायलु और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जाँच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए

0: कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ता ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है पीओके में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। और राष्ट्रमंडल खेलों में कुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for breaking horizontal and vertical silos within government to ensure close coordination, reviews future action agenda of ministries and departments. Lok Sabha to resume discussion on public examinations prevention of unfair means, Amendment Bill 2026 today. Delhi government approves Lakshmi Yojana to provide financial assistance of 2,500 rupees per month to every eligible woman. Death toll and brutal crackdown by Pakistani forces in POJK rises to 30 during past 2 days. Iran launches multiple ballistic missiles towards US forces in West Asia. US and Saudi forces carry out joint precision strikes against Iran-aligned groups in Iraq. And Gulveer Singh becomes first Indian to win silver medal in the men's 10,000 meter race at the Commonwealth Games. Harjinder Kaur also bagged silver medal in women's weightlifting event. Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries to the government at his residence yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry, and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goals of Viksit Bharat. We have more from a correspondent.
3: During the meeting, Mr. Modi called for a strong focus on team building across ministries and departments, urging officers to work with a shared sense of purpose. He emphasized the need to break both horizontal and vertical silos within the government so that departments function in close coordination and deliver integrated outcomes. Highlighting the importance of citizen-centric governance, the Prime Minister said that the people of India must remain at the center of governance. He reminded that every decision and policy should be guided by interests and aspirations of the common citizen. Modi stressed that while India is making significant investments in infrastructure, equal priority must be given to developing indigenous technologies. The meeting was attended by Cabinet Secretary, secretaries of key ministries and departments, and senior officials from the Prime Minister's office. Aditya Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
2: The Lok Sabha will resume the discussion on the public examinations prevention of unfair

0: लाख रुपए सालाना है, इस स्कीम से फायदा उठा सकेंगी।
1: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र सवा साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
0: भारतीय जनता पार्टी आज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें यौमे पैदाइश के मौके पर गुरु पूर्णिमा के सिलसिले में पूरे मुल्क में श्री गुरु रविदास महाराज समरस्त संकल्प अभियान का आगाज कर रही है। वाराणसी में सियर गोवर्धनपुर में संत रविदास की जाय पैदाइश पर इस मुहिम का बाजाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: आज बनारस के सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास के जाय पैदाइश पर इस मुहिम का फौरी तौर पर आगाज होगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां पर दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। इस मुहिम के तहत संत रविदास के मुकद्दस जाय पैदाइश की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों और मुल्क की दीगर रियासतों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी इनेकाद किया गया है, जिसमें तकरीबन 25,000 के शामिल होने का इम्कान है। प्रोग्रामों की ये फहरिस्त माघी पूर्णिमा और संत रविदास की योम पैदाइश यानी अगले बरस 20 फरवरी तक चलेगी। बीजेपी के सदर नितिन नबीन, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, रियासती बीजेपी सदर पंकज चौधरी समेत तमाम सरकर्दा लीडरान के इस प्रोग्राम में शिरकत करने की उम्मीद है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
0: केरल में 14 में से 7 जिलों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रियासत में तेज बारिश का सिलसिला हफ्ते के रोज तक जारी रहने का इम्कान है। रियासत में आज सुबह सवेरे से औसत बारिश हो रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर इलाके में सरकार की वेश्याना कार्रवाई में गुज़श्ता 2 दिन में मरने वालों की तादाद 30 तक पहुंच गई है। कई लोग जख्मी भी हुए हैं। एक मकामी ग्रुप ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान की फौज ने हजारों पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जिससे पीर के रोज 25 अफराद मारे गए, जबकि कल मजीद 5 अफराद हलाक हुए। उधर इंसानी हकूक की अलमबरदार तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ मोहलिक ताकत के इस्तेमाल की इत्तलात की आजादाना और शफाफ तहकीकात पर जोर दिया है। साथ ही उसने पाकिस्तानी हुकाम से कहा है कि खित्ते में मवासलाती खिदमात बहाल की जाएं और वहां मीडिया और आजाद मुजाहिदीन को जाने की इजाजत दी जाए। अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब की फोर्सेस में मगरबी एशिया के खित्ते में तैनात अमरीकी फोर्सेस पर अचानक हमले की कोशिश करते हुए कल रात कई बैलिस्टिक मिजाइल दागे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की मरकजी कमान ने कहा है कि ईरान के सभी मिसाइलों को कामयाबी के साथ मार गिराया गया और अमेरिकी फोर्सेस पूरी तरह चौकस और मुस्तैद हैं। अमेरिका ने यह दावा भी किया है कि गुज़श्ता 72 घंटे के दौरान ईरान के पासदारा ने इनकलाब की फोर्सेस ने 30 ड्रोन हमले किए। जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका की मरकजी कमान और सऊदी अरब की मुसल्ला फोर्सेज ने इराक में ये इल्ज़ाम लगाते हुए हमले किए कि ईरान के पासदारा ने इनकलाब की फोर्सेज ने ईरान से वाबस्ता ग्रुपों को अमरीकी फोर्सेज और सऊदी अरब के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले करने को कहा है। अमरीका और सऊदी अरब के लड़ाका हवाई जहाज़ों ने मशरकी इराक में कई लॉजिस्टिक्स और असलहा रखने के मकाम को निशाना बनाया। ग्लासगो में जारी 2026 के दौलत मुश्तरक खेलों में गुलवीर सिंह भारत के ऐसे पहले एथलीट बन गए हैं जिन्होंने तारीख रकम की है। गुलवीर सिंह ने मर्दों की 10,000 मीटर दौड़ में चांदी का तमगा हासिल किया। स्कॉटस्टोन स्टेडियम में इस्माइनास चैंपियन का मकाम ऑस्ट्रेलिया के काई रॉबिन्सन के बाद रहा। 29 साल भारतीय वेटलिफ्टर ने कंबाइन वजन 2,227 किलोग्राम उठाकर भारत का 7वां हिस्सा हासिल कर लिया। इस मुकाबले में हरजिंदर ने भी दौलत मुश्तरक का लगातार दूसरा तमगा हासिल किया। उन्होंने 2022 में बर्मिंघम में कांस्य का तमगा हासिल किया था। इसके साथ ही ग्लासगो के इन खेल मुकाबलों में भारत के तमगों की कुल तादाद 12 हो गई है, जिनमें 2 सोने, 7 चांदी और 3 कांस्य के तमगे हैं। इसी दौरान 4 भारतीय मुक्केबाजों का सोने के तमगे हासिल करने का यकीन है। ये लोग अपने तमगों को चांदी और सोने के तमगों में बदलने के मकसद से अपनी कारकर्दगी पेश करेंगे जब ये लोग सेमीफाइनल्स खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे। ये थी खबरें।

और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अनियमितताओं से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए पटना, लखीसराय और पूर्णिया में फास्ट ट्रैक अदालतों का हुआ गठन। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए मतदान कल। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य के सरकारी विद्यालयों में अब शनिवार को आधे दिन की पढ़ाई होगी। अब समाचार विस्तार से। पटना उच्च न्यायालय ने नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अनियमितताओं से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए तीन जिलों पटना, लखीसराय और पूर्णिया में फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया है। इन अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। पटना के लिए गौरव सिंह, लखीसराय के लिए सीमा भरतिया और पूर्णिया के लिए ठाकुर अमन कुमार को पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यायालय प्रशासन के अनुसार ये अदालतें लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करेंगी। इन अदालतों में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामलों की प्रतिदिन सुनवाई होगी और तीन महीने के भीतर मुकदमों का ट्रायल पूरा कर फैसला सुनाने का लक्ष्य है। अदालतों को अधिसूचित करने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। नीट यूजी परीक्षा को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान आरोपितों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार के फैसले के बाद महाधिवक्ता एसटी संजय ने सभी संबंधित जिलाधिकारियों और अभियोजन पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। महाधिवक्ता ने बताया कि राज्य भर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कुल 64 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी जिलों से कार्रवाई रिपोर्ट भी तलब की गई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने एक और आरोपित को गिरफ्तार किया है। ईओयू के अनुसार जहानाबाद निवासी डॉक्टर मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को हजारीबाग ले जाकर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने की साजिश में भूमिका निभाई थी। इस मामले में अब तक कुल 296 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। डॉक्टर सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि यह नया विधेयक केवल दिखावा है, क्योंकि इसमें केवल पूर्व के कानून में संशोधन किया जा रहा है। वहीं राजद के अभय कुमार सिन्हा ने चर्चा में भाग लेते हुए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने, पेपर लीक मामलों की समयबद्ध जांच कराने और दोषियों को कठोर सजा देने की मांग उठाई। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए 164 मतदान केंद्रों पर कुल 422 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन सभी बूथों पर वेबकास्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है। संवाददाता सम्मेलन में पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि मतदान को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।

0: केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां, फ्लाइंग स्क्वाड, सर्विलांस टीमें और सेक्टर पदाधिकारियों की तैनाती की गई है।
1: केंद्रीय सैनिक बल जो मिले हैं CAPF, वो 14 कंपनियां मिली हैं। इन सभी को बूथ में डिप्लॉय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जहां पे एक बिल्डिंग में ज्यादा बूथ है उसमें जो जिला बल है वो भी लगाया जा रहा है। उसमें क्यू लगाने के लिए, मतलब कतार लगाने के लिए होमगार्ड की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त सेक्टर और जोन बांटे गए हैं कि जहां पे भी कुछ घटना हो तो वो लोग पहले रिस्पॉन्ड कर सके। इसके अलावा भी विभिन्न चौक चौराहों पर और विभिन्न बिल्डिंग से क्लस्टर पे पुलिस की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
0: मतदाता टोल फ्री हेल्पलाइन 1950 पर निर्वाचन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने कल बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कार्यालयों में सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने क्रूज भारत मिशन के तहत देश भर में 38 नदी क्रूज सर्किटों की पहचान की है। इनमें बिहार से जुड़े दो प्रमुख सर्किट शामिल हैं। राज्यसभा में भाजपा सांसद भीम सिंह के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोलकाता वाराणसी सर्किट और दीघा ब्रिज पटना सर्किट बिहार से होकर गुजरता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में अब शनिवार को आधे दिन की पढ़ाई होगी। श्री चौधरी मुंगेर जिले के तारापुर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ खेल कूद की बेहतर व्यवस्था की जा रही है।
2: सभी स्कूलों में, क्योंकि भारत सरकार ने जो शिक्षा नीति राष्ट्रीय स्तर पर लाया है, मैं जरूर सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अब शनिवार का दिन स्कूल आधा ही चलेगा। अब पूरा चलाने की व्यवस्था नहीं की जाएगी, आधा ही चलेगा। हाफ डे चलाने का काम शुरुआत किया जाएगा।
0: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT में रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। इसके लिए रिक्तियों की पहचान कर बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना के कार्य को मॉनसून समाप्त होते ही तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, नियमित समीक्षा करने और परियोजना में आने वाली बाधाओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने पटना में बिहार गति के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली जल संसाधन, पथ निर्माण और स्वास्थ्य विभाग की परियोजनाओं तथा केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना, मंडई वियर परियोजना, वाराणसी रांची कोलकाता 6 लेन कॉरिडोर, आमस दरभंगा 4 लेन और कन्हौली शेरपुर 6 लेन परियोजनाओं के कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के भी निर्देश दिए। राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना और बंद मिलों के पुनः संचालन के लिए गन्ना उद्योग विभाग को 12 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इन प्रस्तावों की जांच के बाद इन्हें निवेश प्रोत्साहन परिषद की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जिन क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें नवादा का वारिसलीगंज, सारण, सिवान, मोतीपुर, पूर्वी चंपारण और पूर्णिया शामिल हैं। प्रस्ताव देने वाले निवेशकों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के उद्यमी हैं। राज्य में पहले से चीनी मिल संचालित करने वाले कुछ कंपनियों ने भी नई मिलें

स्थापित करने की इच्छा जताई है। आर्थिक अपराध इकाई ने जमुई जिला परिषद अध्यक्ष दुलारी देवी, उनके पति गुड्डू यादव और उनके सहयोगियों के 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में 34 लाख रुपए नकद, भूमि और वाहनों की खरीद के कागजात तथा निवेश संबंधी दस्तावेज बरामद किए गए। आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार गुड्डू यादव पर संगठित आपराधिक गिरोह चलाकर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, अपहरण, लूट और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न मामलों में जमुई, लखीसराय और नवादा के कई थानों में 39 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पटना उच्च न्यायालय परिसर में पिस्टल की 25 गोलियां मिली हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोलियां लॉयर्स एसोसिएशन हॉल में एक अलमारी के ऊपर रखी मिली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बीच कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ने हाईकोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में संचालित ऑपरेशन नया सवेरा 3.2 के तहत 1 जुलाई से 16 जुलाई के बीच कुल 25 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 60 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया गया। गृह विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार लैंगिक अपराध और ऑर्केस्ट्रा डांस ग्रुप से संबंधित 9 कांडों में 25 नाबालिगों को छुड़ाया गया। साथ ही एक महिला सहित 5 मानव तस्करों की इन मामलों में गिरफ्तारी हुई है। आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद इसी दिन अपना पहला उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध बोधगया से सारनाथ की यात्रा पर गए थे और पूर्णिमा के दिन अपना उपदेश दिया था। इधर इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को पटना साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपितों को झारखंड के कोडरमा से गिरफ्तार किया गया। पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात अपराधी उज्ज्वल कुमार को स्नाइपर गन के साथ गिरफ्तार किया है। सीतामढ़ी में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कुख्यात अपराधी फेकन कुमार सदर अस्पताल से फरार हो गया। ड्यूटी के दौरान लापरवाही के मामले में 1 हवलदार और 2 सैप जवानों को निलंबित कर दिया गया है। नवादा जिले के रजौली चेक पोस्ट के पास उत्पाद विभाग की टीम ने एक कंटेनर से 280 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। किशनगंज सदर थाना क्षेत्र के महीन गांव के टीलर चौक के पास अवैध रूप से रह रही एक बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही सदर थाना क्षेत्र से एक बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी हुई थी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने नीट पेपर लीक मामले और छात्र प्रदर्शन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पेपर लीक रोधी बिल पर लोकसभा में तकरार, आरोप प्रत्यारोप की बौछार। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बेदाग छात्र रिहा हों, राज्यों पर FIR पर जांच की छूट। प्रभात खबर ने लिखा है, नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के मामले में जेल में बंद युवाओं की रिहाई का रास्ता साफ, सरकार ने वापस लिए सभी 64 मामले, आज से रिहा होंगे छात्र। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, सुल्तानगंज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनेगा। राष्ट्रीय सागर ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, TRE3 शिक्षक भी तबादले के लिए कर सकेंगे आवेदन। आज अखबार की सुर्खी है, बिहार सचिवालय में जींस टी शर्ट पर रोक। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अनियमितताओं से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए पटना, लखीसराय और पूर्णिया में फास्ट ट्रैक अदालतों का हुआ गठन। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। पटना की बांकीपुर विधानसभा

सीट के उपचुनाव के लिए मतदान कल स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य के सरकारी विद्यालयों में अब शनिवार को आधे दिन की पढ़ाई होगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जात अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: भोर होते उठ जाओ किएक त इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल लेल
4: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
5: आ मनुख ले

0: बुझो अत्यंत जरूरी। पानि बुन्नी नहीं हैत तो खेती नहीं हैत, आ खेती जो नहीं हैत उपजा नहीं हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
1: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
2: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: से पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

सामिन जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में इस गज़ल को आपने अभी समाप्त किया, और हम तमाम लोग इस बात से आगाह हैं सामिन के हमारी ज़िंदगी मुख्तलिफ तरह की सोचों का एक हसीन गुलदस्ता है। इसमें हम पॉजिटिव थिंकिंग भी रखते हैं और साथ ही साथ नेगेटिव थिंकिंग भी, और ये दोनों जो सोच है वो हालात पे मुनहसर करती है। यकीनन अगर हमारी ज़िंदगी में हमारे गिर्द नवाह में ऐसे लोग होंगे जो खुद एतमाद से भरे हुए होंगे और मंजिल मकसूद की जानिब उनके कदम बेहतर तौर पे बढ़ रहे होंगे, तो ऐसे में लाजमन हमारे अंदर भी खुद एतमादी आ जाती है। जबकि हमारे इर्द गिर्द अगर मनफी सोच वाले लोग ज़्यादा यानी कसीर तादाद में होंगे, तो हम भी उस सोच के दायरे में ना चाहते हुए भी घिर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी हमारी सोच पे मुनहसर करती है। अगर हम एक मजबूत कुव्वत इरादी और एतमाद के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाना चाहें, तो हम तमाम मुश्किलात से पार पा सकते हैं। लेकिन अगर वही मनफी सोच हमारे ऊपर हावी हो जाए, तो हम अपनी ज़िंदगी में हौसले को हार बैठते हैं और हमें हमारी ज़िंदगी परेशान कुन और बहुत ही मुश्किल गुजार मालूम होने लगती है। इससे बचने के लिए हम तमाम लोगों को इस बात का एतमाद रखना चाहिए कि ज़िंदगी सबसे कीमती शय है, और इसमें जिस तरह रात और दिन का हम सामना करते हैं, उसी तरह अच्छे और बुरे हालात भी लाजिमी तौर पर हमारी ज़िंदगी में आएंगे। हमें सब्र और इस्तकामत के साथ इससे पार पाना है। यकीनन हम अपनी सोच को खुद एतमादी के बदल से बदल सकते हैं। हर इस बात के लिए हम अपने माबूद पे भरोसा रखें कि ज़िंदगी उसकी अता करदा है, हालात भी वो बेहतर करेगा। हाँ ये है कि हम अपनी कोशिश को हमेशा जारी उसारी रखें, हाथ पे हाथ धरे न बैठें, और सबसे अहम और ख़ास बात कि मनफी सोच के उस दायरे से निकलने की कोशिश करें और उन तमाम लोगों से दस्तबरदार हो जाएं जो आपकी सोच पे मनफी नज़रियात को हावी कर देते हैं। दानिस्ता तौर पे और गैर दानिस्ता तौर पे दोनों हालात हमारे लिए बेहतर नहीं हैं। मनफी सोच कभी भी हमें ज़िंदगी के बेहतर पहलू को देखने के लिए राह हमवार नहीं करती, बल्कि हर उस काम में हमें मुश्किलात और परेशानी ही दिखाती है। नतीजा हम हिम्मत हार जाते हैं, और कम हिम्मती की वजह कर हम ज़िंदगी में नाकाम, महरूम और परेशान हो जाते हैं। लिहाजा आइए हम इस मनफी सोच से ख़ुद को निकालें और अपने आसपास के तमाम लोगों को भी उनकी मदद करके उसे उस सोच से निकालें, और लाजमी तौर पर उन्हें ज़िंदगी के खुशगवार मौक़ों से साबका करवाएं। सामीन, इस छोटी सी गुफ्तगू के बाद हम अपने अगले पेशकश की जानिब लीजिए मुतवज्जे हो

0: प्रेमचंद के अफसानों में गांव के अहवाल, इस उनवान के तहत ये मकाला लीजिए आपकी समातों के हवाले है। पेशकश है सैयद आसिफ हुसैन की।
1: बीसवीं सदी के आगाज में उर्दू अफसाने ने जमीनी जिंदगी के मामलात मसायल से वाबस्ता होने की जब सही की तो अफसाना निगारों को फितरी तौर पर ऐसे किरदारों की बाबत तवज्जो मबजूल करने की जरूरत आन पड़ी जिन्हें अफसाने तख्लीक करने का हकीकी सबब करार दिया जा सकता था। यहाँ ये बात दुरुस्त है कि बरसगीर की कुल आबादी का तकरीबन 80% हिस्सा गाँव से ताल्लुक रखता है और गाँव ही में आबाद है, मगर बड़ा अलमिया यह है कि 20% की आबादी वाले शहर को गाँव की बनिस्बत ज़्यादा नुमाइंदगी मिली। बहरहाल उर्दू अफसाने के अव्वली दौर को जब हम देखते हैं तो ये बात मुलाहजे में आती है कि वहाँ गाँव को खासी अहमियत मिली थी और उर्दू के पहले अफसाना निगार की हैसियत से प्रेमचंद को ये एज़ाज़ हासिल है कि उन्होंने अपने फ़न का अव्वली नक्श गाँव के अफसाने की तख्लीकी असास पर ही मुरतब किया। लिहाजा बहुत जिम्मेदारी से ये बात कही जा सकती है कि उर्दू अफसानों में गाँव को पेश करने की रिवायत प्रेमचंद ने कायम की। उनका अहम कारनामा यह है कि अपने अफसानों का सारा मवाद उन्होंने अपने गिर्दोपेश के माहौल से अखज़ किया और इस एतबार से उनकी नज़र सबसे पहले गाँव पर पड़ी जिसे तहजीबी तरक्की छू कर भी नहीं गुजरी थी। समाजी और माशी सतह पर जहाँ तबकाती नाहमवारियाँ थीं, प्रेमचंद के अफसानों में गाँव में अपने शबोरोज बसर करने वाले मेहनतकश तबका, गरीब मजदूर, किसान और भंगी जैसे दबे कुचले तबका के लोग अपनी मुख्तलिफ तर्स की महरूमियों के साथ नुमाया अंदाज में दिखाई देते हैं। प्रेमचंद की पैदाइश 1880 में बनारस के एक गांव मलही में हुई। चुनांचे ये बात काबिल ज़िक्र है कि प्रेमचंद की तरबियत में देहात के माहौल को बड़ी अहमियत हासिल है। उन्हें बचपन की ज़िंदगी के दौरान गांव को बहुत करीब से देखने का मौका मिला था। प्रेमचंद का एक अफसाना है राह निजात, बतौर मजमू जो अमल और रद्द अमल की कहानी है। अफसाने में बुद्धू और झींगुर के नुमाइंदा किरदार हैं। बुद्धू चरवाहा है और वो अपनी भेड़ों पर नाजा है, जबकि झींगुर किसान है और उसे अपने लहराते खेत पर गुरूर है। दोनों के माबेन इस सबब से झगड़ा हो जाता है कि बुद्धू ने अपनी भेड़ें झींगुर के खेत से होकर क्यों गुजारी। इस पर झींगुर ने यह किया कि वो डंडा संभाल कर भेड़ों पर टूट पड़ता है और भेड़ों को तबाह कर डालता है। इधर बुद्धू का अमल ये रहा कि उसने इस जिल्लत आमेज खसारे के रद्देमल में मौका मिलते ही झींगुर के खेत को आग की नजर कर दिया। इंतकाम की आग में झींगुर बुद्धू को गौहत्या के इल्ज़ाम में ब्राह्मणों के इस्तेहसाल के सुपुर्द करवा देता है। इस तरह सूरत हाल ये बनती है कि दो पुरसकून घराने तबाही की जद में चले आते हैं और मजदूर बनकर मेहनत व मशक्क़त करने लगते हैं। दोनों को अपने किए पे पछतावा है और दोनों की बातें इसका सबूत पेश करती हैं। दोनों पत्थर की सिलों पर लेटकर चिलम पीते हैं तो बुद्धू अपने ज़मीर की आवाज़ बुलंद करते हुए ये कहता है कि तुम्हारी ईख में आग मैंने लगाई थी। गौहत्या के इल्ज़ाम के ताल्लुक से अपने ज़मीर की आवाज़ पर वो ये भी कहता है कि बछिया मैंने ही बांधी थी और हरिहर ने उसे कुछ खिला दिया था। इस पर बुद्धू ये कहता है कि जानता हूँ। इस एतराफ़े जुर्म से दोनों के दिल साफ हो जाते हैं और उन्हें गोया राह निजात मिल जाती है। अफसाना कुर्बानी ज़रात और शक्कर की देही सनत के ताल्लुक से हमारी तवज्जो मबजूल करता है। इस सनत के तबाही से गांव के दिगर लोग जहां मुतासिर हुए वहां कई घरों में रोटी के लाले पड़ गए। ये अफसाना हर खू की तबाही, मौत और उसके बेटे गिरधारी की इंतहाई बेकसी की ज़िंदगी के वास्ते से देहात के मुतासिरा गरीब ख़ानदान का एक ऐसा मरसिया है जिस पर कोई नौहागर नहीं है, बल्कि गांव का ज़मींदार बदतर हालात का फ़ायदा उठाकर हर खू की जायदाद को रफ्ता रफ्ता अपने कब्ज़े में कर लेता है। यहाँ हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जिस खेत का मालिक हरखू था उसका लड़का गिरधारी जब उसी खेत को मजदूरी पर लेने की सही करता है तो ज़मींदार उमकार

नाथ एक एक कौड़ी का कैसा हिसाब सामने रख देता है। तुम 8 रुपये बीघे पे जोतते थे, मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं और नजराना 100 रुपये अलग। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, लेकिन नजराने के 100 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। इस तरह हम देखते हैं कि प्रेमचंद की अफसाना कुर्बानी में देहात है, जमींदाराना माहौल है और हमराह इसके बड़े दरमियानी और मजदूरी करने वाले कमतर दर्जा के ज़रात पेशा लोग हैं। प्रेमचंद की अफसाना मशले हदायत में सरकारी अहलकारों की दस्तराजी और ज़मींदार की तलखनवाई मिलती है, मगर इस अफसाने में ख़ास ये है कि एक ज़मींदार होने के बावजूद बाबूलाल के किरदार के ज़रिया उसकी साफगोई और हक पसंदी के हवाले से गांधीवाद के तसव्वुरात के साथ भूदान तहरीक को पेश करने की एक कामयाब कोशिश की गई है। किसान की दुश्वारियों भरी ज़िंदगी के रास्ते अहवाल अफसाना पूस की रात में तहरीर किए गए हैं। मुतज़िक्रा अफसाने में मकरूज़ हलकों की परेशान हाली का आलम यह है कि ठिठुरती रात में खेत की निगरानी के लिए उसके पास कंबल भी दस्तयाब नहीं है, उसका कोई हमदर्द गम गुसार नहीं है। ऐसे में हलकू का वाहिद दोस्त जबरा कुत्ता कई जावियों से लायक तवज्जा है। दोनों एक दूसरे के इशारों को बखूबी समझते हैं। वो मुश्किल हालात में हलकू से वफादारी यूं निभाता है कि सख्त सर्दी में खेत जाकर उसके साथ ठिठुरता है। इस अफसाने में कुत्ते की वफादारी उजागर करते हुए प्रेमचंद कहते हैं कि हलकू ने कई बार पुचकार कर बुलाया पर वो उसके पास ना आया, खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक लम्हे के लिए आ भी जाता तो फौरन ही फिर दौड़ता। फर्ज की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। अफसाना कफन गांव में अपने शबो रोज बसर करने वाले गुर्बत के मारे माधु और घीसू के गैर इंसानी रवैये की बेहतरीन अक्कासी करता है, जहां एक औरत दर्द जह में तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है और बाप बेटे उसके कफन दफन के नाम पर मांग कर लाए गए 5 रुपयों का ये मसरफ लेते हैं कि उससे जश्न का सामान करते हैं और शराब के साथ गोश्त कलेजियाँ और तली हुई मछलियाँ खाते हैं। मदमस्त होकर फिर वो गाने लगते हैं और सरसार होकर मैखाने में गिर पड़ते हैं। इस अफसाने की आलमनाक सूरत हाल पे आइए तो बहू की लाश घर में वैसे ही वीरान पड़ी रहती है। दूध की कीमत प्रेमचंद का एक ऐसा अफसाना है जिसमें ज़ात पात की तफरीक के मौजू पर उन्होंने एक ऐसे ज़मींदार और उसकी बीवी की खुदगर्जी की कहानी तख्लीक की है जो अपने कमसिन बच्चे को दूध पिलाने के गरज से गूदड़ जात की भंगी नामी औरत की खिदमात हासिल करते हैं। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजडी है कि महेश बाबू के यहाँ नाली की सफाई करते हुए सांप के डसने से जब भंगी की मौत हो जाती है तो उसका बच्चा मंगल उसी घर में बचे खुचे और जूठे पर गुजारा करता है। यहाँ ये भी तवज्जा तलब है कि जिस घर में उसकी माँ ने महेश के बेटे सुरेश को दूध पिलाया था

हैं, दिल हमेशा ही जला कर दे हैं। कोई शिकवा न गिला कर दे हैं। और मक्ता अर्ज है, सात दुश्मन के बिरूमानी, सात दुश्मन के भी रूमानी, खुश दिली से वो मिला करते हैं।

व नागिला करते हैं और खुश गमों में भी रहा करते हैं। गजल के चंद अशआर मतलब अर्ज है, अच्छा नहीं लगता है यूं रूठ कर घर जाना। और इससे कबल एक दो शेर इसी मुनासबत से है कि आंखें भी लड़ी देखिए, आंखें भी लड़ी देखिए किस शोख अदा से टकरा गई एक शाख चमन बर्क बला से। और हम जिसको समझते रहे जीने का सहारा, मारा उसी जालिम ने हमें तीरे अदा से। गजल का मतलब मुलाजा फरमाइए, अच्छा नहीं लगता है यूं रूठ कर घर जाना।

कर घर जाना। और ये शेर है, हर हर पल तेरी खातिर हम दर खोल के बैठे हैं, हर पल तेरी खातिर हम दर खोल के बैठे हैं, हर पल तेरी खातिर हम दर खोल के बैठे हैं, किस तरह मोहब्बत में दिल में उतर जाना। अच्छा नहीं लगता है यूं रूट कर घर जाना, और जाना है अगर जाना

इठलाते हुए आना शर्मा के गुजर जाना, इठलाते हुए आना शर्मा के गुजर जाना, अच्छा नहीं लगता है यूं रूठ

अच्छा नहीं लगता है यू रूट कर घर जाना। और आखिरी शेर, आशिक का चलन क्या है सीखो ये पतंगों से, आशिक का चलन क्या है सीखो ये पतंगों से, आशिक का चलन क्या है सीखो ये पतंगों से, उड़ते हुए आना है हंसते हुए मर जाना, उड़ते हुए आना है हंसते हुए मर जाना। अच्छा नहीं लगता है यूं रूठ कर घर जाना। मक्ते का शेर अर्थ है, आंसू

रूमानी के इस गम को वो जाने जिगर जाना, रूमानी के इस गम को वो जाने जिगर जाना। अच्छा नहीं लगता है यूं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। ये प्रोग्राम आकाशवाणी पटना दरभंगा से प्रसारित किया गया।
1: संगीत, पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म हीरो हिंदुस्तानी से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और अलका यज्ञिक। गीत के बोल जमीर काजमी के हैं और संगीत है अनु मलिक का।

0: कॉल करें।
1: हद कर दी आपने, इस फिल्म से अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और विभा शर्मा। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत है आनंद राज आनंद का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हमको दीवाना कर गए, इस फिल्म से अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। आवाजें अभिजीत और अलका याग्निक की है। गीत के बोल हैं समीर के और संगीत हिमेश रेशमिया का है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

चल छैया छैया छैया, दिल से इस गीत को अभी आप सुन रहे थे जिसे लिया था हमने फिल्म दिल से। गायक कलाकार थे सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी। इस गीत को संगीत से सजाया था एआर रहमान ने। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब सुनिए लोकगीत। लोकगीत में हम पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं देवी गीत। स्वर है विभा झा का।

वंदना सिन्हा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये देवी गीत। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं लोक गीत। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज ऑन EIR ऐप। अगला लोकगीत हम आपको सुनवाते हैं हेमकांत झा के स्वर में।

अरविंद कुमार झा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये देवी गीत। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं लोक गीत। आइए अगला लोक गीत भी इन्हीं के स्वर में सुनते हैं।

पूनम कुमारी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। श्रोताओं, स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 11 बज रहे हैं। आइए, अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं वाद्य वादन में बांसुरी वादन। बांसुरी वादन में राग यमन आप सुनेंगे पंडित राजेंद्र प्रसन्ना के द्वारा।

अभी आप सुन रहे थे वाद्य वादन में बांसुरी वादन पंडित राजेंद्र प्रसन्ना के द्वारा राग यमन आप अभी सुन रहे थे। प्रसारण हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
2: अब नन्हे मुन्हे बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
1: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर, संध्या 6:30 पर। हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार से, जिसे भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान हर तूफान पार कर जाता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम जाता है। ये कार्यक्रम नंबर वन कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी ये कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम में सुना और बहुत पसंद आया। ये कार्यक्रम बेहतरीन अंदाज के साथ सुनवाया गया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। अगला हमें मिला है संदेश छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। इसके साथ साथ
2: मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी।
1: आपने भेजा है हमें संदेश ऊपरकोट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें और हमारी प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेते रहें। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में।
2: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरक प्रसंग। मित्रों, हम सब महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से परिचित हैं।
1: जी श्रोता, वे मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और प्रारंभिक चलचित्र कैमरे के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं।
2: जी,
1: लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने 1000 से भी अधिक पेटेंट लिए, जो अपने समय में एक असाधारण उपलब्धि थी।
2: जब एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तब उन्होंने उपयुक्त फिलामेंट खोजने के लिए हजारों प्रयोग किए। अधिकांश प्रयोग असफल रहे। कहते हैं कि वे लगभग 10,000 बार असफल हुए।
1: एक बार की बात है श्रोताओं, बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप हजारों बार असफल हो चुके हैं, क्या आपको कभी निराशा नहीं हुई?
2: एडिसन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
1: मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीकों को ढूंढने में सफलता पाई है जो काम नहीं करते।
2: इस कथन का मूल अंग्रेजी वाक्य है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क।
1: श्रोताओं, असफलताओं को देखने का यह दृष्टिकोण सचमुच कितना सकारात्मक और श्लाघनीय है। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी
2: और अंततः उन्होंने ऐसा फिलामेंट खोज लिया जिससे व्यवहारिक विद्युत बल्ब का निर्माण संभव हो सका।
1: तो श्रोताओं, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है? यही ना कि सफलता अंत नहीं बल्कि सीखने के अवसर का प्रारंभ है।
2: हर असफल प्रयास हमें सफलता के एक कदम और निकट ले जाता है, यदि हम में निरंतरता बनी रहे और
1: धैर्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। तो श्रोता मित्रों, जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रेरक प्रसंग कैसा लगा। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
2: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था श्लाघनीय। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
1: श्रोताओं, श्लाघनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। ये श्लाघा शब्द से

0: आया है। श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा।
1: और अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओ, थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
1: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-4405559 पर। आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के अनेक विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मातृभूमि।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इस कविता के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी हैं। कार्यक्रम में कविता को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो मातृभूमि के प्रति कवि के गहरे प्रेम को प्रकट करता है। कविता में भारत भूमि के सौंदर्य और विविधता का वर्णन किया गया है।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी।
1: इस कार्यक्रम में टेलीविजन के आविष्कार की कहानी को एक रोचक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तथा ये भी बताया गया है कि आविष्कार की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को किन किन तकनीकी समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना पड़ा।
2: डायना, डायना, आज तो फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह, क्या शानदार मैच था। मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
3: जॉन, मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की। कितने दिनों से तैयारी कर रही थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था। काश मैं भी देख पाती।
2: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं। जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
3: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे। फोटोग्राफी का शौक जो है तुम्हें।
2: मेरे मन में एक बात आ रही है।
3: वो क्या?
2: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
3: वाह, क्या बात कही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
2: हाँ, मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

दोस्तों, ये बालक था जॉन लोगी बेयर, जिसे टेलीविजन के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। यूं तो टेलीविजन के विकास में अनेक लोगों का योगदान है, लेकिन जॉन लोगी बेयर ने पहली बार चलते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेन्सबर्ग में हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन की बात है जब जॉन लगभग 11 साल के थे।

0: शांत हो जाओ बच्चों, शांत। बच्चों, इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को।
1: मुझे तो पता था।
0: जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

एक माली के लड़के के साथ बीता जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो सहायक इंजीनियर बन गए। एक बार वो अपने मित्र से मिलने त्रिनिदाद गए। यात्रा के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर से उनकी दोस्ती हो गई।

फिर तो दोनों ने विद्युत द्वारा हवा में तस्वीरें भेजने की समस्या पर गंभीरता से विचार किया। चौंतीस वर्ष की अवस्था में सन 1922 में वो इंग्लैंड लौट आए।

0: 1923 में वो लिंटन क्रिसेंट चले गए और एक जगह किराए पर ले ली और यही जगह उनकी प्रयोगशाला बनी। उनके सहायक थे विलियम।
1: विलियम, इतने दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
2: हाँ जॉन, क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
1: हाँ ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
2: क्या?
1: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा।
2: हाँ?
1: और ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
2: जॉन,
1: हाँ
2: मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया हूँ जैसा तुमने कहा था।
1: अच्छा
2: ये देखो।
1: हेलो, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
2: छोटे छोटे छेद?
1: हाँ।
2: उनसे क्या होगा?
1: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
2: अच्छा।
1: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।
2: वाह।
1: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे।
2: ओह।
1: फिर देखते हैं क्या होता है।
2: चलो करके देखते हैं।
1: इसको इसमें छेद तो कर दिए।
2: हाँ।
1: अब इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
2: ये प्रोजेक्शन लैंप में यहाँ रख देता हूँ।
1: हाँ, हाँ। ठीक है, अब इसको घुमा के देखते हैं। बात तो बनती नजर आ रही है।
2: देखो सामने दीवार पर देखो। जॉन, लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं।
1: और घुमाओ। हाँ शाबाश, ऐसे ही। लगता है हमें कामयाबी मिल रही है। हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
2: हमारी मेहनत रंग लाएगी।
1: हाँ।

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे। उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए।

लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई।

0: Эдний дүнөөсөө мэнд гараа лэгэн. Гамь яби нэмэлт. Ясалтай кэби мансил баттуур. Let's go. Мэнэ ижарка. Скот табая. Ха. Яа та тутик. Аб дэхтаа о кэ хаотай.
1: विलियम
2: हाँ जॉन
1: प्रोजेक्शन लैंप ऑन करो
2: करता हूँ
1: हाँ और सुनो
2: हाँ
1: आप कमरे में अंधेरा करो
2: एक मिनट
1: हाँ
2: मैं ये लाइट बंद कर देता हूँ
1: हाँ ठीक है और सुनो स्क्रीन ऑन करो
2: हाँ ठीक है अरे वाह जॉन
1: हाँ
2: देखो सामने
1: अरे हाँ
2: क्या बात है
1: ये तो कमाल हो गया मैंने कहा था ना कि हमें कामयाबी जरूर मिलेगी
2: हाँ जॉन
1: हाँ
2: हमें कामयाबी मिल गई कितनी मेहनत की थी हमने
1: हाँ
2: जॉन बहुत बहुत बधाई हो बहुत बहुत
1: तुम्हें विलियम बहुत बहुत बधाई

0: स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।
1: साथियों, रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन के इस विशेष समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है। वो विशेष व्यक्ति है जॉन लोगी बेयर। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए मिस्टर जॉन लोगी बेयर।
2: जी साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
3: श्रीमान, मुझे तो ये बात असंभव लगती है।
2: संभव है श्रीमान, ये संभव है। आप इस कैमरे के सामने आएंगे?
3: हाँ, आइए।
2: आइए इस तरफ।
3: इधर?
2: हाँ, अब आप इस कैमरे के सामने चलिए। हाँ, इधर। हाँ, थोड़ा सा
3: इधर।
2: हाँ, अब ठीक है। हाँ, साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।
1: ओह, ये तो कमाल हो गया। आंखों को विश्वास नहीं होता। वेरी गुड। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन।
2: शुक्रिया।

सन 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया।

0: जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर्ड अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी। आशा है कि यह कार्यक्रम आपने जरूर पसंद किया होगा।

सोशल मीडिया पर चैटिंग करते समय अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। NCERT द्वारा जनहित में जारी।

0: और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या
1: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रसारण अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

आतिश का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी सपना मुखर्जी और कुमार शानू की। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म लाल दुपट्टा मलमलका से, राधा पौडवाला और मोहम्मद अजीज की आवाज में।

फिल्म नगीना का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज की आवाज़ में, आनंद बख्शी के लिखे बोल और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत है। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म तुम बिन से, अभिजीत और के एस चित्रा की आवाज़ में।

फिल्म जीना तेरी गली का ये गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू और उदित माफ़ करेंगे अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। आइए सुनते हैं एक आखिरी गीत फिल्म जीना मेरना तेरे संग से लिए गए इस गीत को अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाज़ में।

फिल्म संगीत का आनंद अभी आप ले रहे थे हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। श्रोताओं, अब वक्त हो रहा है हमारे श्रोता बहनों के कार्यक्रम नारी संसार का, तो आइए मिलते हैं आपकी रेडियो दोस्त रजनी से कार्यक्रम नारी संसार में।

नमस्कार श्रोता बहनों, स्वागत है आपका कार्यक्रम नारी संसार में। आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी रजनी। बहनों, हमेशा के तरह आज भी हम विभिन्न रोचक विषयों के साथ उपस्थित हैं और साथ ही साथ कुछ नए पुराने नगमे भी आपको सुनवाएंगे और अंत में स्वास्थ्य उपचार के घरेलू नुस्खे की भी बातें होंगी। तो बस कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए मेरे साथ, अपने पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार का आनंद लेते रहिए। बहनों, आज हम सबसे पहले एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो मानव जीवन और समाज की नींव से जुड़ा हुआ है। नारी से सृष्टि, समाज निर्माण में महिलाओं की भूमिका के विषय पर हम बात करेंगे। कहा जाता है, यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ सुख समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। नारी केवल जीवन को जन्म नहीं देती बल्कि उसे संस्कार, शिक्षा और सही दिशा भी देती है। बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है, वही उसे बोलना, चलना, प्रेम करना और अच्छे बुरे का अंतर समझना सिखाती है और यही संस्कार आगे चलकर एक अच्छी समाज के निर्माण का काम करते हैं। समय के साथ महिलाओं की भूमिका और भी व्यापक हुई है। महिलाएं अब घर और बाहर दोनों संभालना बखूबी जानने लगी हैं। आज महिलाएं डॉक्टर, वैज्ञानिक, शिक्षक, सैनिक, खिलाड़ी, किसान, उद्यमी और प्रशासक के रूप में देश की उन्नति में अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं। वे सिद्ध कर रही हैं कि अवसर मिलने पर महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। लेकिन समाज निर्माण केवल महिलाओं का दायित्व नहीं है, यह हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम महिलाओं को सम्मान दें, उनकी शिक्षा को बढ़ावा दें, उन्हें शिक्षित करने का मार्ग प्रशस्त करें, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और उनके सपनों को पूरा करने का पूरा अवसर दें। जब परिवार में बेटा और बेटी को समान अवसर मिलते हैं तभी एक स्वस्थ और प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है। तो आइए आज हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने घर, परिवार और समाज की हर महिला का सम्मान करेंगे, उनके विचारों को महत्व देंगे, उनके प्रयासों की सराहना करेंगे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। याद रखिए, एक सशक्त महिला केवल अपना भविष्य नहीं बदलती बल्कि आने वाले पीढ़ियों का भविष्य भी बदलने के काबिल बनती हैं, बदलने की ताकत रखती हैं। तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र स्वतः ही आगे बढ़ेगा। तो इस विषय पर हम अपनी बातचीत को विराम देते हैं और चलते हैं फिल्म संगीत की ओर। और मन का मयूरा अभी बारिश के बूंदों में नाचने को कर रहा है, तो आइए बारिश से रिलेटेड ये प्यारा सा नगमा सुनें।

0: 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का, 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: छोटे से अंतराल के बाद कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। बहनों, समय पर उठना, थोड़ी हल्की एक्सरसाइज करना, सुबह की सैर करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, और जल्दी उठना और जल्दी सोना, और संतुलित और पौष्टिक भोजन करना, समय के अनुरूप चलना, और सबसे ज़रूरी बात सकारात्मक रहना, खुश मिजाज रहना। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद हैं। तो आइए आज हम सुनते हैं हमारी रेडियो सखी प्रेरणा को, छोटी छोटी बातें सेहत के लिए फायदेमंद है के विषय पर।
1: नमस्कार श्रोताओं, एक छोटी मुलाकात के अंतर्गत आज हम आप सबसे बातें करेंगे। छोटी छोटी बातें सेहत के बड़े फायदेमंद। अक्सर हम महिलाएं घर परिवार, बच्चों की पढ़ाई, रसोई और कामकाज की जिम्मेदारियों में इतनी उलझ जाती हैं कि खुद की सेहत पर ध्यान देना ही भूल जाती हैं। जब भी सेहत की बात आती है हम सोचते हैं कि अभी तो कोई बीमारी नहीं तो सेहत की चिंता क्यों करना। लेकिन सच मानिए, हमारी यही लापरवाही आगे चलकर बड़ी बीमारियों का कारण बन जाती है। यही सोच आगे चलकर बड़े परेशानी खड़ी कर देती है। लेकिन अगर हम जीवन में थोड़ा सा सजग और सतर्क रहें तो हमारी जीवन हमेशा सेहतमंद और खुशहाल बना रह सकता है। और इस सजगता की शुरुआत होती है हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से, जैसे सुबह सही समय पर उठना, भरपूर पानी पीना, पौष्टिक भोजन लेना और अपने मन को खुश रखना। यही छोटे छोटे कदम हमें एक लंबा और निरोग जीवन देता है। हम महिलाओं की एक आदत होती है घर में सबको गरम गरम और समय पर खाना खिला देना, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो काम के चक्कर में खाना को टाल देती है। यहाँ तक कि सुबह का नाश्ता हो वो तो छोड़ ही देती है। यही आदतें आगे चलकर एसिडिटी, माइग्रेशन, खून की कमी और जोड़े के दर्द का कारण बन सकती है। बहनों, याद रखिए कि शरीर को समय पर पोषण मिलना बेहद जरूरी है, तो खुद भी समय पर खाएं और पौष्टिक आहार लें। यहाँ तक कि महिलाएं कामों में उलझ कर पानी पीना भी भूल जाती है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ना सभी के लिए जरूरी है। ये ना केवल आपकी त्वचा को निखारती है बल्कि दिन भर की थकान और चिड़चिड़ापन को दूर करती है। और सबसे बड़ी बात, यह आपको डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी से बचाकर रखेगा। इसीलिए काम चाहे कितनी भी हो अपने पास पानी की एक बोतल जरूर रखें और थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहें। बहनों, समय पर खाना और पानी पीने के साथ ही आपको अपने शरीर को तरोताजा रखने के लिए योग और थोड़ा मनोरंजन भी करना जरूरी है। सुबह का योग और ध्यान आपको अंदर से मजबूत बनाएगा, आपके शरीर को फुर्तीला बने रहने में मदद करेगा। साथ ही दिन में थोड़ा समय निकालकर बाहर टहलने निकले, संगीत सुने या अपनों के साथ हंसी खुशी के पल बिताएं। बहनों, यही वे छोटे छोटे कदम हैं जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर थोड़ी सी सजगता के साथ अपने जीवन को खुशहाल बना सकती हैं और खुद को हमेशा स्वस्थ रख सकती हैं। तो सेहत से जुड़ी इस चर्चा को आप अपने जीवन में जरूर अपनाइएगा। नमस्कार।

बहनों, इस वार्ता के बाद आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे पावन पर्व की जो हमें ज्ञान, संस्कार और कृतज्ञता का संदेश देते हैं। वो है गुरु पूर्णिमा। बहनों, आज गुरु पूर्णिमा है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला यह पर्व महर्षि वेदव्यास की स्मृति को समर्पित है। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध किया, इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात इसका अर्थ है कि गुरु सृजन, पालन और कल्याण का मार्ग दिखाने वाले होते हैं। वे हमारे जीवन में ज्ञान का दीप जलाते हैं और सही गलत की पहचान कराते हैं। गुरु केवल विद्यालय के शिक्षक ही नहीं होते, हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग, जीवन की प्रेरणा देने वाले व्यक्ति और हमें अच्छे संस्कार सिखाने वाले सभी लोग किसी न किसी रूप में हमारे गुरु हैं। उन्हें सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। आज के आधुनिक युग में जानकारी तो बहुत है, लेकिन सही दिशा देने वाला मार्गदर्शन सबसे अधिक आवश्यक है। इसलिए गुरु का महत्व पहले से भी अधिक बढ़ गया है। हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, उनके अनुभवों से सीखना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। प्रिय श्रोतागण, गुरु पूर्णिमा हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब उसके साथ विनम्रता, अनुशासन और अच्छे संस्कार जुड़े हों। तो आइए इस शुभ अवसर पर हम अपने सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में समाहित करें, अपनाने का संकल्प लें। तो ये तो थी गुरु पूर्णिमा पर हमारी छोटी सी बातचीत। आइए अब हर दिन कुछ खास में खास टिप्स हो जाए। आज खास टिप्स स्वास्थ्य उपचार के घरेलू नुस्खे से जुड़ा हुआ है। मानसून के मौसम में नमी और संक्रमण बढ़ने के कारण सर्दी, जुकाम, पेट की गड़बड़ी, त्वचा संक्रमण और मच्छरों से होने वाले बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि बारिश अभी कम हुई है हमारे यहाँ, बारिश अभी और भी होगी और होने के इच्छुक हैं हम सभी। और ऐसे में कुछ आसान और घरेलू उपाय पहले से जान लें। गुनगुना पानी पिएं, दिन भर गुनगुना पानी उबालकर या ठंडा किया हुआ पानी पीने से जल जनित रोगों या संक्रमण रोगों का खतरा कम हो जाता है और इससे जो पानी में जो दुर्गुण या दूषितपन रहता है वो दूर हो जाता है। इन दिनों तुलसी अदरक की चाय पीना बहुत ही सेहतमंद है। 5 से 7 तुलसी की पत्तियाँ और थोड़ा सा घिसा हुआ या कूटा हुआ अदरक डालकर चाय पीने से चाय का जायका बढ़ जाता है, मन फ्रेश हो उठता है और इससे सर्दी जुकाम की समस्या से राहत मिलती है। हल्दी वाला दूध 1 गिलास, गर्म दूध में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, वो भी हल्दी पाउडर ऑर्गेनिक होना चाहिए, मतलब प्योर शुद्ध, उसे मिलाकर पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और यह रात को सोते समय पीने से अधिक फायदेमंद साबित होता है। बंद नाक की समस्या हो तो इसके लिए भाप लेना चाहिए, इससे नाक बंद की समस्या से निजात मिलती है, साथ ही साथ गले की खराश की समस्या से भी निजात मिलती है। आप गर्म पानी में 4-5 तुलसी के पत्ते डालकर भी भाप ले सकते हैं, यह और अधिक फायदेमंद साबित होगी। गले दर्द या खराश की समस्या होने पर गर्म पानी में नमक डालकर उसी पानी से 2-4 बार गरारे करनी चाहिए, इससे समस्या से निजात मिलती है। पेट की समस्या नहीं हो इसके लिए बाहर से कटा हुआ फल, बासी और स्पाइसी भोजन तथा दूषित पानी से बचना चाहिए। बारिश में अगर भीग जाए तो तुरंत सूखे कपड़े से शरीर को पोंछना चाहिए, सूखे कपड़े पहनना चाहिए और पैरों को भी अच्छी तरह से सुखाएं ताकि फंगल संक्रमण से बचाव हो सके। नहीं तो बारिश के समय अक्सर लोगों के पैरों में पानी लगने की यानी कि फंगल इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है।

मच्छरों से बचाव सबसे अधिक जरूरी है, खासकर बारिश के दिनों में। बारिश के दिनों में पानी का जल जमाव ठहराव रहता है, इससे मच्छर अधिक पनपते हैं। इसके लिए घर के आसपास पानी का जमाव नहीं होने दें, स्वच्छ वातावरण बनाएं, मच्छरदानी आदि का व्यवहार अवश्य करें, इससे मच्छरों से बचाव होगा। इन दिनों विटामिन सी युक्त फलों का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद और सेहतमंद है। अमरूद, संतरा, नींबू, आंवला आदि का प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। इसके साथ साथ पौष्टिक और संतुलित भोजन करना चाहिए, भरपूर नींद लें और 7 से 8 ग्लास कम से कम स्वच्छ पानी पिए। इस तरह आप स्वस्थ रह सकते हैं और बारिश का पूरा पूरा आनंद ले सकते हैं। तो आइए बारिश के बूंदों से भरा हुआ एक और प्यारा सा नगमा सुनें।

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: अभी आप मिलन फिल्म का ये प्यारा सा नगमा कार्यक्रम नारी संसार का के अंतर्गत सुन रही थी। आइए, थोड़ा सा समय बचा हुआ है, थोड़ी सी और बातचीत हो जाए। बहनों, गृहिणी का योगदान हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में बहुत अधिक होता है। गृहिणी किसी भी परिवार की आधारशिला होती है। वह केवल घर का काम करने वाली महिला नहीं, बल्कि पूरे परिवार का को प्रेम, संस्कार, अनुशासन और सुरक्षा के सूत्र में बांधने की वाली शक्ति होती है। उनका सदैव सम्मान करना चाहिए। उनके दिन की शुरुआत सबसे पहले होती है, यानी सबसे पहले परिवार में जागने वाली गृहिणी ही होती है जो सभी का ख्याल रखती है, और अक्सर दिन का अंत सबके बाद ही होता है उनका। परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, बच्चों का पालन पोषण, बुजुर्गों की सेवा, भोजन की व्यवस्था, घर की साफ सफाई और घरेलू बजट का संतुलन बनाए रखना, ये सभी जिम्मेदारियां वह निस्वार्थ भाव से निभाती हैं। गृहिणी का योगदान आर्थिक रूप से भले ही दिखाई न दे, लेकिन उनका श्रम अमूल्य है। यदि वही सारे कार्य किसी बाहरी व्यक्ति से कराए जाएं, तो उन पर बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। इसलिए गृहिणी का कार्य केवल सेवा नहीं, बल्कि परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है। अक्सर गृहिणियों का जो योगदान होता है, अक्सर घरों में देखा जाता है, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जबकि बाहर कमाने वाली हो तो उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन यह कतई न करना चाहिए। आज के समय में अनेक गृहिणियाँ घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ स्वरोजगार, ऑनलाइन कार्य, हस्तशिल्पी, सिलाई कढ़ाई और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से परिवार की आय बढ़ाने में योगदान भी दे रही हैं। वो अपने आप को अपडेट करने में लगी रहती हैं। वे यह सिद्ध कर रही हैं कि गृहिणी होना कमजोरी नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी है। समाज और परिवार का कर्तव्य है कि गृहिणियों के श्रम को और त्याग को सम्मान करे, उनके निर्णयों को महत्व दे, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, विश्राम और आत्मविकास का अवसर प्रदान करे। तो बहनों, कार्यक्रम की समय सीमा समाप्त होने जा रही है। इसी कार्यक्रम के जरिए हम मिलते रहेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्ते।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर पर हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार बस कुछ ही देर में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थी

0: पक्षों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है।
1: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने का आरोप लगाया है।
2: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, वो इधर उधर का बात करके और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर 1 जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल ही में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है। उन्होंने इस महीने होर्मुज से गुजरने के दौरान जीएफएस गैलेक्सी, एमटी अल बहिया और एमटी मुंबासा सहित कई जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा से ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद चल रहे राहत कार्यों की जानकारी ली। डॉ शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति की समीक्षा की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बहाली और पुनः निर्माण के लिए केंद्र सरकार के हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 823 अंक बढ़कर 77,588 तथा निफ्टी 236 अंक की वृद्धि के साथ 24,221 पर थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे दें। अब से कुछ ही देर में यानी दोपहर के 1:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। दोपहर के 2:00 हमारे पटना केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे और दोपहर के 2:05 पर इलाकाई खबरों का प्रसारण आप सुनेंगे हमारे पटना केंद्र से। दोपहर के 2:10 पर आप सुनेंगे रोजगार सूचना और देश दुनिया की खबरें आप सुनेंगे दोपहर समाचार में हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

कार्यक्रम विवरण में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे दें। अब से कुछ ही देर में यानी दोपहर के 1:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। दोपहर के 2:00 हमारे पटना केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे और दोपहर के 2:05 पर इलाकाई खबरों का प्रसारण आप सुनेंगे हमारे पटना केंद्र से। दोपहर के 2:10 पर आप सुनेंगे रोजगार सूचना और देश दुनिया की खबरें आप सुनेंगे दोपहर समाचार में हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। दोपहर के 2:30 पर आप फिर से आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। दोपहर के 3:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत का हमारा कार्यक्रम और श्रोताओं ये थी हमारे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम में शाम 5:00 युवाओं पर आधारित कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे शाम के 5:00। शाम के 6:10 पर आप फिर से सुनेंगे विद्यापति गीत। हमारे ग्रामीण श्रोता भाइयों का कार्यक्रम गांव घर का प्रसारण किया जाएगा शाम के 6:30 पर। आज चर्चा का विषय है गुरु पूर्णिमा और प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे पारा मेडिकल पारस 15। हमारे कृषान श्रोता भाइयों का कार्यक्रम खेती गृहस्थी का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:00। चर्चा का विषय है मिट्टी की जांच लिए नमूने कैसे लें। रात्रि के 8:15 पर आप सुनेंगे हमारा मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: भोर होते उठ जाओ कि एकता इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत है, फूल प्रकृति में घोराए लगत है, ऊर्जा आबा वाला काल ले
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेत।
3: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं हैत तो खेती नहीं हैत, आ खेती जो नहीं हैत उपजा नहीं हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

फिल्म तुम बिन का ये गीत अभी आप सुन रहे थे केएस चित्रा की आवाज में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म कसूर से, आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार शानू की।

तो श्रोताओं भी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। विनोद राठौर और आशा भोसले की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म चांदनी से। शिव हरिक के संगीत ने सजाया था इस गीत को और इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी साहब ने। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म नागमणी से, शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

फिल्म सपने साजन के का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, मुकुल अग्रवाल और अलका याग्निक की आवाज़ में। श्रोताओं भी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का। हमारे

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। हमारे पटना केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार बस कुछ ही देर में, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लोकसभा में आज भी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी है। इस दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इससे पहले आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधेयक पर चर्चा

0: जारी रखने की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को बताया कि विधेयक पर चर्चा के लिए दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने और विधेयक पर चर्चा में भाग लेने की अपील की। हालांकि लगातार हंगामे के कारण अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इधर राज्यसभा की भी कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। पटना उच्च न्यायालय ने नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अनियमितताओं से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 3 जिलों पटना, लखीसराय और पूर्णिया में फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया है। इन अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर दी गई है। पटना के लिए गौरव सिंह, लखीसराय के लिए सीमा भरतिया और पूर्णिया के लिए ठाकुर अमन कुमार को पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। ये बैठक अपराहन 5 बजे मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाघ संरक्षण केवल एक प्रजाति की रक्षा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समूचे पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने और प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध को बनाए रखने से संबंधित है। श्री यादव ने आज नई दिल्ली में वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर कहा कि प्राकृतिक स्थलों को केवल पर्यटन स्थल के रूप में नहीं, बल्कि इन्हें ऐसे स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए जहां इंसान शांति का अनुभव कर सके। प्रदेश के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ने से हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज सुपौल, अररिया, किशनगंज समेत राज्य के उत्तर पूर्व भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ वर्षा की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात हो सकता है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बांका, भभुआ और पश्चिम चंपारण जिले में विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के डीआरडीए सभागार में एनसीसी कैडेट और भारत स्काउट गाइड के छात्रों के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्रों को आपदा प्रबंधन उपायों की जानकारी दी गई। अररिया के संयुक्त श्रम भवन में कल जिला नियोजनालय की ओर से एक दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में विभिन्न कंपनियों के द्वारा योग्य लोगों का चयन किया जाएगा। सारण जिला प्रशासन ने श्रावणी मेला के मद्देनजर कल से 28 अगस्त तक पुराने गंडक पुल तक पुल पर यातायात परिचालन बंद कर दिया है। इस दौरान सोनपुर हाजीपुर के बीच नए गंडक पुल से वाहनों का परिचालन होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित

0: प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। लोकसभा में आज भी अवामी इम्तहान नाजायज राय निपटारा तरमीमी बिल 2026 पर बहस जारी है। इस दौरान अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के बयान को लेकर ऐवान में हिजब इकतदार और मुखालिफ के राकिन के दरमियान नोकझोंक हुई। इससे पहले आज सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही बिल पर बहस जारी रखने की मांग को लेकर अपोजिशन ने हंगामा किया। स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान को बताया कि बिल पर बहस के लिए दोपहर 2 बजे तक का वक्त मुकर्रर है। उन्होंने अपोजिशन के राकिन से वक्फे सवालात चलने देने और बिल पर बहस में हिस्सा लेने की अपील की। हालांकि लगातार हंगामे के सबब स्पीकर को ऐवान की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी। इधर राज्यसभा में भी कार्रवाई मुतासिर हुई। लोकसभा ने एक मुल्क एक इंतखाब से मुतल्लिक बिलों की जांच कर रही मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी JPC की मुद्दतकार

545 आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026 से आवेदन की अंतिम तिथि 9/8/2026 तक। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल और अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। LOB का पद लोकल बैंक ऑफिसर, क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री। ऑफिशियल वेबसाइट pnb.bank.in पे जाके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

रोजगार सूचना में आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI कुल पद 395, आवेदन शुरू होने की तिथि 21/7/2026 से आवेदन की अंतिम तिथि 10/8/2026 तक। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष हो और अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष हो। SO का पद निकला है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट unionbankofindia.bank.in पर जाके पता कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक कुल पद

आवेदन शुरू होने की तिथि 30 जून 2026 से आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई तक। 18 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा और 30 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए और 33 वर्ष ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड

इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCAR में कुल पद 200 आवेदन होने की शुरू होने की तिथि है 20/7/2026 से, आवेदन की अंतिम तिथि 19/8/2026 तक। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष हो, अधिकतम उम्र सीमा 24 वर्ष। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए SSC या मैट्रिकुलेशन, क्लास 10th पास आउट या ITI पास होना चाहिए, NCVT और SCVT। ऑफिशियल वेबसाइट www.igcar.gov.in पे जाके विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। NFR रेलवे एप्रिसेंट रिक्वायरमेंट, कुल पद 6777, आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026 से, आवेदन की अंतिम तिथि 19/8/2026 तक। न्यूनतम उम्र सीमा 15 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 24 वर्ष। ऑफिशियल वेबसाइट www.nfr.requirement.in पर जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, कुल पद 163, आवेदन शुरू होने की तिथि 22/7/2026 से, आवेदन की अंतिम तिथि 10/8/2026 तक। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। ऑफिशियल वेबसाइट hcraj.nic.in पे जाके विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार सूचना आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार बस कुछ ही देर में, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। भारत ने हुरमूज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का

0: प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
1: कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बताओ के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
0: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
2: झारखंड के अंदर एक टीडीपीएल एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि जेपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, खाली परोस के दे दिया, अब आप कहाँ से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
3: जेपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं।

0: हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
1: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
2: प्रश्न है कि सिर्फ पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हां कहे हैं, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहे हैं, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष हुआ, हां वालों पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनःस्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
3: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए NDRF और ODRAF के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
5: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
6: कॉल्स फॉर एन इमीडिएट डीएस्केलेशन ऑफ टेंशंस।
1: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि MV अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील

0: उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि ये घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
1: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। साजना सरगम को सुनिए। फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर। गीतकार है समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। आइए अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। सबसे पहले सुनते हैं फिल्म गुरु से लिए गए इस गीत को।

फिल्म फिल्म दिल का क्या कसूर का ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और कुमार शानू की आवाज़ में। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में

आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर संध्या 6:30 पर। साहित्य संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 पर। अब समय हो रहा है हमारे सुगम संगीत के कार्यक्रम का, तो आइए सुनते हैं खुशबू कुमारी के स्वर में सुगम संगीत।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का हमारा कार्यक्रम। खुशबू कुमारी और मंजू देवी की आवाज़ में आप सुन रहे थे भजन। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो के घड़ी में 3:20 हो रहे हैं। यहीं समाप्त होती है आज की हमारी पहली सभा। हम अपनी दूसरी सभा में शाम 5 बजे फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें।

0: का प्रयोग किया जाता था, जबकि आजकल उच्च गुणवत्ता वाली जरी का भी उपयोग होता है। अब सोने चांदी का उपयोग कहाँ कोई कर सकता है,
1: बहुत महंगी तो हो जाएगी,
0: बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी और पहनने के बाद भी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी तो इसलिए कि वो नहीं लगे तो अच्छा है
1: जी। और कसाऊ साड़ी का इतिहास कई सौ वर्ष पुराना माना जाता है। ये केरल की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग रही है। प्राचीन समय से इसे विशेष अवसरों और धार्मिक अनुष्ठानों में पहना जाता था। समय के साथ ये साड़ी देश विदेश में अपने विशिष्ट सुंदरता के कारण लोकप्रिय हो गई है।
0: और अमूमन इसका मूल रंग सफेद या ऑफ व्हाइट होता है। चौड़े सुनहरे जरी बॉर्डर इसकी मुख्य पहचान है। ये हल्की और आरामदायक होती है, साथ में आकर्षक भी। पारंपरिक होने के साथ साथ आधुनिक डिजाइनों में भी ये उपलब्ध है।
1: यानी आजकल इसमें सुनहरे बॉर्डर के साथ साथ लाल, हरे, नीले और मैरून रंगों की सजावट भी देखने को मिलती है। और कसाऊ साड़ियों का निर्माण मुख्यतः हथकरघा यानी हैंडलूम पर किया जाता है। पहले सूती धागों से साड़ी बुनी जाती है, फिर उसके किनारों पर सुनहरी जरी जोड़ी जाती है। इसी पूरी प्रक्रिया में बुनकरों की महीन कारीगरी और धैर्य का विशेष योगदान होता है। और केरल के बलरामपुरम, चेंदमंगलम, कुथमपुल्ली और कन्नूर जैसे क्षेत्र कसाऊ साड़ियों की उत्कृष्ट बुनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ अनेक परिवार पीढ़ियों से इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं।
0: और ये भी बता दें कि कसाऊ साड़ी विशेष रूप से ओणम, विशु, विवाह, मंदिरों के धार्मिक समारोहों, सांस्कृतिक आयोजनों और शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियों में पहनी जाती है। केरल की दुल्हन भी विवाह के अवसर पर पारंपरिक कसाऊ साड़ी पहन लेती है। और कसाऊ साड़ी केवल एक परिधान ही नहीं है, पहनावा ही नहीं है, बल्कि केरल की बाकायदा संस्कृति है, परंपरा है और हस्तशिल्प की पहचान भी है। इसके निर्माण से हजारों बुनकर परिवारों को आजीविका मिलती है। ये भारतीय हस्तकरघा उद्योग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: कसाऊ साड़ी सादगी, शालीनता और भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम है। इसकी सुनहरी आभा केवल वस्त्र की शोभा नहीं बढ़ाती, बल्कि केरल की समृद्ध विरासत, बुनकरों की कला और भारतीय परंपरा की चमक को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। इसलिए कसाऊ साड़ी को भारतीय संस्कृति का एक अनमोल धरोहर माना जाता है।
0: अब एक गाना सुनते हैं और फिर और चर्चा करते हैं अन्य विषयों पर भी।

0: ममता जी, एक हमारे साथी कहते हैं कि लेडीज के लिए कपड़े जितने हो उतने कम ही होते हैं। साड़ी तो अलग अलग जगहों से लेना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उस साड़ी को जब हम पहनते हैं तो उस जगह की, उस शहर की यादें ताजा हो जाती है।
1: क्या बात है। और कुछ लोगों को साड़ियों का इतना ज्यादा शौक होता है कि पहले साड़ी के बारे में रिसर्च करते हैं और उस साड़ी की विशेषता के बारे में जानकारी हासिल करती हैं महिलाएं, फिर वो साड़ी खरीदती हैं। और फिर आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है और वहां पर
0: पहन के पोस्ट करना
1: हाँ। फोटो डालना और उसके बारे में लिखना, ये भी आजकल चलन में है। तो जिनको रुचि है, ये अच्छी बात है। अगर आप कोई विशेष साड़ी पहन रही हैं और उसके बारे में जानकारी है तो आप सोशल मीडिया पे बातें अपनी लिखती हैं और लोग लाभान्वित होते हैं, तो अच्छी बात है।
0: अब जैसे सखी ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है।
1: जैसे सखी सहेली कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत सारी बातें अपनी सखियों तक पहुंचा रहे हैं कि जब कोई नई साड़ी खरीदती हैं और उसके बारे में आपको लगता है कि बताना चाहिए, तो आप लिख सकती हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर और हम आपकी बात आप तक पहुंचाएंगे। मतलब उससे नए श्रोता भी जानेंगे कि अन्य साड़ियों की अन्य क्या क्या विशेषताएं होती हैं, है ना
0: जी।
1: तो अब क्या करें हम,
0: ब्रेक
1: लेते हैं। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर और भी हम बातें करते हैं।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब

0: माना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
2: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली और सोनाली जी, आज का जो आधुनिक युग है इसमें क्रेडिट कार्ड केवल एक प्लास्टिक कार्ड नहीं होता है, बल्कि सुविधाओं, आकर्षक ऑफरों और तात्कालिक इच्छाओं का ऐसा संसार बन चुका है जो देखते ही देखते व्यक्ति को आर्थिक भ्रमजाल में उलझा सकता है और हम सब कहीं न कहीं कभी न कभी उलझ जरूर जाते हैं,
4: माया जाल में उलझ जाते हैं।
3: और बिना जेब में पैसे रखे खर्च करने की शक्ति देता है भाई, लेकिन यही शक्ति संयम से न बरता जाए तो आर्थिक स्वतंत्रता को बंधन में ये बदल सकती है।
4: और क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज हमें आज खरीदो बाद में भुगतान करो का अवसर देता है। शुरुआत में यह सुविधा बहुत आकर्षक लगती है ना ममता जी, महंगे मोबाइल है भाई, फिर कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, छुट्टियां हैं या रेस्टोरेंट का खर्च है, सब कुछ एक छोटी सी स्वाइप में संभव हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति को यह एहसास ही नहीं रहता कि वो अपनी वर्तमान आय नहीं बल्कि भविष्य की कमाई खर्च कर रहे हैं।
3: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और कैश रखने की जहमत भी नहीं उठाना है, और क्योंकि कैश रखो, गिनो, खर्च करो, कई बार गिरने का भी खतरा रहता है, तो ये फायदेमंद भी है लेकिन कई बार नुकसानदेह भी होता है। बाजार इस मनोविज्ञान को भली भांति समझ जाता है, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, जीरो डाउन पेमेंट और विशेष छूट जैसे आकर्षक प्रस्ताव उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं।
4: यानी हमें जो लालच मिल जाता है तो हम भी लालची बन जाते हैं, और कई बार लोग केवल ऑफर का लाभ लेने के लिए ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं ममता जी जिनकी ने वास्तव में आवश्यकता ही नहीं होती है। क्रेडिट कार्ड का सबसे खतरनाक पहलू तब सामने आता है जब व्यक्ति केवल न्यूनतम भुगतान यानी मिनिमम पेमेंट करता है, उसे लगता है कि उसने बिल भर दिया, लेकिन जब शेष राशि पर ऊंचा ब्याज जुड़ता है तब समझ में आता है।
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो हम सब इस माया जाल में कभी न कभी तो फंसे। साड़ियों की बात कर रहे थे तो आप भी साड़ी खरीदने गई होंगी निश्चित रूप से कि चलो आज ये साड़ी खरीद ही लेते हैं,
4: ये तो मन बहुत है, भले ही हमारे अकाउंट में नहीं है पर क्रेडिट कार्ड तो है हमारे पास में,
3: तो ये हम सब कभी न कभी करते ही है। इससे
4: समय के साथ ब्याज इतना बढ़ जाता है ममता जी कि मूल खर्च से कहीं अधिक राशि हमें चुकानी पड़ सकती है और धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है और आर्थिक तनाव भी आ जाता है।
3: जाहिर सी बात है, अगर ब्याज होगा, बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा तो तनाव तो होगा ही। ये मायाजाल केवल पैसों तक सीमित नहीं रहता है बल्कि लगातार बढ़ते बिल, भुगतान की चिंता और कर्ज का दबाव मानसिक शांति भी छीन लेता है। कई परिवारों में तो आर्थिक असंतुलन के कारण तनाव, विवाद, लड़ाई झगड़े, भविष्य की योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बचत घटने लगती है और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटना कठिन होने लगता है।
4: हालांकि क्रेडिट कार्ड स्वयं में बुरा नहीं है, ये एक उपयोगी वित्तीय साधन है, इसका उपयोग समझदारी से किया जाए, समय पर पूरा बिल चुकाना, अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना, अनावश्यक खरीदारी से बचना, एक साथ अनेक क्रेडिट कार्ड ना रखना और ऑफरों के मोह में ना फंसना, ये आदतें व्यक्ति को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखती है।
3: बिल्कुल सही सोनाली जी, आपको याद होगा बचपन में अपने माता पिता को, दादी को, नानी को बजट का हिसाब करते हुए देखा था, कागज पर, पन्ने पर लिखा जाता था खर्च कितना हुआ और कितने पैसे आए, कितनी है और कितने खर्च करने हैं, महीने के बाकायदा सामान की लिस्ट बनती थी। अब वो सब है ही नहीं, वो जमाना ही नहीं रहा, अब तो आप सीधे मॉल में चले जाइए, शॉप पर चले जाइए और चीजें खरीदते रहिए और हाँ कितना हुआ बिल, वो पेमेंट आप सीधे कर देते हैं, तो ये एक नुकसान हो गया है क्रेडिट कार्ड का, फायदे भी है।
4: बिल्कुल सही बात कही कि पुराने जमाने में यानी 2-3 महीने बाद में कोई बड़ा त्यौहार आने वाला है, जैसे दिवाली आने वाली, तो उसकी तैयारियां 2-3 महीने पहले से की जाती थी कि हमें ज्यादा बचत करना है तो फिर त्योहारों के वक्त हमारा खर्च ज्यादा होगा, आजकल हम इन बारे में कुछ सोचते ही नहीं।
3: और बुजुर्ग कहा करते थे चादर जितनी हो उतनी ही पांव पसारे, और अब चादर की ओर कोई ध्यान नहीं देता तो कई बार जो कर्ज तले भी फंस जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड सुविधा देता है, आय नहीं बढ़ाता है, वास्तविक समृद्धि अधिक खर्च करने में नहीं बल्कि संतुलित खर्च, नियमित

0: जाग्रत और विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने में है।
1: और जिस प्रकार क्रेडिट कार्ड का आकर्षण भी यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो आर्थिक जीवन को उलझा सकता है, और क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग जीवन को सरल बना सकता है, लेकिन लापरवाही इसे आर्थिक संकट का कारण बना सकती है। इसलिए खरीदारी से पहले स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछें, क्या मेरी यह आवश्यकता है या केवल एक क्षणिक इच्छा है। यदि इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से दिया जाए तो क्रेडिट कार्ड कभी मायाजाल नहीं बनेगा बल्कि एक उपयोगी वित्तीय साथी सिद्ध होगा।
0: बिल्कुल सही कह रही, क्रेडिट कार्ड की चमक क्षणिक होती है लेकिन कर्ज का बोझ वर्षों तक चलता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखें। और हमें ध्यान रखना है कि सुनवा दे एक गाना इस वक्त।

0: सोनाली जी कहाँ खोई हुई हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर बस टिप्पणियां ही देखती रहेंगी या कुछ कहेंगे भी?
1: हाँ, कहेंगे ममता जी। श्रोताओं ने इतने सुंदर सुंदर हमें कमेंट्स लिखकर भेजे हैं, तो चलिए उन्हीं के कमेंट्स पढ़ रहे हैं।
0: वो तो हम समझ गए कि आप ढूंढ रही हैं लगातार, लेकिन पढ़ के भी सुना दीजिए कुछ कमेंट, हम भी तो सुन लें क्या आपने अभी क्या पढ़ा।
1: जी, हमारे एक साथी ने क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत अच्छी बात लिखी है। ये कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का मायाजाल मैं बताना चाहूंगा। जब क्रेडिट कार्ड का चलन जब शुरू हुआ था, उस समय प्राइवेट बैंक के कर्मचारियों ने चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया था, लेकिन बिल में ऐसे चार्जेस

0: लगाना शुरू हो गए थे जिनके विषय में मुझे बताया ही नहीं गया, और बहुत जल्दी मैंने अपना क्रेडिट कार्ड सरेंडर कर दिया। उस समय से आज तक मैंने तौबा कर ली है, और अभी भी मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड का कोई ऑफर आता है तो मैं मना कर देता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि जान बची लाख उपाय।
1: और हमने अपने श्रोताओं से ये भी आह्वान किया था कि शब्द हमारे, विचार आपके
0: जी।
1: तो अभी तक कोई टिप्पणी तो दिख नहीं रही है
0: जी।
1: तो शब्दों का प्रयोग कैसे करें ये लगता है श्रोता समझ नहीं पाए क्या? और हमें तो इंतजार रहता है उनकी टिप्पणियों का, और उन्हें इंतजार रहता है कि हम उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचाएं। तो तब तक एक काम करते हैं, हम व्यंजनों की बात करते हैं। और ये जो व्यंजन व्रत में खाए जाने वाले व्यंजनों की हमने चर्चा की थी, तो हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि व्रत के शाही नमकीन कच्ची मूंगफली 100 ग्राम। अब यहाँ पर एक मिनट हम अपने श्रोताओं से फिर कह दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टिप्पणी शामिल हो, क्योंकि ये जो सेगमेंट हम श्रोताओं के नाम रखते हैं कि हम एक विषय देते हैं और आपको अपनी टिप्पणी लिखनी होती है
0: जी।
1: तो आदर शब्द हमने दिया है आज, तो आदर पर वो उनके क्या विचार हैं वो भेजें। तब तक हम ये टिप्पणी पढ़ रहे हैं
0: जी।
1: व्रत की शाही नमकीन बनाने के लिए कच्ची मूंगफली 100 ग्राम ले लें, और मोटा वाला साबूदाना ले लें 100 ग्राम, 100 ग्राम काजू, 10 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम चारोली, चारोली यानी चिरौंजी दाने,
0: चिरौंजी,
1: और बादाम गिरी 100 ग्राम, मखाने 50 ग्राम, खरबूजा और कद्दू के बीज 50-50 ग्राम शुद्ध घी तलने के लिए। अगर आप तलना नहीं चाहती हैं तो सिर्फ मूंगफली को भून ले, सेक ले, सारी चीजों को मिक्स करके ऊपर से 2 चम्मच घी डालकर, काली मिर्च, सेंधा नमक और पुदीने का चूर्ण डालकर एयर फ्रायर में 160 डिग्री पर 10-15 मिनट के लिए लगा दें। आपकी हेल्दी नमकीन तैयार हो जाएगी। और अगर घर में एयर फ्रायर ना हो तो कढ़ाई में घी डालकर तल भी सकती हैं, या कम घी में भी भून कर बना सकती हैं। यहाँ एक बात ध्यान देना है कि एयर फ्रायर में साबूदाना न डालें, साबूदाने को अलग से कढ़ाई में भून कर फिर इस मिश्रण को मिक्स करें।
0: एक हमारे साथी ने मखाने या साबूदाने की खीर की रेसिपी लिखकर भेजी है कि दूध को गाढ़ा करके मखाने, मेवे और चीनी डालकर बनाई जाने वाली एक पारंपरिक मिठाई, फलों का रायता, ताजे दही में अनार, सेब और केला मिलाकर बनाया गया एक ताजा सेहतमंद विकल्प है। साथ ही एक साथी ने लिखा है कुट्टू का आटा, इससे स्वादिष्ट और कुरकुरी कुट्टू की पूड़ी, पकौड़ी या पराठे बनाए जाते हैं जो शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं। सिंघाड़े का आटा, इसका उपयोग मुख्य रूप से मीठे सिंघाड़े का शीरा यानी हलवा या नमकीन सिंघाड़े की कड़ी बनाने के लिए किया जाता है। राजगिरा का आटा, इसकी रोटियां और पूरी स्वास्थ्य के लिए बेहद पौष्टिक है। और एक हमारे साथी ने तो व्रत वाले दही वड़े लिखकर भेजे हैं।
1: अरे वाह, तब तो आप जरूर बताइए कैसे बनाते हैं।
0: 1 कप सामा के चावल, 1/4 कप साबूदानों को अच्छे से धोकर 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, फिर पानी छान कर दोनों को मिक्सी में डालें, साथ में हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा सेंधा नमक और 2 चम्मच पानी डालकर चिकना पेस्ट कर ले। अब इस पेस्ट को एक पैन में डाल के मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक ये गाढ़ा होकर आटे जैसा ना बन जाए। मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें कद्दूकस किया हुआ एक उबला आलू, हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से गूंथ ले, और हाथों में थोड़ा थोड़ा तेल लगाए और मिश्रण से गोल गोल बड़े बनाए, और गर्म तेल या घी में मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तल ले, और तले हुए गर्म वड़ों को हल्के गुनगुने पानी जिसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला लो 5 मिनट के रख दे, फिर हल्के हाथों से निचोड़ कर निकाल ले। अब आवश्यकता अनुसार दही ले, इसमें चीनी और थोड़ा सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह फेंट ले। एक प्लेट में वड़े रखे, ऊपर से गाढ़ा फेंटा हुआ दही डाले। इसके बाद व्रत वाली खट्टी मीठी चटनी, अमचूर या खजूर की हरी चटनी, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च और अनार दानों के साथ साथ ठंडा ठंडा परोसे।
1: क्या बात है। और हमारी एक सखी लिख रही है कि व्रत में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, पर मेरी समझ से व्रत का मतलब शरीर को डिटॉक्स करना है, जिसमें हमें तरल पदार्थ और वो पदार्थ जो आसानी से पच जाने जाए लेने चाहिए, जैसे कि कम घी में भुने मखाने, ऐसे ही भगर यानी कि सामा के चावल की खिचड़ी और खीर, फल मिक्स, कच्चे सलाद, खीरा, गाजर, चुकंदर का रायता, दही, नींबू, पानी, छाछ और खूब सारा पानी, इससे शरीर भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ये बात भी सही है कि जब हम व्रत करते हैं कि हमें मतलब शरीर को थोड़ा आराम मिले, पेट को आराम मिले, तो ये तरीका भी सही है। व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि रोज की तुलना में खूब सारा तला भुना खा लें और इतना ज्यादा खा लें कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए
0: जी।
1: और इस समय हम एक गाना सुनवा लेते हैं, तब तक हमें इंतजार रहेगा कि हमारे श्रोता लिख भेजेंगे। कुछ टिप्पणियां आई हैं शब्दों के लिए
0: जी,
1: लेकिन अभी

0: सुनारी, रात के कली एक ख्वाब में आई। हम रात को तो ख्वाब देखते ही हैं, कई बार दिन में भी लोग ख्वाब देखते हैं
1: जी।
0: और

0: अब देखने के बाद उसकी चर्चा भी करते हैं, बताते भी हैं, लेकिन कई बार कुछ बताने का अंदाज बड़ा अलग होता है, अनोखा होता है, जो आपको अलग जुदा करता है लोगों से, मतलब अच्छा लगता है। और कुछ लोगों के बोलने का अंदाज बहुत ही रफ होता है, रूखा होता है, रूखा होता है तो बहुत खराब लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि जब भी बोलें तो किसी के साथ सम्मान के साथ बोलें, आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, तो कितना अच्छा लगता है ना।
1: फिर
0: कई
1: वो
0: बार
1: बड़े हो, छोटे हो, बुजुर्ग हो, या फिर वो हम उम्र हो, ना।
0: तो आप छोटों से आदर के साथ बोलती हैं?
1: जी बोलना ही पड़ता है
0: नहीं
1: आजकल के
0: तो
1: छोटे भी
0: सीखेंगे कैसे?
1: जी जी
0: अगर हम उन्हें सिखाएंगे कि आप आदर के साथ बोलो और उन्हें आदर नहीं देंगे तो कहाँ से सीखेंगे, है ना।
1: ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने। वैसे आदर केवल एक शब्द नहीं बल्कि मानवीय रिश्तों की पवित्र बुनियाद है। दिखावा बनाम वास्तविकता, ये झुककर प्रणाम करने से ज्यादा मन में सद्भाव रखने की भावना है। समानता का प्रतीक है आदर, सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि हर छोटे बड़े व्यक्ति के अस्तित्व के लिए जरूरी है। ये बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है।
0: हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि शब्द होठों से निकलते हैं, विचार मन से जन्म लेते हैं, लेकिन आदर दिल से आता है, और जिस बात में दिल का आदर जुड़ जाए वो हमेशा याद रह जाती है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि आपके लिए एक छोटी सी बात शब्दों की मिठास कानों तक पहुंचती है, विचारों की गहराई मन तक, लेकिन आदर सीधे दिल में उतर जाता है। इसलिए जीवन में सबसे सुंदर भाषण हमेशा सम्मान वाले होते हैं।
1: एक साथ ही लिखते हैं, आप दूसरों को जो आदर देते हैं वो असल में आपके अपने संस्कार को दर्शाता है। अधिकार नहीं, उपहार, आदर कभी भी ताकत या पद के बल पर नहीं मांगा जा सकता, इसे अपने आचरण से कमाया जाता है। आत्म सम्मान से जुड़ाव, जो व्यक्ति खुद का आदर नहीं करता वो दूसरों का सच्चा आदर कभी नहीं कर सकता।
0: कई बार तो सम्मान लोग मांग के लेते हैं, कहते हैं कि देखो अरे आपने हमसे ऐसे बोला, हम तो इतने बड़े ओहदे पर काम करते हैं और ये हम इतने बड़े हैं आपसे उम्र में। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग आदर नहीं मांगते हैं, वो जैसे भिक्षा मांगते हैं, और आदर मांग के नहीं लिया जा सकता है
1: जी।
0: आदर के लायक
1: कमाया जाता है,
0: कमाया जाता है, उसके लायक बनना पड़ता है। आपके भी आपके अंदर कुछ ऐसा हो, आपके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ हो कि लोग अपने आप विनम्रता से झुक जाए आपके सामने।
1: एक साथी ने लिखा है कि आदर वो सुगंध है जो शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से फैलती है। जिस घर में आदर का दीपक जलता है वहां प्रेम की रोशनी भी कम नहीं होती है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि आदर वो खामोश भाषा है जिसे हर दिल बिना किसी अनुवाद के समझ लेता है। इसमें ऊंची आवाज की नहीं बड़े दिल की जरूरत होती है। जहाँ आदर हो वहाँ रिश्ते अपने आप खूबसूरत हो जाते हैं।
1: एक साथी ने और भी लिखा, आप पढ़ रही हैं? और
0: नहीं, आप पढ़िए, आपके हाथ में मोबाइल है और स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं।
1: जी तो, एक साथ ही लिखते, आदर ऐसी चीज है जिसे पाने की इच्छा हर इंसान के मन में होती है। बड़े हो या छोटे, हर किसी को अच्छा लगता है जब उसकी बात सुनी जाए और उसे महत्व दिया जाए। मेरा मानना है सम्मान देने से कोई छोटा नहीं होता और रिश्ते बल्कि रिश्ते बड़े हो जाते हैं। जब जहां आदर होता है वहां प्यार, अपनापन और विश्वास अपने आप आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, जैसे आपने हमें आदर दिया अभी कि आप पढ़ेंगे, तो मैंने कहा नहीं आप पढ़िए। तो ये एक शब्दों में आदर कहीं छिपा होता है
1: जी,
0: हमें बताने की जताने की जरूरत नहीं होती। ये तो हम श्रोताओं को बता रहे हैं, वरना हम आपस में कहां कभी बताते हैं कि हम आपको आदर दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आदर वो धन है जो बांटने से बढ़ता है। क्या बात है भाई, जिस व्यक्ति के व्यवहार में सम्मान होता है उसके रिश्तों में विश्वास और अपनापन बना रहता है। बड़े हो या छोटे, हर इंसान सम्मान का अधिकारी होता है। मीठे शब्द, विनम्र व्यवहार ही सच्चे संस्कार की पहचान है। हमने तो कई घरों में देखा है कि वो छोटे बच्चों से, 3-4 साल के बच्चों को भी आप कहकर बात करते हैं
1: जी।
0: तो कई बार ये भी लगता है इतने छोटे बच्चे को आप क्या कहना, लेकिन वहीं से सीखते हैं बच्चे
1: जी। और फिर बच्चे हम जैसा जैसा सुनते हैं वैसा ही वे पेश आते हैं।
0: अब आदर की बातें हो गई हैं, अब घड़ी की ओर जरा देखिए।
1: तो गाना सुनते हैं
0: ये गाना, प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: भाई दिल तो हमारा भी अभी नहीं भरा है, लग रहा है कि अभी और थोड़ा बोल लें बतिया लें, लेकिन बिल्कुल
1: रुकना पड़ेगा।
0: तो अब सभी श्रोताओं से लेते हैं इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार, नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, और इन दोनों गायकों ने न केवल मुकेश के बहुत सारे गाने गाए बल्कि ये भी बताया कि मुकेश की गायकी की क्या खासियत थी और मुकेश उनकी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं।

0: अच्छा ये बताइए अपने परिवार वालों में किसके लिए कौन सा गाना गाते हैं आप लोग?
1: नहीं पर्टिकुलरली ऐसा तो घर के अंदर, वो बोलते ना कि जो बाहर अपना प्रोफेशन होता है, घर के अंदर इंसान की आखिर पूरी पर्सनैलिटी अलग होती है
0: बिल्कुल
1: तो वैसा तो होता नहीं है। कभी घर के अंदर तो उल्टा शायद अगर गा रहे हो तो घर वाले बोलते होंगे कि भाई अभी यहाँ बंद।
0: आपके साथ भी ऐसा होता है?
2: मेरे साथ तो क्या है कि अगर रिहर्सल है और शाम को शो है तो मुझे पता है कि मैं सुबह निकल रहा हूँ, रात को ही घर वापस आऊंगा। तो वाइफ का थोड़ा सा मूड उखड़ा रहता है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, गा के चला आता हूँ। उसके बाद ना कोई फोन आता है ना कोई मैसेज आता है, घर में शांति बनी रहती है।
0: ये देखो गाना जो है एक जरिया बन गया खुश करने का। तो ये गाना सुनाइए फिर।
2: क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब

0: तो मतलब ये गाना काम कर जाता है,
1: कभी कभी कर जाता है।
0: अच्छा ये बताइए, रेडियो का आप लोगों की जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस रहा है बचपन से अब तक? विविध भारती एक ऐसी संस्कृति है, मैं इसको रेडियो चैनल के बजाय कल्चर कहना ज्यादा पसंद करता हूँ।
2: हम तो मैं समझता हूँ इतने खुश नसीब लोग हैं कि हमने अपने दौर में रेडियो का वो सुनहरा दौर भी देखा है कि जब एक किसी के पास एक रेडियो हुआ करता था और हम उसके घर पे इकट्ठा होकर 8-10 घर के अड़ोस पड़ोस के लोग, क्योंकि सबके रेडियो भी नहीं होता था, तो जैसे रेडियो सिलोन सुनते थे अमीन साहनी साहब को, तो वो दौर भी देखा। हवा महल एक प्रोग्राम आता था आपका, मेरा बहुत फेवरेट था वो, मैं 9:15 बजे वो हमें सुनता था।
0: क्या बात,
2: तो आपको इतना हमने सुना है इन दिनों आप जो काम कर रहे हैं, तो ये चीजें संगीत से जुड़े रहने के लिए और उस दौर के दिलचस्प बातें और किस्से सुनने के लिए बहुत अच्छा जरिया रहा है हमारी जिंदगी में, इसने बहुत अहम किरदार निभाया हमारे जिंदगी।
0: क्या बात है गोविंद, आप तो इलाहाबाद से आते हैं और बहुत पॉपुलर है वहां पर भी,
1: बहुत बहुत। और मैं तो मतलब इलाहाबाद जहाँ पे गांव में पला बड़ा हूँ वहाँ पे तो अक्सर लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम होती थी रात में।
0: हाँ।
1: तो हमारे घर के बाहर के हिस्से में सब चारपाई लेके बैठ जाते थे, मेरे बाबूजी, चाचा जी, मेरी दादी, मेरी अम्मा, मेरे बुआ, वो सब बैठ जाते थे और रेडियो बीच में रख देते थे। तो वो दौर छोटा था लेकिन सुनता रहता था उनके साथ कि वो क्या सुन रहे हैं, मैं भी उनके पंखे आंकते रहता था और सुनता रहता था।
0: वाह वाह,
1: वो दौर लेकिन मैं आज भी याद करता हूँ, मतलब अब वापस नहीं आया।
2: सच सच बात, सच
1: बात, बहुत मजा आता था उस टाइम पे,
0: एक सादगी थी और सब लोगों का साथ था,
1: सच में सच में,
2: और बहुत खुशी थी,
1: बहुत खुशी।
2: अभी बाकी की सारी चीजें बहुत सारी जिंदगी में आशाएं बहुत सारी हैं, लेकिन वो खुशी जो दिल की थी वो कहीं ना कहीं लेकेंगे।
0: अब कौन सा गाना सुनाने वाले हैं आप लोग?
2: अभी हमारी चॉइस की बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: गाने तो मुकेश जी के गाए तो सारे ही हमको पसंद हैं। ये ऐसी बात होती है कि मतलब इतने सारे गानों के बीच में कभी कोई बोल देगा अच्छा कोई अपनी पसंद का गाना सुना,
0: ये बड़ा है कि यार,
2: कौन सा मेरे को कौन सा पसंद है।
0: बिल्कुल सही है। देखिए ऐसा करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर चुनते हैं रोशन,
2: तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं। और
0: एक बहुत प्यारा गाना मुझे याद आ रहा है शैलेंद्र का, बहुत दिया देने

वाह वाह वाह, देखिए हमने रोशन की बात की, अब गोविंद जो है वो ये सोच रहे हैं कि मुझे कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर बोलने वाले हो मेरी तरफ। मुझे ना रानी रूपमती फिल्म याद आ रही है।

0: ये एस एन त्रिपाठी का संगीत है और वो भी एक ऐसे संगीतकार और फिल्मकार भी थे, फिल्में भी बनाते थे, जिन्होंने बहुत क्लासिकल टच के गाने बनाए।
1: आपने अच्छा हुआ फिल्म का नाम लिया, म्यूजिक डायरेक्टर बोलते तो मैं नहीं गा पाता।
0: मेरी वो तो हमारी जिम्मेदारी है। मुख्तार भाई, मुकेश को हमेशा ये कहा जाता है कि वो सादगी भरे गाने, सीधे चलन के गाने गाते थे, लेकिन उनके बहुत सारे गाने हैं जिनमें प्रॉपर शास्त्रीयता है, क्लासिकल टच है। तो इसकी बात करते हैं और कुछ गानों की मिसाल के साथ करते हैं।
2: थोड़ा सा लाइट वो उन्होंने गाया मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए,
1: इन कदमों पे
2: किसका जिया ना झुक जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए।
0: एक फूल चार कांटे फिल्म का ये गाना है,
2: हाँ
0: है ना।
2: हाँ,
0: आपको याद था?
1: नहीं।
0: क्या प्यारा गाना याद दिया, वाह वाह। और कौन से क्लासिकल गाने याद आ रहे?
1: चंदन सावधान ने
0: आप गाओ।
1: चंद

0: चितवन।
1: क्या बात क्या बात है। देखिए आज हम मुकेश जी को याद कर रहे हैं और उन्हें याद करते हुए न केवल उनके गानों की, उनकी शख्सियत की बात कर रहे हैं और अभी उनके क्लासिकल टच वाले गानों की बातों से बात करते हुए हम यहां तक आ गए। मुझे पंडित रविशंकर के म्यूजिक डायरेक्शन वाली एक फिल्म याद आ गई, गोदान।
2: गोदान राजकुमार।
1: हाँ, और इस गाने की कितनी कम चर्चा होती है।
2: वाह, सही बात, सही
1: जो भोजपुरी शैली का गाना है।

0: देखिए क्लासिकल मुकेश जो है ना, ये एक पूरा अध्याय है जहां पर एक से बढ़ के एक गाने आते हैं, और बल्कि मजाहिया गानों का भी एक पूरा मामला है ना। जैसे मुझे कहते हैं कल्लू का बाल जैसा गाना भी उन्होंने गाया है।
1: यस यस यस,
0: मैं हूं ठुमरी तू है ख्याल, मतलब ये कमाल है ना। ये देखिए राजेंद्र किशन क्या लिखते हैं इस गाने का मुखड़ा।
2: मुझे कहते हैं मुझे

0: सैड सॉन्ग्स के बादशाह नहीं कहा जा सकता। एक तरफ उनके गानों में रूमानियत है, दर्शन है, दूसरी तरफ जो है बहुत खिलंदड़ किस्म के, बहुत शरारती किस्म के गाने भी उनकी पूरी फिल्मोग्राफी में, उनकी डिस्कोग्राफी में बाकायदा आते हैं। लेकिन शोज में अमूमन बहुत पॉपुलर गाने ही चलते हैं, तो मुझे तौबा ये मतवाली चाल जैसा गाना याद आता है। मजरू साहब का ये गाना,
1: तौबा ये मतवाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, तौबा ये मतवाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे

0: गोविंद, ये बताइए कि वो क्या बात है कि आज के जमाने के गाने इतना नहीं ठहर पाते हैं जितने अभी हम जितनी देर से बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है हमने दर्जनों गानों की बात की और न जाने कितने गाने आपसे तो मैंने गवा लिए हैं। वो क्या बात है कि आज के गानों की शेल्फ लाइफ इतनी ज्यादा नहीं है?
1: एक बात जो मैं, जैसा मुख्तार भाई ने कुछ समय पहले बोला था, और मैं 2020 की बात करूं, 2020 में मैंने प्यारेलाल जी के साथ गुजरात टूर किया और रेफरेंस देने वाले भी यही हैं।
0: अच्छा,
1: थ्रू ही मैं गया था उनके साथ, आर्ट शो किया। जैसा इन्होंने बोला कि वो रिहर्सल में सीखने को मिलता है, वैसा वो एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ कि आर्ट के आर्टिस्ट शो में हम उनके साथ रहे, लेकिन शो से 2 घंटे पहले वो मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे गाने को कैसे क्या करना है, कैसे करना है, किसके बाद क्या, किसके बाद वो पूरा होता था। तो उस चीज को जब मैंने फील किया तो मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे भी ऐसे होते होंगे कि लिरिसिस्ट बैठते होंगे, कंपोजर बैठते होंगे, सब बैठते होंगे, फिर वो गाना बनता होगा। आज के दौर पर ऐसा नहीं है। आज के दौर पर मैंने भी भजन बहुत सारे रिकॉर्ड किए, तो कंपोजर आता है, वो ट्यून देकर चला गया, लिरिक्स देकर चला गया, मैं खाली गा लिया, रिकॉर्डिंग बोला मैं मिक्सिंग कर लूंगा। तो आज जैसा चल रहा है उस हिसाब से वो सोल जो होता है ना वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। शायद यही रीजन है कि गाने आज जो है वो आ रहे और जा रहे, लोगों के मन में नहीं बैठ रहे।
0: आपका क्या कहना है मुख्तार भाई?
2: बिल्कुल, गोविंद भाई ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है। और ये पुराने गानों पे एक तो लिरिसिस्ट ने इतने खूबसूरत अल्फाज लिखे
0: जी, जी।
2: और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उतनी खूबसूरत ट्यून बनाई, गाने वालों ने, गुलूकारों ने इतनी सहजता के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ उनको अदायगी की, और स्टोरी के साथ, फिल्म की स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड रहते थे। और वो फिल्मों का जो दौर था वो एक आम इंसान की जिंदगी से कहीं ना कहीं रिलेट करता था, तो इसलिए वो सारे गाने इतने मीनिंगफुल थे कि आज भी अगर खुशी के गाने सुनो तो आपको खुशी महसूस होती है, गम के गाने सुनो तो गम महसूस होता है
0: जी।
2: और आजकल के, सच बात है कि फिल्मों में अमूमन ज्यादातर गाने ऐसे होते हैं कि जिसको शायद वो इस तरीके से काम नहीं किया जाता। गोविंद भाई ने बताया कि अगर सिंगर आ रहे हैं तो उनको एक लाइन बताई और उसने एक लाइन गाया और उसके बाद दूसरी लाइन उसको बताया, पूरा गाना भी शायद उनको नहीं पता हो क्या होना, एक एक लाइन पंच कर करके। और डिजिटल टाइम में ये सब शायद हो सकता है, उनके वक्त की रिक्वायरमेंट ऐसी हो
0: जी, और इसीलिए आज के संगीत में उस तरह से
2: ठहराव
0: ज्यादातर गानों में आत्मा नहीं है।
2: नहीं,
0: अब मैं आप लोगों को एक मुश्किल चैलेंज देने जा रहा हूं और वो चैलेंज ये है कि कोई एक फीमेल गाना चुनिए जिसको आपको मुकेश की आवाज में गाना है।
2: अच्छा,
0: लेकिन उसका मुकेश वर्जन नहीं होना चाहिए।
2: मुझे स्ट्रेट यही याद आ गया कि चलो मुझको इस रात की तनाई में यहाँ लौट गया जा। मजेदार बात तो है ये कि अगर मुकेश जी गाते तो कैसे गाते हैं ना।
0: ये सुनने वालों को भी एक अंदाजा लगेगा।
2: देखिए, एक मुझे लता मंगेशकर जी का गाना बहुत पसंद है, लग जा गले के फिर यहाँ सीधा।
0: तो ये

0: यही सुनते हैं। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, जैसे मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूं ना तो गोविंद ऐसे बैठ जाते हैं, मेरी बारी आने वाली है।
1: मैं सीरियस जाता हूँ एक्चुअली, मुख्तार भाई जो सोच रहे थे ना वही मैं भी सोच रहा था
0: तब तक, ये
1: उनको ये गाना है
0: ये, लेकिन मजेदार होगा। लग जा गले मुकेश की आवाज में,
2: लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में

0: क्या मजेदार है कि मुख्तार भाई ने मदन मोहन का गाना चुना और इन्होंने शंकर जयकिशन का दिल अपना और प्रीत पर आई फिल्म का गाना।
1: देखिए लोगों को लगना चाहिए हम वर्सटाइल हैं।
0: क्या बात गा सकते हैं। वाह वाह वाह, ये बहुत मजेदार बात थी। आपके परिवार की नई पीढ़ी नए गानों को सुनती है या पुराने गानों को सुनती है?
2: मेरी बेटी जो है वो पुराने गाने सुनती है, बेटा जो है वो नए गाने।
1: मैं देखिए मेरी रोजी रोटी मुकेश से चलती है। हाँ। लेकिन मेरे घर में मेरी वाइफ मुकेश जी को छोड़कर सब कुछ सुनती है।
0: तो आपको जबरदस्ती
1: और एकदम रेयर नंबर सुनती है, मतलब वो जो हम रेगुलर गाते हैं ना। हाँ, हाँ, हाँ। वो नहीं सुनती वो, इसलिए शोज में अच्छा, भी नहीं आती, बोलती तुम भाई तो गाओगे कुछ नया तो गाओगे नहीं। हाँ, हाँ। इसलिए वो आती भी नहीं है और एकदम रेयर सुनेगी वो। अच्छा। अनरिकॉर्डेड किशोर जी का, आशा जी का, लता जी का एकदम वो सुनेगी, क्योंकि बंगाली है तो वो अलग सुनेगी और मुझे भी सुनाती है।
0: अच्छा।
1: सुनो सुनो सुनो
0: बिठा के
1: सुनना पड़ता है, घर में खाना मिलेगा तो सुनना ही पड़ता है।
0: ये मजेदार है। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि जिस गाने की चलित ट्यून जो बनी हुई ट्यून है उससे इतर किसी और ट्यून पर उसको गाया जाना चाहिए, मुकेश जी का गाना हो कोई?
2: ये सोचने के लिए तो हम बहुत छोटे हैं, हमको तो वो जो गाने जैसे बने हुए हैं ऐसा लगता है कि ये भी बिल्कुल परफेक्ट बने हुए और इसको अगर गा लें तो वही बहुत बड़ी बात है।
0: लेकिन आजकल बहुत रीमिक्सेस हो रहे हैं तमाम तरह के गानों के और मुखड़े उठा के कई बार ये होता है कि पूरे गाने को वैसा का वैसा रीमिक्स कर दिया, कई बार ये होता है कि सिर्फ मुखड़ा उठा लिया और आगे के अंतरे नए तरीके से लिख लिए और गाने डाल दिए। इधर के सालों में ये प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है।
2: एग्जैक्टली,
0: आप लोगों की क्या राय है इस बारे में?
2: मैं समझता हूं कि जो अभी ये कंटेम्प्रेरी जो सिंगर्स प्रोग्राम या वो करने लगे हैं या थोड़ा बहुत अगर फिल्मों में कर रहे हैं तो वो रिमिक्स का जो बीच में थोड़ा सा एक दौर आया जिसमें कुछ एक एडिशनल रिदम वो लोगों ने ऐड करके थोड़ा उसको डांसिंग मोड बनाने की कोशिश की कोई भी गानों के अंदर। मैं जैसे नेदरलैंड भी जाता हूं तो शो के बाद वो लोग एक सक्सेस पार्टी

0: करते हैं। शो खत्म हो गया पूरा, ये पुराने गानों का जैसा था वैसा, फिर वहां के वो गोरे म्यूजिशियन हमारे साथ ये पुराने गाने गा रहे हैं। अब अगर वो तेरे प्यार का गम, तो अब उसमें वो लोगों को डांस करना है, तो वो उसके अंदर वो थोड़ा सा बेस गिटार वो ऐड करके तो उसको वो रिदम दे दिया जाता है कि उन लोगों को वैसे उसमें मजा आ रहा हो डांस
1: क्या मजेदार बात है। हाँ। मतलब ये सोचना ही मजेदार है कि वो तेरे प्यार का गम जो है वो जैज हो जाए, रॉक हो जाए, उसमें वायलिन आ जाए, उसमें बेस गिटार आ जाए, ये तो अलग ही बात हो गई पूरी तरह से।
0: तो शायद नए लोगों ने इस वजह से, यंगस्टर्स की वजह से शायद ये किया हो कि भाई थोड़ा लोगों को लिरिक्स से उनको मतलब नहीं, जो शायद ये नई पीढ़ी है ज्यादातर लोगों को, और डांसिंग बीट अगर चल रहा है तो वो दे एंजॉय है।
1: गोविंद आपका क्या कहना है रिमिक्सेस के बारे में, गानों को नई शक्ल देने के बारे में?
2: मैं तो इसके खिलाफ हूं, मैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने में जो गाने बने हैं वो कुछ सोच के ही बने होंगे। आप आपके पास उनसे कुछ बेहतर है तो आप लेकर आइए, उनसे कुछ बेहतर नहीं है तो आप मत कीजिए, छेड़खानी मत कीजिए। और आप अभी का जनरेशन की बात करूँ तो मतलब मेरा ऐसा मानना है, या मैंने देखा भी है बहुत जगहों पर, कि आजकल छोटे बच्चे भी जो हैं, जो 10 12 15 साल के, जो जनरेशन आजकल तो चल रही है, वो पुराने गानों की ही ट्यून सीख रहे हैं।
1: बिल्कुल।
2: और वो गा भी रहे हैं, मैंने कई जगह पर बहुत से लोग मेरे साथ गाते भी हैं पुराने गानों को, जैसे भाई अजीब दास्ता मैंने गाया, इन्होंने लग जा गले गाया, वो सब गाते हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे गाते हैं, जीना यहाँ गाते हैं, जाने कहाँ गए, ये सब गाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, आज इतने बरस बाद भी, और हम तो विविध भारती में बैठे हैं जिसने संगीत को, पुराने संगीत को बाकायदा बचा कर रखा है, और दिन रात हम वही गाने तो प्ले करते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल। और शायद यही वजह क्या, अभी जितने ये बड़े सिंगर्स जो स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं, तो मैंने इनको लाइव शोज में भी देखा है कि वो अपने गाने या डांसिंग और उसके बाद भी एक अपना एक पार्ट तो ऐसा रखते हैं जिसमें वो पुराने गाने गाते हैं, और वो लोगों को वो भी बहुत अच्छे लगते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुकेश के गाने गाते हुए लाइव शोज में आपने देखा कि लोग जज्बाती हो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं?
0: यस यस यस, है ना? यस,
1: ये जो है कहीं ना कहीं वो गाने कनेक्ट करते हैं।
0: Exactly.
1: किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो जाने कौन सा दर्द उभर के आ जाता है।
0: एग्जैक्टली Exactly. सही बात है।
1: अब आप दोनों से ये रिक्वेस्ट है कि एक एक दर्द भरा गाना आप लोग गाइए।
0: मैंने अक्सर ये देखा है कि जैसे जाने कहां गए वो दिन, ये गाना हुआ, या दोस्त दोस्त ना रहा, या एक दिन बिक जाएगा, ये गानों में कभी शो खत्म होने के बाद कोई ऐसा ऑडियंस में से कोई आता है और वो बोलता है कि आप वो गा रहे थे तो मेरे आंख में आंसू आ गए। क्योंकि ये गानों का फील इतना जबरदस्त है,
1: बिल्कुल,
0: इसको बनाया गया है, ऐसे ट्यून इतनी खूबसूरत है, तो शायद कहीं ना कहीं अगर इंसान की अपनी जिंदगी के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ या रिलेट कर रहा है वो,
1: जी जी,
0: तो जज्बात उसके उभर आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो जाने कहां गए वो दिन।

मुझे तो एक गाना बहुत पसंद है और बहुत कम गाने को मौका मिला। जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल।

0: जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे ना कोई मंजिल।
1: क्या बात है, ये वो गाने हैं जो जिंदगी के तनावों और दबाव

0: भावों में हमें थामते हैं। अब एक बात बताइए कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में बाकी तमाम गायक होते और मुकेश न होते तो कितनी सुनी होती ये दुनिया।
1: मतलब अब हमारे हिसाब से अगर आप देखें तो हमको तो बहुत सारा वैक्यूम दिखाई देता अगर जी। मुकेश जी नहीं होते तो
0: जी
1: क्योंकि मुकेश जी ने गाने कम गाए हैं बनिस्बत और प्लेबैक सिंगर्स के, लेकिन आप भी जानते हैं कि उनका जो पॉपुलैरिटी का रेट है, ग्राफ है, वो अगर कंपैरिजन किया जाए जितने नंबर ऑफ सॉन्ग्स दूसरों ने गाए हैं वो सबसे ज्यादा है।
0: आम जनता की बहुत चहेते गायक
1: थे। यस यस
0: गोविंद आप क्या कहेंगे?
2: बिल्कुल ये बात तो सही है मुख्तार भाई से, मैं एकदम वो सहमत हूँ कि एकदम अगर वो नहीं होते तो एक खालीपन होता। और गाने भले बहुत कम गाए हैं और हाँ। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि नंबर ऑफ सोलोज जितने हुए डुएट्स सब ज्यादा हिट्स उनके पास ही हैं। और गुजरात के तो बाप रे बादशाह ही माने जाते हैं वो। गुजरात में तो हर घर में हर गली गली में उनके गाने बजते हैं।
0: तो दामाद थे वो गुजरात। उनकी जो पत्नी है उनका नाम था सरल वेन, है ना, उनसे उनकी शादी हुई थी। और ये शादी जो है ये कांदीवली के एक मंदिर में की गई थी। उन्होंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ ये शादी की थी सरल बेन के साथ।
1: जी जी जी जी
2: देखिए ना क्या रंग आ गया था, गुजराती बोलने लगे थे,
0: गुजराती गाने भी गाए,
2: गुजराती गाने भी।
1: और आज इनफेक्ट जो 22 जुलाई है जिस दिन जो उनका जन्मदिन है वही उनकी शादी का दिन।
0: हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत दिलचस्प बात है।
1: और शायद पर्पजली उन्होंने उसी दिन किया होगा।
0: हाँ मेरा ख्याल शायद कितनी
1: 46 में।
0: हाँ और तब उनकी उम्र थी 23 साल।
1: 23 साल
0: कुछ गुजराती गाने गाए उन्होंने,
1: 49 सॉन्ग है मुकेश जी के।
0: तो फिर हम कुछ सुनना चाहेंगे आपसे क्योंकि आप अहमदाबाद से आते हैं तो गुजराती तो गाएंगे।
1: बहुत मशहूर गाना जो कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक में है, नजर ना जाम छलकावी ने चाल्या क्या तमे,

0: क्या तमें,
1: क्या बात है, क्या बात है, कितनी मिठास है इस गाने में। बल्कि वो जाया भी करते थे गुजरात रेगुलर, है ना, वहां शोज भी उन्होंने काफी सारे किए। कई लोग किशोर वर्सेस मुकेश करते हैं और कहते हैं कि एक कॉम्पिटिशन थी, जबकि ऐसा नहीं था। किशोर, मुकेश, रफी एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। इन तीनों महान गायकों की अपनी अपनी जगह है।
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल, यस।
1: अब कौन सा गाना सुनाने वाले गोविंद आप?
3: मुख्तार भाई ने गुजराती गाना गाया, मैं भी गुजराती गा लेता हूँ।
1: अरे बाबा, क्या बात है, जरूर।

0: आंखों चार करी ने बीमार करी ने मारा भोरा दिलो।
1: वाह वाह वाह, एक बिल्कुल अलग रंग आ गया। गुजराती गाने हमने सुने। ये जो आखिरी दौर था मुकेश जी की गायकी का, उसमें उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के गाने गाए, चाहे वो धर्मात्मा हो, धर्म कर्म हो, कभी कभी हो, ये बाद के दौर के जो गाने हैं उनके, उनमें से कुछ गानों को याद कीजिए।
2: जैसे मुक्ति।
1: हाँ हाँ, अरे वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
2: आर डी बर्मन जी,
1: आर डी बर्मन के साथ बहुत कम गाने हैं ना।
2: हाँ, 16 गाने हैं।
1: हाँ, एक फिर कब मिलोगी भी है।
2: हाँ, लेकिन आमतौर से लोगों को जो पता है वैसे 5 ही गाने हैं।
1: अच्छा,
2: जो 16 गाने कुल गाए उनके साथ वैसे उन्होंने।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
2: लेकिन
1: मुक्ति, सुहानी चांदनी रातें,

0: क्या बात है, क्या प्यारा आलाप है इस गाने में लता जी का, और क्या रंग आता है। मुख्तार भाई मेला और अंदाज जैसी फिल्मों में मुकेश नौशाद के लिए गाते हैं, फिर एक बहुत लंबा गैप आता है,
1: गैप आ गया, हाँ।
0: और उसके बाद कहां वापस आते हैं, साथी में,
1: साथी,
0: साथी की तरफ मैं आना चाहता हूं। क्या प्यारे गाने हैं, हालांकि एक दो गाने हैं जिनकी चर्चा होती है, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं कि मैं किस गाने का जिक्र करने जा रहा हूं।
1: हाँ, हुस्ने जाना है,
0: एग्जैक्टली इसी गाने की बात करनी है।
1: हुस्ने जाना इधरा आईना हूँ मैं तेरा, हुस्ने

क्या बात है, क्या बात है। यहाँ कुछ बातें जो ये जो गानों के बीच में जो जानकारी की पुड़ियाएं मैं छोड़ता रहता हूँ, वो जरूरी है बताना कि मजरू साहब अंदाज में लिखते हैं नौशाद साहब के लिए, और उसके बाद एक पूरा लंबा गैप आता है। कई दशक के बाद साथी में फिर से नौशाद और मजरू आते हैं, मुकेश और नौशाद आते हैं, और ये पूरा वेस्टर्न नोटेशन वाला मामला था जो कि नौशाद की फितरत नहीं थी। तो ये एक बड़ी बात है। केरसी लॉर्ड जो है उन्होंने सारा अरेंजमेंट इन गानों का किया था। बारिश का मौसम है और मुकेश जी की याद

0: है जुलाई और अगस्त, ये वो महीने हैं जो जब पानी जम के बरसता है। और मुकेश जी का जन्मदिन आता है और उनकी याद का दिन 27 अगस्त भी आता है। बारिश के कुछ गानों की बात करते हैं। पहले शोर नहीं बाबा, शोर
1: सावन।

0: और
1: और अब बारिश का दूसरा गाना
2: उषा खन्ना जी.
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मैं कहने वाला था
1: इशारों में बात हो रही है सबक.

0: वाह, जिस तरह से इस साल गर्मी पड़ी है, हाँ। मुझे लगता है ये गाना बिल्कुल मुफीद है कि बरखा रानी जरा जम के बरसो, उतना ज्यादा जम के ना बरसो,
1: आना जाना मुश्किल हो जाए
0: लेकिन फिर भी बरसो, है ना। बारिश के दिनों में या कभी भी ऐसा हुआ है कि कभी किसी शो के लिए बहुत लेट हो गए हो और एकदम से सीधे स्टेज पर जाना पड़ा हो?
1: हाँ हाँ, ऐसा कई मरतबा ऐसा मौके आए हैं कि बारिश के दिनों में, क्योंकि आमतौर से अपने का थोड़ा सा सिस्टम जो है रोड पे पानी भर जाना, या हाँ, हाँ। कभी गाड़ी अगर जा रही और गाड़ी खराब हो गई, कहीं ट्रैफिक जैम है, तो कभी थोड़ी सी देरी हो गई है। एक दो मरतबा ऐसा मेरे साथ भी हुआ है
0: और सीधे स्टेज पर जाना पड़ा, तो कैसी कैफियत होती है उस वक्त?
1: थोड़ा सा वो होता है अनकंफर्ट, लेकिन ठीक है, वो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस और वो रहता है तो प्रैक्टिकली इसको निभा लेते हैं।
0: अब गोविंद, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एकदम से डिलेज हो गए और भागते दौड़ते हाँफते हुए?
2: मैं तो एक बार प्रबोधन ठाकरे में ऐसा हो गया था, एकदम अटक गया था और ब्लेजर पहनने का मौका नहीं मिला था ऐसे ही जाके पहला गाना गाया, उसके बाद आके चेंज किया।
0: क्या बात है,
2: कर्टन ओपन हो चुका था, अनाउंस एंकर ने अनाउंस कर दिया सब है, अब इंस्ट्रूमेंट दो दो बार बज गए।
0: अरे बाप रे बाप,
2: सिंगर आया ना, माइक भी चेक नहीं किया, जैसे मिला वैसे गाया।
0: और उसमें ये है कि आपको अपना एक तो बैलेंस प्रॉपर रखना है ना, और उसके बाद गाने को पूरी तरह से निभाना है, क्योंकि लोग सीधे मुकेश जी से तुलना कर रहे हैं।
2: आप कितने भी टेंशन रहे बैक स्टेज, आपको टेंशन छोड़ के स्टेज पे रिलैक्स होकर जाना है।
0: बिल्कुल,
2: हजार लोग सुनने के लिए आए हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको बेस्ट देना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी ऐसा होता है कि सफर करते हुए लोगों ने पहचान लिया और कहा कि भाई आपके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, हमने आपके फला शो में आपको देखा था?
1: हाँ, ऐसा तो बहुत मरतबा होता है।
0: और लोग गाने वाने की फरमाइश भी कर देते हैं?
1: कभी कुछ लोग होते हैं ऐसे कि हाँ, कि बोल देते, कह रहे यार दो लाइन गा ही दो।
0: मतलब मूड है कि नहीं
1: वो नहीं, वो लोगों का तो, लोग इतने वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, तो शायद वो एक जज्बात में आ जाते हैं शायद, हाँ, देखने के बाद के उनको ऐसा लगता है कि शायद ये हर जगह यही काम करते रहे।
0: मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ मामला गोविंद आपके साथ भी होता है?
2: बहुत बार हुआ है, अभी तो एक रिसेंट में भी हुआ था, मैं आरसीटी गया था वाइफ के साथ कुछ कपड़े लेने के लिए, तो वाइफ तो लेडीज सेक्शन चली गई, मैं जेंट्स में, तो मेरे पीछे पीछे एक आदमी घूम रहा है।
0: अच्छा,
2: मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों घूम क्यों रहा है मेरे पीछे पीछे। मैं मेरी वाइफ को इशारा किया, देखो कोई घूम रहा है, तो फिर पीछे से किया, मैं कहा मिश्रा भाई तमें सिंगर छो? हाँ। अरे वाह, मैं आपको सुनता हूँ, बड़ा मजा आता है ऐसा वैसा, एक सेल्फी ले लें फोटो, ठीक है कुछ गा दीजिए, किसी की मुस्कुराहट पे गा दीजिए।
0: अरे बाप रे बाप, मतलब आप
2: यहाँ पे कैसे, हाँ यहाँ पे कैसे गाओ, फिर गाया दो लाइन धीरे से उसके लिए मैंने।
0: देखिए ये होता है,
2: क्या करें, किसी को नाराज नहीं कर सकते,
0: जो संगीत के दीवाने उनको खुश करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, आज की इस बहुत शोर भरे, भाग दौड़ भरे, व्यस्तताओं से भरे जमाने में मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है?
1: थोड़ा सा वैसे तो मुश्किल सवाल है ये, लेकिन यही है कि मैं पर्टिकुलरली मानता हूँ कि इंसान अपनी भाग दौड़ भरी

0: जिंदगी के अंदर, खास तौर से पुराने गाने, चाहे वो मुकेश जी के हैं और सेंटिमेंटल सॉन्ग्स, चाहे वो किशोर कुमार साहब के आप सुन लो या रफ़ी साहब के, अगर ये पुराने गानों के अंदर इतना ठहराव और सुकून है कि अगर आप वो सुन लो तो दिमाग डेफिनेटली आपका खुश हो जाता है या शांत हो जाता है। और इसी वजह से मैं हमेशा स्टेज पर कहता हूँ कि ये पुराने गानों के अंदर जो बात है, जो मेलेडीज़ हैं, अगर ये पुराने गाने अपने ढाई तीन घंटे सुन लिए तो अगले एक साल तक यकीन मानिए कि नो कार्डियोग्राम, नो ECG, नो ब्लड टेस्ट।
1: बड़ी प्यारी बात बोली गोविंद, आप बताइए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो बहुत लोगों के मुझसे सुन भी लिया हूँ कि बोलते हैं कि म्यूजिक से अच्छा मेडिसिन कुछ नहीं है। और आज के टाइम पे इतना दौड़ भाग वाली जिंदगी में सबको रिलैक्स चाहिए, और जो ढाई तीन घंटे का, चार घंटे का समय लोग निकाल के आते हैं हमें सुनने के लिए, वो उस समय मतलब मैं तो कितने लोगों को सुनते हुए ऐसा बोलते हैं मुझे कि ये तीन चार घंटे ममूसेरा में चले जाते हैं, वे एकदम भूल जाते हैं सब कुछ, सारी दिमागी टेंशन एकदम खत्म हो जाती है। वो तीन घंटे का रिलैक्स हमको अगले एक हफ्ते तक का एनर्जी देता है।
1: एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो आजकल इंस्टाग्राम का और ये जो 60 सेकंड की और 30 सेकंड की रीलों का जमा

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। सभा के आरंभ में सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम रिवाणी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हम सब इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से कि जितने भी हमारे यूथ हैं, यूथ जनरेशन के लोग हैं, या जितने भी अभी हमारे नौजवान हैं जिन्होंने एग्ज़ाम की तैयारियां शुरू कर दी है, जिन्होंने ये सोच लिया है कि हमें किसी भी कंपिटेटिव एग्ज़ाम का, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में हमें हासिल करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो उन सब चीज़ों के लिए वो अभी से ही शुरुआत से ही ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे परिपक्व बनाएं, कैसे हम अपने आप को आगे कर सकें, कैसे किसी भी, चूँकि कंपटीशन के ज़माने में हम अपने आप को हर किसी से आगे रखने की कोशिश करते हैं। और यूथ कहा जाता है कि नौजवान इस देश की आन बान शान है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो रक्षा और सुरक्षा के मामले में हो, चाहे वो कहीं जॉब कर रहे हों, किसी भी जगह पर हों, वहाँ पर ये नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका होती है और नौजवान हमारे देश की आन बान शान है। नौजवान हमेशा सोचते हैं कि हाँ, हम किसी कार्य, किसी चीज़ को अगर कर रहे हैं वहाँ पर एक हिम्मत के साथ, हौसले के साथ कर लें। किसी भी परीक्षा की तैयारी हम करते अगर हैं तो ये सोच कर करते हैं कि सबसे पहले हम इसको किस तरह सफल बना सकें। और कभी कभी होता है कि किसी भी प्रतियोगिता में हम जब भाग लेते हैं, चाहे वो खेल हो, परीक्षा हो, किसी भी चीज़ में, तो ज़रूरी ये नहीं है कि हम सफल ही हों। उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक सच्चे लगन, सच्चे निष्ठा के साथ हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ते रहें और कोशिश करें कि हम, हमारे अंदर में जो लगन है

वो लगन यूं ही बरकरार रहे। यूथ जनरेशन को, नौजवानों को एक लगन की ज़रूरत होती है, एक सच्चे चाह की ज़रूरत होती है, एक राह, उस राह पर जिस राह पर हम चलते हैं। तो हम भी ये कोशिश करते हैं कि हम भी यूं ही आगे बढ़ते रहें। और आकाशवाणी दरभंगा से हम युवाणी सुन रहे हैं और युवाणी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं के रेडियो पर भेजते हैं एक प्यारा सा मैथिली सुगम संगीत।

अभी आप सज्जन कुमार से ये गीत सुन रहे थे। और युवाणी कार्यक्रम जारी है आकाशवाणी दरभंगा से। हम बातें कर रहे थे कि युवाओं को किस तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए, युवाओं को किस प्रकार अपनी

0: अभी आप सज्जन कुमार से ये गीत सुन रहे थे। और युवानी कार्यक्रम जारी है आकाशवाणी दरभंगा से। हम बातें कर रहे थे कि युवाओं को किस तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए, युवाओं को किस प्रकार अपनी युवा किस वर्ग में, किस क्षेत्र में अपने आप पे काम कर सकते हैं, इस बात का हमें पूरा ख्याल रखने की ज़रूरत है। लौटते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक छोटे से अंतराल के बाद फिर से हाजिर है युवाणी कार्यक्रम में, और आप आज युवाणी कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं कि युवाओं को किस तरह आगे बढ़ना है, युवाओं को किस तरह अपने किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, किसी भी गोल के लिए हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, कैसे तैयार करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम जो चीज़ कर रहे हैं उसको सच्चे दिल से करें, सच्चे मन से करें, और एक न एक दिन हम ज़रूर कामयाब होते हैं। और कभी कभी होता है कि हम किसी चीज़ को बहुत दिल से करते हैं और बहुत मन से करते हैं, उसके बावजूद भी कभी कभी हम किसी प्रतियोगिता में, किसी परीक्षा में, किसी खेल में जिस उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें हमें थोड़ा सा नंबर नहीं आता, हम फेल हो जाते हैं या कुछ भी ऐसा। बहुत सारे हमारे नौजवान साथी ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं अच्छा से अच्छा करना, बेहतर से बेहतर करना, लेकिन हो नहीं पाता है। और कभी कभी वो गलत निर्णय ले बैठते हैं या खुद को चोट पहुँचाते हैं, खुद को बहुत कम समझने की कोशिश करते हैं या ये सोचते हैं कि चलो मुझसे नहीं हुआ, शायद मैं अब नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा याद रखना है दोस्तों कि हमेशा हमें ये कोशिश करना है कि हमने जो चीज़ सीखा, जो चीज़ किया, वो हमारी सीख है। आने वाले समय में, आने वाले जीवन में हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे, और कामयाब नहीं भी होते हैं तो भी हम एक बहुत बड़ी सीख लेकर जाते हैं अपने साथ, इस उम्मीद के साथ कि हम आने वाले दिनों में और अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर कर सकें, दूसरे युवा हमें देखकर प्रेरित हो सके। ज़रूरी नहीं है कि हम जिन चीज़ों के लिए करते हैं, जिन चीज़ों को हम चाहते हैं, वो चीज़ ज़िंदगी में, जीवन में हमें मिल ही जाए। कभी कभी ईश्वर ये भी सोचता है कि जो चीज़ के लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया हो वो चीज़ हमें ना मिलकर कोई दूसरी अच्छी चीज़, अच्छी कोई ऐसी नौकरी, कोई ऐसा जॉब, कोई ऐसी प्रतियोगिता जो हमारे किस्मत में है, आज नहीं तो कल हमें ज़रूर मिलती है। तो इस वादे के साथ अपने आप को समझाने की कोशिश करना है कि हमने जो कुछ सीखा, जितनी मेहनत लगन की, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, बहुत अच्छा था, हर वो पल, हर वो एहसास हमारे लिए बहुत अच्छा था। और जो भी हमारे यूथ हैं, जो भी हमारे युवा हैं, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से जानते हैं कि इस कार्यक्रम में क्या कुछ होता है, क्या कुछ खास है। तो अब देर न करते हुए हम अपने श्रोताओं के रेडियो पर भेजते हैं एक और गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं।

0: और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं कि श्रोताओं, जो यूथ है, जो नौजवान है, वो अपने कैरियर के प्रति किस तरह आगे बढ़े, ताकि हम अपने आप को कैसे निखार सकें, कैसे आगे कर सकें। और नौजवानों की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, यूथ जो होते हैं वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां के साथ साथ बहुत सारी गतिविधियां उनसे जुड़ी हुई होती है। समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो यूथ से जुड़ी हुई होती है। अगर हम बात कर लें कि हमारी पर्यावरण जो एक बहुत बड़ी समस्या है, हम सब, चाहे वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, और नौजवानों को इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। आज भी शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में जो यूथ हैं, जो यूथ जनरेशन के लोग हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और लेना भी चाहिए। ये एक गंभीर समस्या है। हम सबको पर्यावरण के प्रति सोच विचार करना चाहिए। नौजवान अगर किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र के आगे बढ़ते हैं किसी चीज़ में, तो ही पूरा समाज उनके पीछे आगे बढ़ता है। और पर्यावरण के लिए छोटा छोटा कदम हमें उठाना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है। साथ ही साथ जो पर्यावरण को जो चीज़ प्रभावित करता है, दूषित करता है, उन सब चीज़ों से हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हम अपने आप को दूर रखें, अपने समाज को दूर रखें। बरसात का मौसम है और बारिश लगभग में नहीं हो रही है, ये हम सब जानते हैं। आज जो आसपास हमारा जो ग्रामीण इलाके हैं या धान की खेती, हम सब देखते हैं कि खेत फट सा गया है। जो लोग बोरिंग दमकल से सिंचाई कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर पर्यावरण पर भी पड़ता है। और पर्यावरण के कारण ही ये सारी चीज़ें हो रही है कि बारिश नहीं हो रही। अभी जून जुलाई अगस्त में इतनी बारिश हुआ करती थी कि घर से निकलना मुश्किल हुआ करता था। तो नौजवानों का हर वो जगह, हर वो क्षेत्र में, चाहे वो सीमा से लेकर ग्राम पंचायत तक, नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो हम सबको इस बात की कोशिश करते रहना चाहिए कि हम अपने समाज को किस तरह आगे ले चलें, खुद को कैसे संवारें, किस खुद को कैसे निखारें, ताकि हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा परिवार, हम सब खुश रह सके, खुशहाल रह सके और जीवन में हम कुछ नया कर सके। ज़िंदगी हमें हर वो पल नया नया सीख, नई नई चीज़ें सीखने को देती है। हर पल हर चीज़ को हम सीखते हैं, हर कदम पे हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, और हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि ज़िंदगी में हम कुछ ना कुछ ऐसे यूं ही सीखते रहें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं के रेडियो पर भेजते हैं एक और मैथिली गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं युवाणी। युवाणी में हम युवाओं के लिए बातचीत करते हैं। युवा हमारे देश की आन बान शान है। युवा हम किस तरह अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, किसी भी परीक्षा में हम कैसे अपने आप को साबित कर सकते हैं, और परीक्षा का रिजल्ट अगर हमारे हक में नहीं हो तो भी हम अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं। बहुत सारे यूथ अभी तनाव में रहते हैं कि हमें किसी तरह की नौकरी नहीं मिल रही है, प्रतियोगिता में हम भाग ले रहे हैं ज़रूर, लेकिन वो हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। उसके लिए वो तनाव में रहते हैं, गलत उल्टा डिसीज़न ले पाते हैं, अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। ये सब बिल्कुल ही गलत है, जिसमें हम युवाओं को आगे बढ़ना होगा। हम युवाओं को सोचना पड़ेगा कि ये हमारे हित में के लिए सही नहीं है, हमारे परिवार के लिए सही नहीं है। जिस परिवार ने हमें बचपन से, हमारे घर के लोग, समाज के लोग ने हमें देखा और अचानक हम इस तरह का डिसीज़न ले बैठते हैं तो अजीब सा लगता है, हमारा परिवार टूट सा जाता है। तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हम अपने जीवन में हिम्मत के साथ आगे बढ़े, हौसले के साथ आगे बढ़े, हर वो चीज़ की तैयारी दिल से करें। दिल से करने के बावजूद कभी कभी

ऐसा होता है कि हमें सफलता नहीं मिलती है, तो उसके लिए हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमने बातें की कि पर्यावरण को हम कैसे संवार सकते हैं, पेड़ पौधों को हम कैसे लगा सकते हैं, हम कैसे अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो हम अपने जीवन में अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को कैसे मेंटेन करें, रक्षा और सुरक्षा समाज की कर सकें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। आज हमने देखा होगा श्रोताओं की जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो जिनको कहा जाए कि जो 19-20 साल के हैं, 25 साल के हैं, वो सारे लोग बाइक गलत ढंग से लोग चला रहे हैं। युवाओं को, माता पिता को चाहिए कि युवाओं को, बच्चों को उस तरह कंट्रोल कर सकें। कोशिश करें कि जो ट्रिपल लोडिंग है ये सब चीज़ नहीं हो सके। दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण अगर आप गौर करेंगे हमारे आसपास, तो आए दिन इस तरह की घटनाएं होती जा रही है कि बाइक ने फलां को टक्कर मार दिया, बाइक से फलां को, पिकअप ने बाइक वालों को टक्कर मार दिया। तो ये अक्सर ओवर स्पीड, आप ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। चार चक्का चला रहे हैं तो वहाँ सीट बेल्ट का होना ज़रूरी है। दो पहियों वाहन के लिए आप ज़रूरत है कि आपका जो हेलमेट है वो होना चाहिए, गाड़ी दुरुस्त होना चाहिए, मतलब उसका इंश्योरेंस पेपर हो, पूरी मेंटेनेंस के साथ होनी चाहिए, उनका पेपर होना चाहिए, और स्पेशली आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। गाड़ी चलाने के लिए आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का हमें ख्याल रखना है ताकि घटना और दुर्घटना से हम बच सकें। युवाओं को खुद का ख्याल रखना है, दूसरों का ख्याल रखना है। युवा ही इस देश की आन बान शान है। हमने पहले भी कहा कि युवाओं को बहुत सोच समझकर अपने जीवन को गुजारना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि सड़क पर जो दुर्घटनाएं होती है उस पर हमें अपने आप पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। अपने आप पर ये कोशिश करने की ज़रूरत है कि हम किस तरह अपने आप को सही ढंग से चलें, नियम से, जो ट्रैफिक नियम है, जो यातायात के नियम है, उस नियम के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हमसे कुछ ऐसी गलतियां ना हो सके जो सरकार ने जिन चीज़ों के लिए मना किया है, उन चीज़ों का हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए। जो चीज़ हमारे किस्मत में है या जो चीज़ हमारे साथ होना है वो होकर ही रहता है, लेकिन रक्षा और सुरक्षा ये ज़रूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटें और ये कोशिश करें कि हम जो कर रहे हैं वो समाज हित में होना चाहिए, परिवार के लिए होना चाहिए, खुद के लिए होना चाहिए। किसी भी काम को सच्चे मन से, सच्चे लगन से करें और यूं ही जीवन में आगे बढ़ते रहें। ज़िंदगी सिक्के के दो पहलू है, जहाँ गम और खुशी दोनों है। तो खुशी में हम बहुत ज़्यादा खुश ना हों, गम में हम बहुत ज़्यादा उदास ना हों, कि अपने आप को ही अंदर से तोड़ लें। ये कोशिश करें कि हम यूं ही एक संतुलित जीवन गुजारें, खुद का ख्याल रखें, अपने समाज का, अपने परिवार का, और खान पान का भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। नशे की जो चीज़ें हैं, जो आज के ज़माने में यूथ जनरेशन को बहुत ज़्यादा इसकी आदत, लत सी लग गई है, इन सब चीज़ों से हम थोड़ा सा दूर रहें तो ही मज़ा है। ऐसे जीवन हम गुजारेंगे तो आप यकीन मानो बहुत ही अच्छा लगेगा। हम जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, हमारी जो स्वास्थ्य है उसकी हम पूरा ध्यान रख सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी युवाओं को बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है ताकि जो दूसरे हमारे मित्र हैं, कलीग्स हैं, वो हमें देखकर उन्हें अच्छा लगे, वो अच्छा कर सकें। अब देर न करते हुए हम श्रोताओं के रेडियो पर भेजते हैं एक और मैथिली गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से हाजिर हैं युवानी कार्यक्रम में। हम बातें कर रहे हैं कि युवाओं को किस तरह अपने आप पे विश्वास रखना है, विश्वास रखकर खुद को आगे बढ़ाना है और ये कोशिश करना है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को, अपने आत्मविश्वास को डगमगाने ना दें। खुद की, परिवार की, देश की, राष्ट्र की हित में हम काम करें और पर्यावरण को हम किस तरह रक्षा सुरक्षा पर्यावरण का कर सकें। साथ ही साथ सड़क यातायात का हम पालन करें, सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों का जो कारण है उसके पीछे

युवा वर्ग के ओवर स्पीड या जो भी चीज़ें हैं या ट्रिपल लोडिंग है, इन सब चीज़ों का हम थोड़ा सा ख्याल रखें ताकि हादसा दुर्घटना कम हो सके। और हम कोशिश करते हैं कि ये कार्यक्रम बिल्कुल हमारे श्रोताओं को अच्छा लग सके, और इस वादे के साथ कि अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, युवा श्रोताओं को दीजिए आज्ञा।

अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कुछ नए फिल्मी संगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: इस अंतराल से पहले आप सुन रहे थे एनिमल फिल्म का गाना पापा मेरी जान। गायक थे सोनू निगम, संगीतकार हर्षवर्धन रामेश्वर, गीतकार थे राजशेखर। अगला गाना हम आपको सुनवाते हैं फिल्म भूल भुलैया से। फिल्म भूल भुलैया 3 से सुनते हैं ये गाना।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: इस अंतराल से पहले आप सुन रहे थे भूल भुलैया 3 का गाना। श्रेया घोषाल ने इसे गाने को गाया था, संगीतकार प्रीतम, गीतकार समीर। अगला गाना हम आपको सुनवाते हैं फिल्म ड्रीम गर्ल 2 से।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने

0: किसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अभी आप सुन रहे थे फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का गाना दिल का टेलीफोन। गायक थे जॉबिन नौटियाल, मितिन ब्रेसफीड, ज्योतिना गांधी। संगीतकार थे मितिन ब्रोस, गीतकार थे कुमार। इसी के साथ नए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: छह बजने ही वाले हैं आकाशवाणी दिल्ली से समाचार, कृपया कुछ पल।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
3: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
2: नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं। विपक्ष के आचरण पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने के बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उधर राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की राजनीति को दर्शाता है जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका, नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक

परंपराओं की भावना का उत्सव है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए NHRC ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बंबई शेयर बाजार का सूचकांक आज 889 अंक बढ़कर 77,655 पर पहुंच गया। निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। अनिमेश कुजूर 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज रात मनप्रीत कौर महिला शॉटपुट फाइनल में खेलेंगी। श्री शंकर मुरली और लोकेश सत्यनाथन ऊंची कूद के फाइनल में और पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में चुनौती पेश करेंगी। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दिल्ली, कोंकण, गोवा, केरल, माहे में कल तक तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। जानकारी प्राप्त कीजिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत, मैथिली संवाद। ये कार्यक्रम होगा पटना से 6:25 पर। गांव घर, ये कार्यक्रम होगा 6:30 पर। चर्चा का विषय है गुरु पूर्णिमा, विश्व बाघ बाघ दिवस। इसे हम दरभंगा आकाशवाणी दरभंगा से प्रस्तुत करेंगे। शाम 7 आप सुनेंगे खेती गृहस्थी। रात 7:52 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। संसद समीक्षा रात 8 आप सुनेंगे। जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सिंगरहार कार्यक्रम का समय होगा 8:15 पर। रात 9:30 आप सुनेंगे DLC 58। चर्चा का विषय होगा DLC 5। चर्चा का विषय है, इसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 आप सुनेंगे लोक माधुरी। रात 10:30 आप सुनेंगे गीतों के रंग। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज इस सभा में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आप जानकारी प्राप्त कीजिए कल होने वाले हमारे कार्यक्रमों के बारे में। 5:55 पर आप सुनेंगे कृषि चर्चा। चिंतन का समय होगा 5:50। पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा। वंदना कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 6:10 पर।

रामचरितमानस गान आप सुनेंगे प्रातः 6:40 पर। नमस्कार, मिथिला कार्यक्रम प्रातः 7:05 पर प्रसारित किए जाएंगे। उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का वक्त होगा दिन में 9:10 पर, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे प्रातः 10:00।

दिन के 11 बजे आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत, प्रायोजित कार्यक्रम NCERT 30 आप सुनेंगे दिन में 11:30 पर। 12 बजे आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। बहनों के लिए हमारा कार्यक्रम होगा नारी संसार।

दिन के 11 बजे आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत, प्रायोजित कार्यक्रम NCERT 30 आप सुनेंगे दिन में 11:30 पर। 12 बजे आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का, बहनों के लिए हमारा कार्यक्रम होगा नारी संसार। देशभक्ति गीत दोपहर 1:10 पर प्रसारित किए जाएंगे और 1:15 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विद्यापति गीत। कलाकार हैं विनय कुमार झा।

आप सुन रहे थे विद्यापति गीत। कलाकार थे विनय कुमार झा। आपको सुनाते हैं पंडित सियाराम तिवारी के स्वर में एक और विद्यापति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे विद्यापति गीत। कलाकार थे सियाराम तिवारी, पंडित सियाराम तिवारी।
1: वाणी दरभंगा एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी कल्पना झा। लोकसभा एक राष्ट्र एक चुनाव सँ संबंधित विधेयक के जांच कऽ रहल अछि। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसीक कार्यकाल संसदक शीतकालीन सत्र 2026क अंतिम सप्ताहक पहिल दिन धरि बढ़ा देलक अछि। समितिक अध्यक्ष आ भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी संविधानक 129वां संशोधन विधेयक 2024 आ केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024क समीक्षा कऽ रहल संयुक्त संसदीय समितिक कार्यकाल बढ़ेबाक प्रस्ताव सदन मे प्रस्तुत कयलनि। एहि विधेयक सभक उद्देश्य लोकसभा आ राज्य विधानसभाक चुनाव एक संग करेबाक व्यवस्था लागू करब अछि। सदन एहि प्रस्ताव के ध्वनिमत सँ पारित कऽ देलक। लोकसभा पेपर लीकक विरुद्ध आनल गेल विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कऽ देलक अछि। सदन मे चर्चाक बाद आई ध्वनिमत सँ विधेयक पारित कयल गेल। विधेयक मे पेपर लीक मामिलाक दोषी सभ के 10 वर्ष धरिक कारावास, 10 करोड़ टाका धरिक जुर्माना आ दोषी अपराधी सभक संपत्ति जब्त करबा एहन कड़गर दंड प्रावधान सम्मिलित अछि। संगहि एहि मामिलाक शीघ्र निपटाराक लेल राज्य सभ मे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करबाक आदेश देल गेल अछि। पटना उच्च न्यायालय नीट सहित आन प्रतियोगी परीक्षा सभ मे प्रश्न पत्र लीक आ अनियमितता सँ जुड़ल मामिलाक त्वरित निपटारा लेल 3 जिला पटना, लखीसराय आ पूर्णिया मे फास्ट ट्रैक अदालतक गठन कयलक अछि। एहि अदालत सभ मे न्यायाधीश सभक नियुक्ति कऽ देल गेल अछि। राज्य सरकार TRE4 के अंतर्गत 32,388 शिक्षक के भर्तीक घोषणा कयलक अछि। कक्षा 11वीं आ 12वीं लेल सबसँ बेसी 16,101 पद पर शिक्षक लोकनिक नियुक्ति कयल जायत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलनि जे शिक्षा विभागक दिस सँ एहि संबंध मे अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग के पठा देल गेल अछि। BPSC शीघ्रहि एहि पद सब पर नियुक्तिक लेल अधिसूचना जारी करत। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लेल काल्हि मतदान कराओल जायत। निर्वाचन आयोग शांतिपूर्ण आ निष्पक्ष मतदान सभक तैयारी पूरा कऽ लेलक अछि। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुंदन कुमार जनौलनि जे विधानसभा क्षेत्र मे 30 आदर्श मतदान केन्द्र सहित 422 मतदान केन्द्र बनाओल गेल अछि। उपचुनाव मे भाजपा, राजद आ जन सुराजक प्रत्याशी सहित कुल 25 उम्मीदवार मैदान मे छथि। राज्य सरकार दरभंगाक रैयाम आ मधुबनीक सकरी मे बंद भेल चीनी मिल सभ के पुनः चालू करबाक आधिकारिक निर्णय लेलक अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरीक अध्यक्षता मे आजुक मंत्री परिषदक बैसक मे एहि आशयक प्रस्ताव पारित कयल गेल। कैबिनेट एकटा आन महत्वपूर्ण निर्णय मे बिहार खेल नीति 2026 के स्वीकृति प्रदान कयलक अछि। आजुक बैसक मे 24 प्रस्ताव के स्वीकृति देल गेल अछि। प्रदेशक कतेको भाग मे दक्षिण पश्चिम मॉनसूनक सक्रियता बढ़ल

0: सँ हल्का सँ मध्यम वर्षा दर्ज कयल गेल अछि। मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे जनौलक जे आइ सुपौल, अररिया, किशनगंज सहित राज्यक उत्तर पूर्व भाग मे कतेको ठाम तेज हवाक संग वर्षाक संभावना अछि। एहि दरमियान किछु ठाम वज्रपातक सेहो आशंका अछि। आइ गुरु पूर्णिमा मनाओल जा रहल अछि। एहि अवसर पर लोक अपन गुरु के स्मरण करैत छथि आ हुनक प्रति कृतज्ञता जतबैत छथि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लोक सभ के गुरु पूर्णिमाक बधाई आ शुभकामना देलनि। बेगूसराय जिलाक मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदवारा में जमीनी विवाद के लऽ कऽ अपराधी सब द्वारा कयल गेल गोलीबारी में 4 लोक घायल भऽ गेलाह। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार घटनास्थलक निरीक्षण कयलनि। ओ जनौलनि जे मामिलाक छानबीन जारी अछि। सुपौलक वीरपुर स्थित बनैली पट्टी में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्चक स्थापना कयल जायत। एहि लेल जिलाधिकारी सावन कुमार 10 एकड़ भूमि अधिग्रहण कयलाक बाद परिवहन विभाग के हस्तांतरण करबाक आदेश जारी कयलनि अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गाम घर।

0: घर आंगन में सब श्रोता बहिन के स्वागतक संग मोनिक नमस्कार संगे लाल बहिन अहूं के नमस्कार
1: नमस्कार मोनी बहिन आ संगे आधी आबादी बहिन लोग के हमरो दिस नमस्कार आई बुध दिन है आ बुध दिन हम सब कार्यक्रम घर आंगन ल के अबे छी आ घर आंगन में अपन बहिन सब से बहुत रास गप सप करे छी जे काजक गप सप रहित अछि
0: ओहि नाओ अब जखने सावन मास चढ़ि गेल आइ गुरु पूर्णिमा सेहो मना रहल छी अपना सब अपन सब के गप सप तो एकदम शुरू भेल अछि अखन पावन तिहार लग चियल आ जे सब एहि बेर पबनैतिन छथिन मधुश्रावणी जिनकर सबके छै
1: नव विवाहिता जे छथिन
0: ओ सब त एतेक ओरियान में लागल छथि जे कि अपन सुध बुध नहीं छन कखन खेती कखन पीती बस पावन के ओरियान में
1: त ये मोनी बहिन त इहे सोमे दिन से ने पावन शुरू है त रवि दिन से त सब लाग जेती ओय में त आप की कहे छी लगचिए ले त स्वाभाविक छै ने आ सबके त होय छन जे कोना पावन निक से निष्ठापूर्वक संपन्न हैत त ओरियान में लागल छै त उद्गारो बड़ लोग के रहै छै 13-14 दिन के जे पावन होय त सबके बड़ रहै छन खूब धूमधाम से हरखक संग मनायब सब बहिन सब संगे फूल लोढ़े लै जायब खूब गीत नाद गायब ना
0: अपना सबके हकार पूरे के कतेक मोन रहैत अछि कि अपन बहिन सब से भेंट घाट भ जाइत अछि आ सब गीत गाबि गाबि के एकटा जे छै अभ्यास सेहो भ जाइत अछि
1: देखियौ ओना तऽ गीत अपना सबके सुनय में कते नीक लगैया जहन गीत गबै छी तऽ और कतेक नीक लगैया आ ई महीना तऽ एहन अछि सावन महीना जे एकटा गीत आ ताहि पर से जहन फूल लोढ़ा जहन बहिन सब निकलै छथि रवि दिन देखब ने रवि दिन जे अपना सब साँझ में निकलब अपन घर मतलब दलान सब बाहर जे निकलब तऽ देखब खाली बहिन सबके सब पथिया लेने अपन पथिया लेने आ रास्ता में गीत गबैत खाली भेटती आ हकारो तो पूरा के अपना सब के सोम दिन जेबाक अछि ने
0: सब काज करे के संग संग अपन ध्यान सेहो राखे के अछि लाल बहिन जो अपने अपना सब स्वस्थ रहब तखन नीक से उद्गार से पावन मनायब
1: हम अहाँ के बात बुझलहुँ जे पावन तिहार तो मिथिला में लागले रहे छे मुदा अपन स्वास्थ्य सबसे पहले अपने जखन नीक रहब तहने ने कोनो पावन तिहार मनायब ओ बेटी होत कि पुतहु होत जे होत कोनो तऽ जहन अपने नीक रहब घर के जे बुजुर्ग लोकनि छथि से नीक रहती तहने ने पावन नीक से हैत तैं सबसे पहिने अपन स्वास्थ्य पर ध्यान राखी आ तहन अपन ध्यान सँ से अपन काज के से करी जे सब काज समय पर भ जाय जेना पावने होइए तऽ ओ समय पर पुजबै ई नहि जब 3 बजा देबनि तऽ ओहो बेचारी भूखले टटाइत रहती
0: छैये कि सेहत हम कह चाहि रहल छलहुँ लाल बहिन

0: जेकि स्वस्थ रहब तेकरा लेल अपना सबके समय से जलखै सब काज के संगे बहुत आवश्यक अछि। ई नहि देखलहुँ अहाँ हम जे छै चाह पी पी कऽ बस दुपहरिया कऽ दै छी, जलखै होइए अपना सबके भोजन के टाइम मे,
1: तऽ
0: ओ देह मे की हाल हैत।
1: आ ओहो पावनि जे पूजती तऽ जब हुनके वएह बीमार भेती तऽ पावनि के पूजत, तऽ हुनको तऽ समय पर सबकिछु हेबाक चाही कि। आ मोनी बहिन, आइ एकटा आओर बड़ विशेष दिन अछि, से मोन अछि ने?
0: हाँ हाँ, एकदम अपन श्रोता लोकनि के अपन बहिन सबके सेहो मोन हेतनि। आइ अपना सब विश्व बाघ दिवस मना रहल छी, 29 जुलाई उजका दिन,
1: प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई के ई से विश्व बाघ दिवस मनाओल जाइत अछि। आ देखियौ, बाघ के संरक्षण केनाइ बड़ आवश्यक अछि, किया तऽ बाघ के रहनाइ तऽ बहुत आवश्यक अछि, जे विलुप्त भऽ रहल अछि, तऽ हमरा लोकनि के एकर मुख्य उद्देश्य इएह जे एकरा बचा कऽ कोना राखल जाए।
0: एकदम एकरा लेल अपना सब प्रयास सेहो करै छी। आ एहि वर्ष 2026 के थीम अछि आदिवासी लोक आ स्थानीय समुदाय के केंद्र मे राखि कऽ बाघक भविष्य के सुरक्षित करनाइ। एहि वर्षक थीम के जागरूकता अभियान चलेबाक लक्ष्य के व्यापक वकालत पर बहुत जोर देल जा रहल अछि। आ लाल बहिन, अपन बिहार मे जे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अछि, जाहिमे बाघक संख्या बढ़ल आ ई पर्यावरण संरक्षण के पैघ उपलब्धि अछि। वन्य जीव विज्ञान के अनुसार कोनो जंगल मे बाघ केर बढ़नाई ओतय के फूड चेन के दुरुस्त भेनाई संकेत अछि एहि चीज के। आ एतय वन्य जीव संरक्षण आ स्थानीय विकास संग संग चलैत अछि। लाल बहिन, बाघ के रहनाई समृद्ध जंगल के पहचान होइत अछि।
1: बहुत नीक पहुँचलहुँ। एतबे नहि, ई बाघ जे से पारिस्थितिक तंत्रक एकटा प्रमुख प्रजाति आ शीर्ष शिकारी अछि। बाघ शाकाहारी जीवक आबादी के संतुलित रखैत अछि आ दुनिया के अधिकांश बाघ आबादी अपन भारत में पाओल जाइत अछि। बाघ तेज तरार आ दौड़े वाला जानवर होइत अछि। एकर ई जे दहार मारत तऽ 2 किलोमीटर तक अहाँ के सुनाई पड़त, एकर ततेक आवाज मने टनगर होइत अछि। तऽ कहबाक तात्पर्य जे बाघ के संरक्षित रखनाइ हमर सबके से
0: काज
1: है, एकरा पर ध्यान देबाक चाही। सह एकर मुख्य उद्देश्य तैँ हमसब ई दिवस के आइ मनबैत छी। आ देखियौ, आब अपन सबके कार्यक्रम मे से मनोरंजन के समय भऽ गेल अछि, तऽ की मोनी बहिन आब किछु रमन चमन होइ, गीत नाद होइ?
0: एकदम तऽ सुनैत छी अपना सब।

0: तो अखन अपना सब अरविंद कुमार झा के स्वर में ई भगवती गीत सुनलो कोनो काज अपना सब करी छी लाल बहिन तो सबसे पहले भगवती के आराधना करी छी
1: हुनके गोहरबै छी आ ओही से सबके कल्याण होइया अपनो कल्याण होइया अपना सबके त होइया अपना सबके त कोनो शुभ पावन में एखने कल में पावन तेरा के चाचा कनु चाहे कोनो काज करै छी त अहाँ कभी कल में शुरुआत में सब भगवती के गीत से करै छी आ सबके कल्याण होइया इएह हमरा सबके कामना रहैया आ देखियो आ एकटा कामना इहो रहैया जे हमर जे परिवार अइ हम बहिन सब हमसब घर आंगन सम्हारैत बाहर के काज सेहो देखै छी तऽ हमसब कोना अपन बजट के सेहो ध्यान में राखी कोनो काज हमसब करै छी एखने पाबनि के चर्चा केलहुँ तऽ फेर ओहिमे खर्चा लागत तऽ जँ कने कने बचा के राखब तहने फेर उद्गार सँ खर्चा करब आ जँ पहिनेहे सबटा खर्च कऽ लेब तहन तऽ पाबनि मे ककरो लग मे हाथ पसारऽ पड़त
0: एकदम जो अपना सब बजट बना के चले छी घर में सम्हार के खर्चा करे छी कोनो फिजूल अनावश्यक खर्च नहीं करे छी तो पावन तिहार में वह पैसा लगा कर खूब प्रसन्नता से ओकरा कह सके
1: पावन के मना सके छी आ तहन आ ओना देखियो आ जहन हाथ पर पाई के अभाव भ जाइया तो मन कनी स्वाभाविक छै कनी तनाव तनी भ जाइया कनी तनाव में आबि जाइ छी तो किया ने शुरुए से मन के कनी माने सेहो इना का दबा कर राखी ई नहीं जतेक मन में आयल ततेक खर्चा करबे हाथ के कनी
0: सकत बना कर कनी अपन मन के समझावा पड़े छै जे कि अनावश्यक खर्चा हमरा कोन काज किए खर्च करू
1: जतबे आवश्यकता हुए ओतबे कर ककरो देखा देखी नहीं करबाक चाहिए आब किनको छन बड़ ओ करै छथिन आब हुनकर देखाव सामने कर

0: हमरा कतबा अइ हम ओही हिसाबसँ चलब, ई जे बड़ आवश्यक छै। बहिन लोकनिके कनि रहै छनि, आइ ओहि बहिन आन गेलखिन बुलैलए घुमैलए, ओहि बहिनके देखलखिन ओ चीज तऽ एथिन घरमे, ओहि बहिनके देखलियनि घरमे ई छनि आब हमरो हेबाक चाही, तऽ ई नहि हेबाक चाही। देखा देखौसके प्रवृत्ति नहि हेबाक चाही। जे हमरा आइ ओहीमे हम प्रसन्नतापूर्वक रही आ इएह सबसँ नीक छै बात। धियापुताके अपन पढ़ाबऽमे जे खर्चा अइ ओहिमे अहाँ कतौ कटौती नहि करू, लेकिन ईसब जे अनावश्यक खर्चा छै ओहिमे अहाँ कटौती कऽ कऽ किछु पैसा जा सकै छी आ तहन पाबनि त्योहार के कोनो नीक
1: अपन भविष्य के संरक्षण के लेल सेहो पाय बचा के रखनाइ बड़ आवश्यक अछि, कियाकि अपना सब पाई कमाबे में बड़ मेहनत करै छी लाल बहिन। तो कार्यक्रम घर आंगन में अपना सब जे प्रत्येक सप्ताह प्रायोजित कार्यक्रम लऽ कऽ आबै छी, पारा मेडिकल है पारस,
0: ओकर बेर भ गेलै तऽ आब हम सब सुनै छी कार्यक्रम।
2: के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आज बुधवार का दिन है और लेकर आ गया पैरा मेडिकल है पारस। जी हां, पैरा मेडिकल है पारस में हम बातें करते हैं हेल्थ सेक्टर में पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद रोजगार की भी, स्वरोजगार की भी। अगर जो रोजगार है तो सरकारी क्षेत्र के रोजगार और निजी क्षेत्र के रोजगार की भी बात करते हैं। कहते हैं कि कोविड के बाद से इतना वाइब्रेंट हो चुका है हेल्थ सेक्टर कि पढ़ते पढ़ते ही रोजगार मिल जाता है या कमाना शुरू कर दिया जाता है। पैरामेडिकल है पारस हम लेकर आते हैं, राज्य की एक विशिष्ट संस्था है पैरामेडिकल की, श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो पटना के जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने है। उनकी तरफ से उनका मानना है कि बिहार के अंतिम युवा तक बातें पहुंच जानी चाहिए कि अगर वो हेल्थ सेक्टर की पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए रोजगार ले लेना बहुत कठिन कार्य नहीं है। हम नंबर बताते हैं, इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद आप चाहे तो डायल कर सकते हैं, नंबर नोट करें 9155558888 और दूसरा नंबर है 9162413233। ये नंबर है, इस पर आप बातें कर सकते हैं और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी। तो चलिए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। किस मुद्दे पर बात होगी हम, हाँ जोड़ते हैं डॉक्टर साहब, क्या बात करना चाहिएगा पैरामेडिकल के बारे में बताइए।
4: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं,
3: हाँ।
4: बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता
3: है, जानकारियों का अभाव है। हाँ।
4: जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है।
3: जी
4: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है। और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है।
3: जी।
4: तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। सिर्फ आईएससी बायोलॉजी और बीएससी करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई।
3: जी।
4: तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ्य नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता
3: जी,
4: है
3: जी।
4: तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है। तो ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है, और उसके बाद बीएचएम हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी, और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।
3: जी, एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
4: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी नहीं होगी।
3: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
4: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है। जिस

0: तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है और जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा। और जहां तक और बढ़ ही रही है, मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब जितने भी बीमारियां है सब बढ़ रही है, तो उसकी उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
1: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए हमने पूछ लिया।
0: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
1: तो आप जानकारी दीजिए युवा साथियों को, थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं।
0: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा। यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं
1: जी।
0: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं। डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं, तो अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने का मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री कर लेते हैं।
1: हाँ।
0: डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जा कर करके आगे बढ़ सकता है।
1: तो फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए। जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
0: मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए हर समय हमेशा रहा गया, गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा का ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है
1: जी।
0: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो यू एक्सिट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल। ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांग नहीं होगी। अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी
1: जी।
0: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहां तक रही बात की टोटल की बात है तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है, तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहां से होंगे?
1: सही।
0: और फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहां पर फिजियोथेरेपी की जब आवश्यकता नहीं है, अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में, खेल के कोई भी क्षेत्र में, अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती है।
1: सही सही सही बात।
0: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा?
1: सही बात है।
0: और इसकी महत्ता बढ़ते ही जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, मैं हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है। कोई भी विषय हो जाए, जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं, तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी,
1: बिल्कुल नहीं।
0: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
1: पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूँ आपका अपना राजेश और डॉक्टर NP प्रियदर्शी जो है ना इस कार्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर ऑप्ट किया प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, नर्सिंग के कोर्सेज।

0: हूँ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हों, और आज अपने लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है। आज भी लोग कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों, आपको हम ये बताना चाहते हैं, जिनको करियर निर्माण करना है, 1-2-3 साल के अंदर आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से बात करके उसे दूर करें। नंबर नोट करें, 9155558888, 9155558888, और दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी, फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स, यही है ना
1: जी?
0: इसी में आपको 4 साल तक मेहनत करनी है। श्री राज नर्सिंग में ये है क्या फिजियोथेरेपी उच्च स्तर का
1: 2023 से?
0: पढ़ाई लिखाई के बारे
1: जी,
0: में
1: जी, जी।
0: पढ़ाई लिखाई के बारे में
1: बिल्कुल, मैं तो पहले ही, इसके पहले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपने चर्चा किया था तो कि पढ़ाई का क्या स्तर रहता। हमने पहले ही बताया था कि हम पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप करते हैं। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तभी हम कोई कोर्स को लॉन्च करते हैं, और लोगों और जगह से हम बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमेशा लगातार 10 साल से हमारा ये कीर्तिमान रहा है और आगे भी कीर्तिमान रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ।
0: एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फिजियोथेरेपी करके नौकरी या फिर स्व व्यवसाय,
1: उसकी इच्छा उसकी इच्छा, अगर वो नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी में जाए, उसको स्व व्यवसाय करना है तो स्व व्यवसाय करे, मल्टीनेशनल में जाना चाहे तो मल्टीनेशनल जाए, एब्रॉड जाना चाहता है तो एब्रॉड जाए,
0: कहीं
1: उसकी इच्छा, कहीं भी। नौकरियां सभी जगह है,
0: नौकरियां सही जगह हैं, डॉक्टर साहब ने कहा, इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग मार्केट में क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरीके से डॉक्टर्स की कभी मांग कम नहीं होगी, नर्सिंग की कभी मांग कम नहीं होगी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की मांग कभी भी कम नहीं होगी, इस बात को सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में क्या है पहले ये बताइए और फिर आगे चर्चा करेंगे।
1: देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सीधे शब्दों में समझिए तो ये फिजियोथेरेपी का अपना भाई है, अपना भाई है, दोनों का बंटवारा हो गया।
0: क्या पढ़ाई होती है?
1: दोनों में सब कुछ सामान्य है, सब कुछ समान है, उसमें से बस यही डिफरेंट है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने भी विधा है, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, सारे देते ही हैं, उसमें ऐड क्या हो गया सो समझिए। ऐड हो गया मतलब जो जिस लाइक का है उसके लाइक का कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
0: अच्छा,
1: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना
0: देना, ऑक्यूपेशन व्यवसाय
1: उसके लाइक बना देना। जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने, कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
0: जॉब ओरिएंटेशन,
1: जिसमें उसकी रुचि है उसके लाइक उसको बना देना।
0: अच्छा,
1: अगर मान पैर कट गया तो वो दौड़ तो नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसको और क्या क्या ऑक्यूपेशन है जिसको वो समझाता है, बताता है और इस पर उसको आगे बढ़ा देता है, तो यही ऑक्यूपेशन थेरेपी है। और ये आजकल आज जो है, आज चूंकि हम लोग के नजरों में नहीं आता है, लेकिन एक जगह कलेक्टिवली अगर देखते हैं तो रोज इस भागदौड़ की जिंदगी में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने अपंग हो जाते हैं, कितने क्या हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसको जिस लाइक है उस लाइक को बनाने का काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है।
0: यही काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है, बिल्कुल। ये फिजियोथेरेपी हाँ जो है ना, उसका सगा भाई है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और उससे कुछ कदम आगे है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वक्त नहीं है, आज हमने फिजियोथेरेपी के बारे में जो भ्रांतियां फैली थी कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, नीचे की ओर जा रहा है, पढ़ाई करना मुश्किल है, ये सारी चीजें आपने दूर की कि ये सारी चीजें गलत है, इस पर कहीं से विचार करने की जरूरत नहीं है, जमकर पढ़ाई कीजिए, आगे सोचिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में आगे हम बातचीत करेंगे अगले आने वाले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सेक्टर बहुत ही उम्दा है, आप इसमें अपना करियर आजमा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो नंबर नोट कर लें, एक बार फिर से बता रहे हैं, 9155558888, 9155558888, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233, ये नंबर है, इस पर बात कर लीजिए। और इसे कहीं से विज्ञापन नहीं समझिए, ये सहूलियत है आप युवाओं के लिए।

0: चलने का वक्त हो गया, राजेश आज निकलता है, अगले बुधवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
2: तो लाल बहिन अखन अपना सब सुने छोलू है, प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस। आब घर आंगन में जे अपना सब एलो, एतेक रास गपसप केलो, गीत नाद सेहो सुनलो, जानकारी के गप भेल, स्वास्थ्य के गप भेल, तो सब बहिन सब अपन स्वस्थ रहत, यह कामना के संगे आप कार्यक्रम घर आंगन समेटबाक बेर सेहो भ गेल अछि।
3: तो एक आप समेटी आ अहिठाम सब कार्यक्रम खेती गृहस्थी पसारी। तो सबसे पहिने तो कार्यक्रम खेती गृहस्थी में किसान भाई लोकन के स्वागत करै छियनि आ नमस्कार करै छियनि।
2: एकदम एकदम स्वागत छियनि किसान भाई के कार्यक्रम में, किसान भाई के लेल आ किसान भाई से गप करवा के लिए अपना सब आने छी।
3: आ देखियो किसान भाई लोकन तो सब दिन किछ ने किछ काज में लागल रहै छथि, कखनो ओ सब हाथ पर हाथ धक नहीं बैसै छथि, सदैत काज में लागल रहै छथि। मुदा एकटा बात कहू मुनि बहिन, कोनो फसल जे किसान भाई लोकन लगबै छथि तो एकटा बात के निश्चित रूप से ध्यान रखबाक चाही जे हमर माटि केहन अछि, ओहि माटि में कोन फसल लगाबी जे हमरा सूट करत, ओ नीक हैत, ओकर उत्पादन बढ़िया हैत। ई सब गप के राखि के जहन फसल लगबै छथि किसान भाई लोकन तो उत्पादन नीक होइए, आ जखन उत्पादन बढ़िया होइए तो किसान भाई लोकन के होइ छन हमर मेहनत साकार भेल आ मनो खनहन रहै छन
2: एकदम। आ अपना सब के जतेक अपना सब गोटे छी उनको सब के लेल बहुत नीक।
3: हाँ सही है कि क्या तो ओना जे बुझै छथिन नहि चलू कोनो बीया छै बाउ कऽ देलियै माटि मे खेत मे आ ओ तऽ गाछ जनमि जेतै, तऽ नहि ओ अहाँके नहि, ओ मेहनत पैसा सब अहाँके पानि मे चलि जायत,
2: निरर्थक भऽ जेतै।
3: तैं सबसे पहिने माटि के जाँच के कलबाक चाही जे कोन माटि मे कोन फसिल लगाबी जे बढ़िया हैत, तखने से ओ फसल के लगाबी। तऽ माटि जाँच के केना नमूना ली, माटि कोना जाँच करी, एकर हमरा सबके सेहो से
2: ध्यान राखब पड़त लाल बहिन, कियाकि आब एक ठाम जायब खेत में सबटा एक ठाम के माटि उठा के जाँच के लेल दऽ देब, तऽ केना हैत सही रिपोर्ट, ओकर तऽ रिपोर्टे गलत आबि जायत,
3: तहन उत्पादनो फेर नहि बढ़िया हैत, जहन किसान भाई लग लगेता फसिल तऽ ओकर केना की छै। जेना अहाँ कहलहुँ बहुत नीक गप मुनि बहिन, जेना माटि हमसब इकट्ठा करै छी जमा करै छी, तऽ माटि जँ पैघ कोला अइ तऽ दू ठाम तीन ठाम सँ आ से दू तीन इंच गहीर खुरपी सँ कोरि कऽ तहन लेबाक चाही। आरि लगमे सँ नहि ली, छाया जतऽ गाछ वृक्ष हुए आम ताम के गाछ तो ओहि छाहे जगह सँ नहि ली,
2: जतऽ गोबर ओतऽ सँ नहि ली, जतऽ रासायनिक खाद के व्यवहार केने छी ओतऽ सँ नहि ली,
3: ई सब जे छोट
2: ध्यान राखे वाला गप छै ई सब जे अछि, तऽ एकदम सही कहै छी अहाँ लाल बहिन। तऽ जानकारी के ध्यान देबाक गप ई अछि जे परीक्षण के लेल जे माटिक नमूना लेल गेल अछि ओ खेतक सब हिस्सा के प्रतिनिधित्व करय, एकर ध्यान अवश्य राखब। आ माटिक जांच के लेल जे नमूना लेबाक उद्देश्य अछि फसिल मे रासायनिक खादक प्रयोगक सही मात्रा निर्धारित करबाक लेल उस्सर आ अम्लिक माटि के सुधार आ ओकरा उपजाऊ बनेबा के लेल सही जानकारी संगे बाग गाछी लेबे जे लगायब ओहिमे माटिक योग्यता निश्चित करबा के लेल माटिक जांच होइत अछि, आ जे भाग माटिक किस्म फसिलक आधार पर पानि निकास आ फसिल उपजा सँ भिन्न हुए ओ प्रत्येक भाग के निशान लगा कऽ प्रत्येक भागक खेत मानी आप सब भाग सँ माटिक परीक्षण के लेल सही नमूना लेनाय बड़ आवश्यक अछि,
3: तखने अहाँ के ओकर जे छै समुचित मतलब जानकारी भेटत। आ जानै छियै जहन ओकर अपना सब दै छियै प्रयोगशाला मे तऽ ओहि पर नाम पता कोन फसिल लेबाक हमरा इच्छा अइ ई सब ब्यौरा सेहो
2: मोबाइल नंबर
3: मोबाइल नंबर सब मने जानकारी
2: नंबर
3: स्पष्ट रूप सँ लिख देबाक चाही कि तखने बुझबा मे अबै छै।
2: ओकर ना ओ जे लेबल लगायब लाल बहिन, दूटा एकटा माइटो मे धऽ देब, एकटा ओकर झोरा जे रहैया
3: ओहिमे साइट देब,
2: ओहो मे साइट देब, दूटा लगायब
3: जे दोसर सँ बदला बदली नहि भऽ जाय, नहि ताहि लए कहलहुँ। आ ओहि तय के बाद जो ब्यौरा दैया तो ओहिमे सबटा लिखल रहैया अनुशंसित मात्रा जे खाद उर्वरक के प्रयोग केना करबाक चाही, कोन फसिल अहाँके लेबाक चाही, आ ओहि हिसाबसँ जे किसान भाइ लोकनि अपन खेत मे करै छथि तऽ देखियौ कतेक सुन्दर फसिल होइ छनि जे हुनकर सबके मन प्रसन्न भऽ जाइ छनि
2: एकदम। आ अपन किसान भाई सब जे एतेक मेहनत

0: रहल छथिन करै छथिन अखनो लागल रहै छथिन ओ तऽ बारहो मास लागै
1: पड़ै छै। देखियौ धानके समय तऽ किसान भाइ लोकनि कतेक गोटाके धान कतेक पैघ भऽ गेल हन, पानि समयपर भऽ जाइए तहन तऽ ठीक छै ओकर प्राण आबि जाइ छै, आ जँ पानिके अभाव होइ छै तऽ किसान भाइ लोकनि पटौनी सेहो करै छथि अपन फसिलमे आ ओकरा जिया कऽ रखै छथि, आ पानि भऽ गेल तऽ ओहिमे खाद उर्वरक जेना आब ओहिमे कमौनी निकौनी जे कनिक दिनके भऽ गेलै गाछ पैघ भऽ गेलै धानके तऽ ओहिमे कमौनी निकौनी सेहो आवश्यक छै, तऽ ईसभ पर ध्यान दैत खेती करै छथि जे किसान भाइ लोकनि तऽ हुनका सभ दिन एक बेर आड़िपर जेबा निश्चित रूपसँ जेबाक चाहियनि आ ओकर निरीक्षण करबाक चाहियनि जे फसल हमर केहन भेल अइ, ओहिमे कोनो रोग तऽ नहि लागल अइ, ओहिमे कथीके आवश्यकता छै, तऽ ई नित्य प्रति निश्चित रूपसँ ओकरा से निरीक्षण करबाक चाही।
0: अपन किसान भाइ सभ करबो करै छथिन किएकि हुनकर जान होइत छनि खेतमे फसिलमे छै तऽ ओ जब तक जाइत नहि छथि खेत पर देख नहि लै
1: छथि पचै छनि ठीके हँ कहलहुँ।
0: आ अपन सभ कार्यक्रम खेती गृहस्थीमे अपन किसान भाइके लेल आनै छी ओहिमे मनोरञ्जन सेहो बड़ आवश्यक
1: ये मुनि बहिन मनोरञ्जन जे नहि हेतै तऽ हुनका सभके काजमे मोन लगतनि, एखन देखियौ साँझुक पहर छै आ चाहक सङ्ग ओ सभ गप्पो करै छथि अपनामे जे काल्हिके की योजना अइ सेहो कहलब आ खूब सुन्दर गीतो नाद सुनब, तऽ आउ ने सुनबा दै छनि अपन किसान भाइ लोकनि एकटा सुन्दर सन लोकगीत
0: बेस

0: विदुषी शारदा सिन्हा के स्वर में गाओल ई नचारी किसान भाई के खूब नीक लागल हेतै आ नीक तो अपना सबके जे किसान भाई के जानकारी दै छियनि ओहिसँ हुनका सबके लाभ भेटै छनि ओहो बड़ नीक लागै छनि। तऽ सब बुध को अपना सब सुनै छी कृषि गतिविधि पर आधारित कृषि सूचना, तऽ आओ सुनै छी वाचन आ संकलन छनि सविता कुमारी के आ प्रस्तुति असद दाऊद के।
1: आजुक कृषि गतिविधि के संग हम उपस्थित छी लाल बहिन नव नव जानकारी के संग। किसान भाई बहिन लोकन केवटी के विशेष अभियान में रजिस्ट्रेशन करौलन। जिला में गन्ना क्षेत्र के विस्तार के लऽ कऽ विशेष अभियान चलाओल गेल। केवटी प्रखंड के कतेको पंचायत में शिविर चलाओल गेल। एहि अंतर्गत केवटी प्रखंड के बंसारा, छाछा, पचाढ़ी, छतबन, केवटी, पैगम्बरपुर पंचायत के पंचायत भवन में विशेष शिविर संबंधित कृषि समन्वयक के उपस्थिति में लगाओल गेल। अंतर्गत किसान के भेटे वाला कुसियार, बिया, खाद और कृषि यंत्र के भेटे वाला सहायता के जनतब देल गेल। कृषि विभाग के एक आंकड़ा के अनुसार लगभग 300 किसान के पंजीयन कराओल गेल। स्नेह किसान भाई बहन लोकन, राज्य सरकार रैयाम चीनी मिल के फिर से चलेबाक जनतब देलन अछि। एहि लेल कुसियारक बड़ बेसी आवश्यकता होयत, तैं किसान लोकन के जागरूक कयलन अछि। एकर अंतर्गत जिला के 3 प्रखंड सिंहवाड़ा, केवटी ओ मणिगाछी में 3 दिवसीय विशेष शिविर लगाओल गेल, जाहि में बड़ बेसी संख्या में किसान लोकन आबि कऽ कुसियार उत्पादन में अपन रुचि देखौलन। एतबे नहि, सिंहवाड़ा प्रखंड मुख्यालय के कृषि भवन में कुसियार क्षेत्र विस्तार अभियान के अंतर्गत 965 किसान चीनी मिल के सदस्यता के लेल आवेदन देलन। कुसियार बिया के रजिस्ट्रेशन के लेल एखन तक 428 किसान आवेदन कऽ देला अछि। रैयाम चीनी मिल में उत्पादन शुरू होबाक प्रक्रिया के जनतब सँ किसान लोकन के बड़ प्रसन्नता छनि। चीनी मिल के बंद भेला सँ कुसियारक खेती लगभग समाप्त भऽ गेल छल, मुदा आब एकरा पुनः चलेबाक निर्णय पर किसान लोकन में बड़ हर्ष छनि। किसान लोकन के कुसियारक उत्पादन के लेल प्रोत्साहित करैत कहल गेलनि जे एकटा चीनी मिल के लेल 30,000 एकड़ में कुसियारक खेती कयल जायत। एतबे नहि, रैयाम ओ सकरी चीनी मिल के शुरू होयबाक प्रक्रिया के जनतब भेटते किसान लोकन के मन प्रसन्न भऽ गेलनि। रैयाम चीनी मिल के लेल सिंहवाड़ा, केवटी ओ मणिगाछी प्रखंड के चुनल गेल अछि। प्रस्तावित सहकारी समिति के गठन के उद्देश्य सँ किसान लोकन ऑनलाइन

0: आवेदन कऽ रहल छथि। किसान लोकनि के उत्साह के देखैत कुसियार उत्पादन के लेल प्रतिबद्धता के आवेदन लेबाक लेल 31 अगस्त तक के तिथि बढ़ा देल गेल अछि। बीसीओ जगन्नाथ कुमार कुसियारक खेती करबाक वास्ते खाद ओ बीया के उपलब्धता सँ संबंधित जनतब किसान के देलनि। वीडियो विक्रम भास्कर किसान लोकनि के प्रोत्साहित करैत कहलनि जे कुसियारक खेती के शुरू भेला सँ किसान लोकनि के एक मुस्त आमदनी बढ़ि जेतनि। एतबे नहि, मनिगाछी में 1836 पंजीयन मनिगाछी कुसियार क्षेत्र विस्तार के लेल सरकार के दिस सँ चलाओल गेल विशेष पंजीयन अभियान के अंतर्गत प्रखंड के सब पंचायत में कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। सब पंचायत के पंचायत भवन पर आयोजित एहि शिविर में सब किसान सलाहकार पंचायत सचिव ओ आन कर्मचारी के तैनात कयल गेल। एहि में बड़ संख्या में किसान के रजिस्ट्रेशन कयल गेलनि। कुसियार क्षेत्र के विस्तार के लेल लगाओल गेल 3 दिवसीय किसान पंजीयन शिविर के तीनों दिन के मिलाकर कुल 1836 किसान के पंजीयन कयल गेलनि। जनतब दैत वीडियो संदीप कुमार पांडे कहलन एकरा लेल पंचायत स्तर पर बैसार क किसान लोकनि के प्रोत्साहित कयल जेतन। वीडियो कहलन जे किसान लोकनि सरकार द्वारा फसल के कीनल गेल ओ समय पर भुगतान भेटबाक बात कहलन। आ एकटा और बड़ महत्वपूर्ण गप अछि किसान भाई लोकनि जे एखनका समय में जे किसान भाई लोकनि अपन खुट्टा पर पशु के पोसने छी तो ओहिमे खुरपक्का मुँहपक्का रोग सँ बचेबाक वास्ते अपन गाय महीस के समय पर टीका निश्चित रूप सँ लगा लेथि जाहिसँ कि हुनकर पशु सुरक्षित रहनि। बस आब आइ एतबे, फेर अगला बुध कऽ हम उपस्थित रहब कृषि गतिविधि के संग।
1: किसान भाई अखन अपना सब सुनैत छलहुँ हैं कृषि गतिविधि पर आधारित कृषि सूचना। वाचन आ संकलन सविता कुमारी के छलनि, प्रस्तुति असद दाऊद के। तो लाल बहिन एतेक नीक नीक जानकारी देलियन अपन किसान भाई के, आब लागले किएक ने मनोरंजन दिस
0: लिये बेस्त।

0: संवत स्वर में अखन अपना सब सुनो ई देवी गीत।
1: हाँ देखियो देवी गीत सुनलो हम सब। आब देखियो हमर सबके जे कार्यक्रम है ओहो लक्ष्य आ गेलै, तऽ एकटा बात कहू, पहिने तऽ किछु मौसम के जानकारी जे से अपन किसान भाई लोकनि के दऽ दियौन।
0: मौसम के जानकारी तऽ किसान भाई के लेल बड़ बेसी आवश्यक अछि। अखन जे अछि पूर्वानुमान अवधि मे हल्लुक कतौ कतौ बरखा हेबाक संभावना अछि, आ ई बरखा जे छै बहुत कम बुझियो तो नहीं के बराबर है, कतु कतु हल्लुक, आ अधिकतम तापमान 30-34 डिग्री सेल्सियस के बीच आ न्यूनतम तापमान 24-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक अनुमान है। आ किसान भाई के खेती के लेल जे छे से सलाह देल जाय छे जे कि तिल के बाग, सूरजमुखी के बाग कह लेथिन, आ परोर के बाग सेहो अखन कह सकै छथिन।
1: मोटा मोटी बुझियौ ना, जे बरखा माने किसान भाई लोकनि आकाश दिस तकैत रहत, बरखा के कोनो संभावना नै छन्। आब हमर सबके कार्यक्रम जे समेटबाक बेर भऽ गेलै मोनी बहिन, तऽ आब एकरा समेटी आ किसान भाई लोकनि से चलबाक आज्ञा लै छी। नमस्कार मोनी बहिन।
0: नमस्कार लाल बहिन।

ये था खेती गृहस्थी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: कुछ देर बाद अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी पेंशनधारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अपनी पेंशन बिना रुकावट के पाने हेतु यथाशीघ्र जीवन प्रमाणीकरण अवश्य कराएं। पंचायत या प्रखंड स्तर पर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड या बैंक खाता संख्या या लाभार्थी संख्या लेकर जाएं एवं निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अतिवृद्ध एवं दिव्यांग पेंशनधारियों का बायोमेट्रिक के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। ध्यान दें, जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आपकी पेंशन बाधित हो सकती है। अपने पेंशन को निरंतर जारी रखने के लिए आज ही जीवन प्रमाणीकरण कराएं।
5: अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क करें। समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दरभंगा और मधुबनी में बंद चीनी मिलों को चालू करने का हुआ फैसला। बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर लगी मुहर। राज्य सरकार ने TRE4 के तहत 32,388 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की। BPSC को भेजी गई अधियाचना। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां पूरी, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल होगा मतदान। और लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा का प्रावधान। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने दरभंगा के रैयाम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को पुनः चालू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने यह जानकारी दी।
1: सहकारिता विभाग का एजेंडा था, जिसके अंतर्गत रैयाम, दरभंगा एवं सकरी मधुबनी में बंद पड़ी चीनी मिल की भूमि पर नई सहकारी चीनी मिल तथा गन्ना बाई प्रोडक्ट आधारित अन्य इकाइयों की स्थापना एवं परिचालन इंडियन पोटास लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा करने तथा बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृत परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
0: श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में बिहार खेल नीति 2026 को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
2: बिहार खेल नीति 2026 की स्वीकृति दी गई। इसके 4 पिलर हैं: राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास हेतु खेल, सामाजिक कल्याण हेतु खेल तथा खेल एवं शिक्षा का एकीकरण। इसके लिए पंचायत से लेकर के राज्य स्तर तक में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा और खिलाड़ियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
0: अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बैठक में राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस, व्यवसायिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयों की स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया है।
2: राज्य स्कीम के अधीन राज्य के सभी 38 जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट इकाई, गोबर एवं बायोगैस इकाई तथा व्यवसायिक वर्मी कंपोस्ट इकाई योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई। इसके लिए वित्तीय वर्ष 26-27 में 30,17,50,000 रुपए की स्वीकृति दी गई।
0: राज्य मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 97 करोड़ से अधिक की राशि की योजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में आज 24 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार ने TRE4 के तहत 32,388 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। एक रिपोर्ट।
3: BPSC को भेजी अधियाचना के अनुसार कक्षा 1 से 5वीं तक 3,847, कक्षा 6 से 8 के लिए 8,563 और कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 3,877 पदों पर बहाली होगी। वहीं कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए सबसे अधिक 16,101 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बयान जारी कर कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को रोजगार और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की

0: में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब आयोग जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
1: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 12 ने 12 राजस्व अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई है। विभागीय मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने राजस्व कार्यों में निर्देशों की अवहेलना और समयबद्ध सेवा देने में विफल रहे इन कर्मियों के विरुद्ध वेतन वृद्धि रोकने समेत विभिन्न दंडात्मक और अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार और लापरवाही को लेकर राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दोषी अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अब तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 82 अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा चुकी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान की सभी तैयारी पूरी कर ली है। मतदान कर्मी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 30 आदर्श मतदान केंद्र समेत 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 29 चलंत मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर वेबकास्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि मतदान के दौरान त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां तैनात की गई हैं।
3: केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो मिले CAPF, वो 14 कंपनियां मिली हैं। इन सभी को बूथ में डिप्लॉय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जहां पे एक बिल्डिंग में ज्यादा बूथ है उसमें जो जिला बल है वो भी लगाया जा रहा है। उसमें क्यू लगाने के लिए मतलब कतार लगाने के लिए होमगार्ड की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त सेक्टर और जोन बांटे गए हैं कि जहां पे भी कुछ घटना हो तो वो लोग पहले रिस्पॉन्ड कर सके। इसके अलावा भी विभिन्न चौक चौराहों पर और विभिन्न बिल्डिंग से क्लस्टर पे पुलिस की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
2: उपचुनाव में भाजपा, राजद और जन स्वराज के प्रत्याशी समेत कुल 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला एनडीए के नीरज कुमार, राजद की रेखा कुमारी और जन स्वराज के प्रशांत किशोर के बीच माना जा रहा है। समाचार कक्ष से मैं नंदिनी।
1: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े दंड के प्रावधान शामिल किए गए हैं। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कार्मिक लोक शिकायत और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि परीक्षा में अनुचित साधनों के मामले को शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान इस विधेयक में शामिल किया गया है। पश्चिम चंपारण से भाजपा सांसद और लोकसभा में पार्टी के सचेतक संजय जायसवाल ने पेपर लीक रोकने के लिए लाए गए कानून को विधेयक लोकसभा में पारित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और युवाओं को आश्वस्त करने के लिए यह विधेयक लाया है।
4: एक शब्द भी नहीं बता रहे। अगर इन सुधारों में कुछ कमी है उन्हें बताना चाहिए ना। वो सुझाव दें कि नहीं इसके बदले ये काम हो तो हम काम कर सकते हैं। देखिए ये छात्रों का मुद्दा है, ये परीक्षा की पारदर्शिता का मुद्दा है। इसमें हर व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। अगर सरकार कोई कानून लाई है, आपको उसमें दिक्कत है तो आप बताओ ना भाई इससे अच्छा कानून कैसे लाया जा सकता है। हम सब समाहित करने को तैयार हैं।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक स्थलों को केवल पर्यटन स्थल के रूप में नहीं बल्कि इन्हें ऐसे स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए जहां इंसान शांति का अनुभव कर सके।
1: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2000

0: 1226 थी, वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी, वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी, जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
1: इधर हमारे पश्चिम चंपारण संवाददाता ने बताया है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या इस बार 60 से अधिक होने की उम्मीद है। एनटीसीए की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2018 से 2022 के बीच बाघों की संख्या 54 थी। राज्य सरकार ने सीमांचल में चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6 करोड़ से अधिक की चाय विकास योजना को मंजूरी दी है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में चाय की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राज्य में सहकारिता मॉडल के माध्यम से मत्स्य उत्पादन और इसके प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमों को बढ़ावा दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने आज पटना में मत्स्य पालन परिवर्तन एवं निर्यात संभावना विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: बिहार की मछली को देश एवं विदेश के बाजारों तक पहुँचाना, उत्पादन और प्रोसेसिंग कोल्ड चेन तथा निर्यात व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारी सरकार अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं को संचालित कर रही है, ताकि प्रत्येक मत्स्य पालकों को आर्थिक सहायता, सरल ऋण, बीमा सुरक्षा तथा आधुनिक तकनीकी का लाभ भी मिल सके।
1: प्रदेश के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ने से हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज सुपौल, अररिया, किशनगंज समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ वर्षा की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात हो सकता है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बांका, भभुआ और पश्चिम चंपारण जिले में विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रदेश भर में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर शिक्षण कार्य में लापरवाही और अभद्र व्यवहार के कारण एक प्रधानाध्यापक समेत 4 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। शेखपुरा के बरबीघा प्रखंड के सर्वा उच्च विद्यालय में कार्यरत शिक्षक पुरुषोत्तम कुमार को छात्रों के साथ शराब और सिगरेट पार्टी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। सुपौल के मरौना प्रखंड के अमरदास टोला मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक भगवानी मंडल को बच्चों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया और त्रिवेणीगंज प्रखंड में कार्यरत 2 विशिष्ट शिक्षकों को विद्यालय अवधि में सोने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदवारा में जमीन विवाद को लेकर अपराधियों द्वारा की गई गोलीबारी में 4 लोग घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्बान बीघा के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। सुपौल के वीरपुर के बनेली पट्टी में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च की स्थापना की जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी सावन कुमार ने 10 एकड़ जमीन अधिग्रहण के बाद परिवहन विभाग को हस्तांतरण के लिए आदेश निर्गत किया है। यह राज्य का तीसरा ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दरभंगा और मधुबनी में बंद चीनी मिलों को चालू करने का हुआ फैसला। बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर लगी मुहर। राज्य सरकार ने TRE4 के तहत 32,388 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की। BPSC को भेजी गई अधियाचना। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां पूरी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल होगा मतदान। और लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा का प्रावधान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का

0: आकाशवाणी एट 90।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मुंगेर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार सिंह।
2: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को अपने एक दिवसीय तारापुर दौरे के दौरान विधानसभा क्षेत्र को कई विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने लौना से रिमोट के जरिए 10 चयनित मॉडल विद्यालयों का उद्घाटन किया। हरपुर में नवनिर्मित थाना भवन का लोकार्पण और असरगंज स्थित राजकीय डिग्री कॉलेज में पठन पाठन की औपचारिक शुरुआत भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक 212 डिग्री कॉलेज खोले जा चुके हैं और युवाओं को उस शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े, इसके लिए सभी बीएड कॉलेजों में भी डिग्री कॉलेज की पढ़ाई शुरू की जाएगी।
3: अभी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं कि बिहार के सभी बीएड कॉलेज में हम डिग्री कॉलेज खोलने का भी काम आपके लिए समर्पित करने का काम करेंगे।
2: मुंगेर विश्वविद्यालय ने वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में नई पहल करते हुए जेरस कॉलेज जमालपुर परिसर में रबर शोध और प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है। केंद्र की स्थापना में भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान केरल का सहयोग मिला है। कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार ने कहा कि बिहार सहित उत्तर भारत में रबर की खेती किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने राहत और बचाव की तैयारियां पूरी कर ली है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार जिले में 66 राहत शिविर और 58 सामुदायिक रसोई केंद्र चिन्हित किए गए हैं। राहत कार्यों के लिए 118 नावों और 142 लाइफ जैकेट की व्यवस्था की गई है। सूखा राशन, टेंट, पॉलिथीन सीट और पशु चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। 299 आपदा मित्रों को सक्रिय किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी कमल किशोर ने बताया कि गंगा के जलस्तर और संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सेवा संकल्प और समर्पण के सफल 100 दिन पूरे होने के अवसर पर संग्रहालय सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी निखिल धनराज निपिकर ने विभिन्न अंचलों के 82 भूमिहीन परिवारों के बीच वासकृत पर्चा वितरित किया। उन्होंने कहा कि इन परिवारों को जमीन का अधिकार देकर सरकार ने अपने संकल्प को पूरा किया है। श्रावणी मेला को लेकर जमालपुर रेल पुलिस ने भी सुरक्षा और यात्री सुविधाओं के लिए विशेष व्यवस्था की है। जमालपुर स्टेशन पर जवानों की तैनाती की गई है और प्लेटफॉर्म तथा फुट ओवर ब्रिज पर सीसीटीवी की निगरानी रखी जा रही है। भीड़ बढ़ने पर अतिरिक्त बल तैनात किया जाएगा। अनाउंसमेंट सिस्टम दुरुस्त करने के साथ मेडिकल टीम को भी तैयार रखा गया है। बाल श्रम, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ मुंगेर पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। साइबर डीएसपी राकेश कुमार रंजन के नेतृत्व में कोतवाली थाना पुलिस ने शहर की भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों को जागरूक किया। मुंगेर निबंधन कार्यालय को पेपरलेस बनाने और पुराने जमीन रजिस्ट्री अभिलेखों के डिजिटाइजेशन का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। वर्ष 1995 के बाद के दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन पहले ही पूरा किया जा चुका है। अब वर्ष 1908 से 1995 तक के अभिलेखों को डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित किया जा रहा है। जिला अवर निबंधक अश्विनी कुमार ने बताया कि काम पूरा होने के बाद लोग पुराने रजिस्ट्री अभिलेख ऑनलाइन देख सकेंगे। मुख्यमंत्री ने मुंगेर के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुविधा देने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि भागलपुर के सुल्तानगंज में प्रस्तावित एयरपोर्ट का विस्तार

0: रायपुर विधानसभा क्षेत्र तक किया जाएगा। इसके लिए चोरगांव, अमैया और बैजलपुर पंचायतों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 का मंगलवार को मुंगेर जिले की सीमा में विधिवत शुभारंभ हुआ। असरगंज प्रखंड के कच्ची कांवरिया पथ पर कमराय के पास जिलाधिकारी निखिल धनराज निपिकर, पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद और अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंगेर जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार सिंह।
2: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सीतामढ़ी के वेस्ट टू वेल्थ मॉडल की सराहना की। एक रिपोर्ट, आत्मनिर्भरता की मिसाल बनी औरंगाबाद की नीलू तिवारी की उपलब्धियों पर। और जानेंगे ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला पदक दिलाने वाले नालंदा के झंडू कुमार के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में प्लास्टिक प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने प्लास्टिक कचरे का सही तरीके से निपटारा किए जाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने सीतामढ़ी जिले में लोहिया
3: वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है।
2: सीतामढ़ी जिले में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत प्लास्टिक कचरे को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने राय इंडस्ट्रीज बक्सर के सहयोग से बाजपट्टी, रून्नीसैदपुर, डुमरा और रीगा की कचरा प्रसंस्करण इकाइयों से जुटाए गए प्लास्टिक को मजबूत और आकर्षक बेंच में बदलने की पहल की है। प्लास्टिक कचरे से बेंच बनाने की पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं राय इंडस्ट्रीज के एरिया मैनेजर राघव कुमार झा।
4: प्लास्टिक कचरा उपलब्ध है, वहाँ पे WPU बना हुआ है, जहाँ पे लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्यरत कर्मियों के द्वारा प्लास्टिक एकत्र किया जाता है। वहाँ से हम लोग वो प्लास्टिक उठवा करके, और चार हमारा यूनिट है सीतामढ़ी में, बाजपट्टी, रूनिस
5: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। वक्त हो चुका है फिल्म संगीत का।

फिल्म हेटर स्टोरी 2 के गाए इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट प्रश्न पत्र लीक की पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराहन 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है और आज से सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के विरुद्ध कड़े प्रावधान के साथ मूल कानून 2024 में लागू किया गया था और आज प्रश्न पत्र लीक संबंधी खामियां सामने आने के बाद सरकार ने माना कि कानून को और कड़ा बनाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा के दौरान कहा कि दिल्ली में मासूम बच्चों पर जुल्मों सितम ढाया गया, जबकि सरकार ने सर्वोच्च संयम के साथ कार्रवाई की और सुनिश्चित किया कि कोई भी हताहत नहीं हो। श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने देश में पिछले कुछ साल में 152 बार प्रश्न पत्र लीक होने और इसमें 750 करोड़ बच्चों के प्रभावित होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं प्रियंका गांधी ये आंकड़े कहां से लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने 2024 का कानून लागू होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कही, जबकि ऐसे मामलों में 52 प्राथमिकियां दर्ज हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई, जो कांग्रेस का अधूरा काम था। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसी तरह संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 3 महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी। इससे पहले सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर बुधवार को लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वे माफी मांगें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य, जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। श्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था की आत्मा पर भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संगठन ने कब्जा कर लिया है और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक प्रतीक मात्र थे। उन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि प्रदर्शनकारी बच्चों के माता पिता में साहस नहीं है कि वे भाजपा और उसके वैचारिक संगठन का मुकाबला करें, लेकिन ये बच्चे सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि छात्रों

ने डर को बाहर निकालकर चुनौती दी और खुलकर सवाल किया। उन्होंने सदन में गृहमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर दावा किया कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वे सदन में आ सकें। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री डरे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश किसने दिया था। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी माफी मांगो और कांग्रेस के सदस्यों ने एलओपी को बोलने दो और गृहमंत्री जवाब दो के नारे लगाए। सदन में काफी देर तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। श्री राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों पर इस देश के भविष्य ने जो किया वो कोई गुस्सा, हिंसा और नफरत नहीं थी, बल्कि ये युवाओं की अभिव्यक्ति थी तथा सत्तारूढ़ दल समेत सभी दलों को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के मित्र अपने बच्चों से भी इसके बारे में पूछेंगे तो आंदोलनकारी बच्चों के साथ उनकी भी सहमति ही पाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग एक परीक्षा पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो सरकार के शिक्षा बजट से ज्यादा है। सत्ता पक्ष के टोका टोकी के चलते राहुल गांधी ने बोलने से इनकार कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद श्री रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें सुनने को तैयार हैं और वे अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि आप भावुक चेहरा दिखाकर सदन को गुमराह नहीं कर सकते। श्री बिरला ने कहा कि सदन में अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं और अच्छी मर्यादाएं रही हैं, मर्यादा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई मर्यादा और तर्क से बोलता है तो देश सुनता है और सम्मान भी करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्री राहुल गांधी से भाषण जारी रखने की अपील की और सत्ता पक्ष के सदस्यों से उनके भाषण के बीच में टीका टिप्पणी नहीं करने को कहा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भाषण जारी रखा। हालांकि दोनों पक्षों में नोकझोंक की स्थिति बनी रही और कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी आज सदन में पेश किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। संसदीय प्रक्रिया के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करने के लिए विपक्ष के कुछ सदस्यों के नाम पुकारे। हालांकि कोई विपक्षी सदस्य नहीं बोला और इसके बाद श्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट डीएम, उपमंडल मजिस्ट्रेट एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर 2-स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा ने आज उस विधेयक को पारित कर दिया जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों का प्रिय नारा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वो सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसी कारण वंदे मातरम के केवल 2 अंतरों को ही सरकार ने स्वीकार किया और इसके 2 ही अंतरे सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों

में गाय बजाए जाते थे। श्री राय ने कहा कि आजादी मिलने के बाद पहले दिन प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देश पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने आकाशवाणी पर पूरा वंदे मातरम गाया था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या ऐसे गायन में लगी किसी सभा में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों के प्रावधान हैं। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री तथा आरपीआई के रामदास अठावले, भाजपा के राधामोहन दास, मयंक कुमार नायक, डॉ अशोक कुमार मित्तल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोला बाबू राव, तेदेपा के विजया चिंता कायला, राजद के मनोज कुमार झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना की डॉ ज्योति नागनाथ वाघमारे, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, बीजेद की सुलता देव और अन्ना द्रमुक सदस्य डॉ एम थंबीदुरई ने हिस्सा लिया। विधेयक पारित होने के बाद

कि किसी सभा में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों के प्रावधान हैं। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री तथा आरपीआई के रामदास अठावले, भाजपा के राधामोहन दास, मयंक कुमार नायक, डॉ अशोक कुमार मित्तल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोला बाबू राव, तेदेपा के विजया चिंता कायला, राजद के मनोज कुमार झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना की डॉ ज्योति नागनाथ वाघमारे, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, बीजेद की सुलता देव और अन्ना द्रमुक सदस्य डॉ एम थंबीदुरई ने हिस्सा लिया। विधेयक पारित होने के बाद भाजपा के माधव राव गोपछड़े, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे और डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी तथा भाजपा के नाम निर्देशित सतनाम सिंह संधू ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने उच्च सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक अब बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे होगी। विपक्षी सांसद दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के प्रवेश और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश का विरोध कर रहे थे। साथ ही उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग भी दोहराई। सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने आयशी घोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस की एक टीम 2021 में जेएनयू में हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में आयशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए कल पार्टी कार्यालय में दाखिल हुई। उनकी बात का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस के प्रवेश का आदेश किसने दिया। आरोपों का जवाब देते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह एक सामान्य कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होती है और उसने उसी के अनुरूप कार्रवाई की है। श्री नड्डा ने कहा कि वे भी छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उन्हें भी ऐसी कई कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था। माकपा तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस घटना पर विरोध जताया। सभापति ने सदन में शून्यकाल शुरू करने और आसन की अनुमति से सदस्यों से अपने अपने मुद्दे उठाने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग भी उठाई। सत्तापक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के मदन राठौर, तेजवीर सिंह, डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राजीव भट्टाचार्य ने यातायात जाम, सरकारी स्कूलों में खेल के मैदानों की स्थिति और खाली पड़ी जमीनों में सौर ऊर्जा उत्पादक संयंत्र लगाने संबंधी मुद्दे उठाए और सरकार से इनके समाधान की मांग की। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया। बैठक स्थगित करने से पहले सभापति ने प्रदर्शन कर रहे सदस्यों को आसन के समक्ष नहीं आने की चेतावनी दी। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में लगातार व्यवधान देखने को मिल रहा है। मॉनसून सत्र में आज पहली बार उच्च सदन में शून्यकाल हुआ, लेकिन केवल 4 सदस्य ही अपने मुद्दे उठा पाए। इस सत्र में प्रश्नकाल एक बार भी नहीं हो पाया है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

नमस्कार, मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार में अपने समस्त सुधी श्रोता बंधु के आत्मिक स्वागत है। श्रोता बंधु, मैथिली कर नाट्य परंपरा अत्यंत समृद्ध रहल है। मैथिली में प्राचीन काल से नाट्य लेखन होइत आबि रहल है। प्राचीन काल माने मैथिली साहित्य कर प्राचीन काल। एहि प्राचीन कालक जे सिंह द्वार ताहि ठाम विराजमान छथि कवि शेखराचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर, जैकि प्रथम गद्य साहित्य लोक ज्योतिरीश्वर उपस्थित भेलाह, तें हिनके एहि सिंह द्वार पर हमरा लोकनि विराजमान पबैत छी। ज्योतिरीश्वर के एहि कालखंडक सिंह द्वार पर एहू दुआरे विराजमान पबैत छी जे नाट्य सर्जन कर क्रम सेहो यह आरंभ करैत छथि। सर्वप्रथम हिनके नाट्यकृति उपलब्ध होइत अछि धूर्त समागम। आलोचक लोकनि एकरा प्रहसन मानलनि अछि। प्रहसन हास्य प्रधान रूपक थिक। सामान्यतया प्रहसन के नाटके केर भेद मानल जाइत अछि। काव्यशास्त्रीय दृष्टि सँ असल में एहन ठीक नहि। प्रहसन आ नाटक ई दुहू तँ रूपके केर भेद थिक। दृश्य काव्य केर दू भेद होइत अछि, रूपक आ उपरूपक। रूपक केर 10 गोट भेद होइत अछि, नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, इहामृग, अंक, विधि आ प्रहसन। उपरूपक केर 18 भेद थिक, नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थानक, उल्लाप्य, काव्य रासक, प्रेंखण, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, हल्लीस आ भणिका। से मैथिली नाट्य साहित्य प्रहसन सँ अपन यात्रा आरंभ करैत अछि। 12 गोट मैथिली गीत सँ समन्वित धूर्त समागम कर पश्चात महाकवि विद्यापति विरचित गोरक्ष विजय उपलब्ध होइत अछि। ओना विद्यापति कर नाट्यकृति मणिमंजरी सेहो थिकनि। विद्यापति मैथिली साहित्य कर मध्यकालक महानायक थिकाह। एहि कालखंड में उमापति उपाध्याय कर पारिजात हरण उपलब्ध होइत अछि, जे श्रीमद् भागवत कर ओहि कथानक पर आधारित अछि जाहि में नारद सँ प्राप्त पारिजात पुष्प श्री कृष्ण रुक्मिणी के दैत छथि आ एहि सँ सत्यभामा रुष्ट भऽ जाइत छथि। ओ श्री कृष्ण सँ मान कऽ बैसै छथि। हुनकर मान मुंचन लेल श्री कृष्ण इंद्र सँ युद्ध कऽ पारिजात वृक्ष के हरण कऽ अनैत छथि। पारिजात हरण में मैथिली गीत कर प्रयोग बहुलता सँ भेल अछि आ ई गीत सब अत्यंत चर्चित रहल अछि। एहि में प्रयुक्त एकटा गीत रचना के देखल जा सकैत अछि, जे सत्यभामा जखन मान कऽ बैसैत छथि तँ दूती श्री कृष्ण सँ हुनकर विरहावस्था केर वर्णन करैत कहैत छथि। कि कहब माधव तनिक विशेषे, अपनहु तन धनि पाव कलेशे, अपनुक आनन आरसि हेरी, चानक भरम कांपकत बेरी, भरमहु नियकर उर पर आनी, परसे तरस शरीरुह जानी, चिकुर निकरनिय नयन निहारी, जलधर जाल जानी हिय हारी, अपन वचन पिक रव अनुमाने, हरिहरि तेहुपरि तेजय पराने, माधव आबहु करिय समधाने, सुपुरुष निठुर न रहय निदाने, सुमति उमापति भन पर माने, माहे शरदेई हिंदूपति जाने। उमापति उपाध्याय केर पश्चात शिवदत्त केर नाट्यकृति उपलब्ध होइत अछि। इहो पारिजात हरण नामे सँ एहि कृति केर रचना कयलनि। सरस कवि रामदास

खास उपाध्याय के आनंद विजय नाटिका में गीत कही को 26 गोट गीत रचना कर निवेश कैल गेल अछि। ई श्रृंगार प्रधान नाटिका थिक जे राधा माधव केर स्नेह पर आधारित अछि। एकर गीत पर विद्यापति केर प्रभाव सेहो दृष्टिगत होइत अछि। रामदास राधा केर रूप सौंदर्य केर वर्णन करैत जे गीत रचना एहि में समाविष्ट कैलनि अछि से एहि प्रकारे थिक। दिल पर वेश परम सुकुमारी, हंस गमनि बिख भानु दुलारी, तनु अनुपम रे वदन सानंद, दामिनी ऊपर उगली जिमि चंद, नासा ललित नयन नहि थीर, जन तिल फूल दुहु दिय अलि फीर, अधर सौ ढरय दसन धन ज्योति, नवदल बेढ़ल जनि गज मोती, भांग जाहित कुछ भरी परिनामे, तैं दहु तिविली गुणे बांधली कामे, सरस राम भन राधा रूप, रस बुझ रसमय सुंदर भूप। श्रोतबंधु, रामदास कर पश्चात भानुनाथ कर प्रभावती हरण, कान्हाराम आ लाल कवि कर गौरी स्वयंवर, शिवदत्त कर गौरी परिणय, नंदीपति कर कृष्ण केली माला, कवि गोविंद कर नलोदय, रमापति कर रुक्मिणी हरण, गोकुलानंद कर मानचरित, कर्ण जयानंद कर रुक्मांगद, श्रीकांत गणक कर श्रीकृष्ण जन्म रहस्य, रत्नपाणी कर उषाहरण आ हर्षनाथ कर उषाहरण आ माधवानंद आदि नाट्य कृति कर सर्जन एही कालखंड में भेल। एही नाट्य कृति सब में सँ प्रायः कर भाषा संस्कृत प्राकृत थिक। एही सभ में गीत मैथिली कर रहल। ओना एही समय में रचित शिवदत्त कर गौरी परिणय में संस्कृत और प्राकृत में कथोप कथन नहीं भ क सभ किछु गीते कर माध्यमे संपादित भेल अछि। एही प्रकारें कान्हा राम कर कृति गौरी स्वयंवर में सेहो पद्य श्रृंखले कर माध्यमे सभ किछु संपादित भेल अछि। ई तो स्वाभाविके कि नहि, कारण मिथिला केर जनजीवन संपूर्ण रूप सँ गीतमय रहल अछि। मुदा एते काल बीति गेल आ अपना सभक कार्यक्रम सिंगरहार में कोनो गीतनाद नहि भेल, से तो आब सहज नहि लगैत अछि। तो सब सँ पहिने एही असहजता के एही गीत कर माध्यमे समाप्त करैत छी।

दुझा बहुआयामी लेखन व्यक्तित्व केर धनी साहित्यकार थिका। प्रख्यात भाषाविद पंडित गोविंद झा संस्कृत मैथिली अंग्रेजी आ हिंदी तो निविष्ट विद्वान थिका है। प्राकृत बंगला असमी उड़िया आदि भाषा में सेहो सिद्धहस्त रहला। इजहने कुशल नाटककार उपन्यासकार कथाकार निबंधकार आ समालोचक छायथी। तेहने विशिष्ट भाषा शास्त्री वैयाकरण साहित्य शास्त्र वेत्ता अनुवादक आ संपादक थिका। जखन 1954 में अपन नाटक बसात लक उपस्थित हुई छायथी तो अपना के सिद्धहस्त नाटककारक रूप में प्रतिष्ठित करबा में सफल रहित छायथी। हिनक नाटक राजा शिव सिंह आ अंतिम प्रणाम सेहो हिनक नाट्य प्रतिभा के सप्रमाण उपस्थित करैत अछि। उपन्यास कर सर्जन करैत छथि तो महाकवि विद्यापति के केंद्रित को प्रामाणिक ग्रंथ विद्यापतिक आत्मकथा लिखी जाइत छथि। हिनक लेखनी कथा लेल उठैत छनि तो सामाक पौती सन कथा संग्रह के साकार करैत छनि, जाहि पर 1993 में हिनका साहित्य अकादमिक पुरस्कार सँ अभिनंदित कैल जाइत छनि। नख दर्पण नाम सँ एकटा आरो कथा संग्रह प्रकाशित छनि। पंडित गोविंद झा कर लेखनी कहियो विश्राम नहीं लेलकनि आ एकरे परिणाम भेल जे हिनक पोथी केर अमार लागि गेल। से विभिन्न भाषा में मुदा सभक केंद्र में मातृभाषा मैथिली अवश्य रहल। से जखन हिंदी में मैथिली भाषा का विकास पोथी केर सर्जन करैत छथि तो मैथिलीक स्वतंत्र सत्ताक संस्थापन में अपन महती अवदान दैत छथि। भाषा विज्ञान आ व्याकरण से संबंधित हिनकर पोथी मैथिलीक उद्गम ओ विकास, मैथिली परिशीलन, भाषा शास्त्र प्रवेशिका, उच्चतर मैथिली व्याकरण प्रकाशित छनि। पंडित गोविंद झा शास्त्रीय ग्रंथ मैथिली छंद शास्त्र लक सेहो उपस्थित होइत छथि। तो आत्मकथा जन्म अवधि हम निबंध ओ संस्मरणक पोथी आत्मालाप, अतीतालोक, अनुचिंतन, जीवनिका कर पोथी गोविंद दास आ उमेश मिश्र, समीक्षा विवेचन कर पोथी मैथिलीक समस्या, मैथिली नाटक अधुनातन संदर्भ, मिथिलाक सामाजिक इतिहास, श्रोत्रिय समाज ओ पांडित्य परंपरा सन ग्रंथ रत्न सेहो पाठक लोकनिकर समक्ष रखैत छथि। पंडित गोविंद झा कुशल अनुवादक सेहो थिकाह। विभिन्न भाषा सँ अनेक शह पोथी केर अनुवाद सेहो कयने छथि। हिनका साहित्य अकादमिक अनुवाद पुरस्कार सेहो प्राप्त छनि। 1993 में साहित्य अकादमिक मूल पुरस्कार केर संग नेपाली साहित्यक इतिहास पोथी लेल अनुवाद पुरस्कार सेहो प्रदान कयल गेलनि। हिनक अनुवाद कार्य में प्रमुख अछि संस्कृत सँ मैथिली में अनुवादित मालविकाग्निमित्र, ग्रियर्सन केर गीत दीना भद्रिक ओ गीत नेबारक, ग्रियर्सन कृत मैथिली व्याकरण, जीवनी चंडीदास, इतिहास ग्रंथ पूर्वकालीन भारतीय समाज, प्राचीन भारत, असमी उपन्यास पाताल भैरवी आ असमीय सँ अनुवादित ओ बाबा की बउआ। पंडित गोविंद झा बहुत रास पोथी कर संपादन सेहो कयने छथि। हिनक संकलित संपादित पोथी सब सेहो भाषिक साहित्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखैत अछि। हिनक अनुदित, संस्कारित, संपादित, संकलित पोथी

0: अब मैं प्रमुख छायनी विद्यापति करकर जी विभाग सार गया पत्तलक ब्याड़ी भक्ति तरंगिणी वर्ष कृत्य विद्यापति गीतावली विद्यापति गीत समग्र कीर्ति लता कीर्ति पताका वर्ण रत्नाकर गोविंद दास भजनावली पूर्वांचलीय गीत साहित्य भाषा आ समाज शिखरिणी कल्याणी कोश विद्यापति शब्द कोश जयकांत जयंतिका आदि इनमें से कतिपय ग्रंथ संघ संपादनक सेहो छनि। पंडित गोविंद झा मैथिलीक संग संस्कृत शब्द शास्त्र भूषण सार दीपिका में सेहो अपन अवदान देने छथि। तो बांग्ला मैथिली अभिधान आ लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन आदि पोथी हिनक अक्षर चेतना केर साक्षी बनल अछि। ई अपन पिता महावैयाकरण दीन बंधु झा केर पोथी मिथिला भाषा विद्योत्तन केर संपादन प्रकाशन सेहो कहने छथि। पंडित गोविंद झा अपन बहुमूल्य अवदान लेल विभिन्न सम्मान सँ अभिनंदित सेहो कयल गेलाह। साहित्य अकादमीक अतिरिक्त हिनका बिहार सरकारक राजभाषा विभाग सँ 1988 में कामिल बुल्के पुरस्कार चेतना समिति सँ ताम्रपत्र 2001 में बिहार सरकार सँ ग्रियर्सन पुरस्कार आ 2005 में प्रबोध साहित्य सम्मान प्रदान कयल गेलनि। एकरा सभक संग अक्षर साधक पंडित गोविंद झा के 1997 में अभिनंदन ग्रंथ अर्चा ओ चर्चा सेहो समर्पित कयल गेलनि। साहित्य अकादमी दिस सँ हिनक वयस केर 100 बरखक पूर्ण करबा केर उपलक्ष्य में संगोष्ठीक आयोजन सेहो कयल गेल। पंडित गोविंद झा कर जन्म संस्कृत मैथिली कर प्रख्यात विद्वान महावैयाकरण पंडित दीन बंधु झा आ जागेश्वरी बहुआ सिंहकर पुत्र रत्न रूप में मधुबनी जिला कर इसहपुर गाम में बैसाख कृष्ण दशमी तदनुसार 24 अप्रैल 1922 के भेल छलनि। ओना हिनका प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि छनि 10 अक्टूबर 1923 आ साहित्य जगत में यह प्रचलित अछि। पंडित गोविंद झा कर शिक्षा दीक्षा कर मूल आधार संस्कृते रहलनि, मुदा अपन प्रतिभाक बले आन आन भाषाक सेहो अधिकारी विद्वानक रूप में सुप्रतिष्ठित भेलाह। शब्दकोश सहायकक रूप में आजीविकाक आरंभ कैनिहार पंडित गोविंद झा राजभाषा विभाग में शब्दावली सहायक राजभाषा पदाधिकारी आ उपनिदेशक मैथिली अकादमी में उपनिदेशक कर पद के सेहो सुशोभित कयलनि। लेखन सँ कहियो विरत नहीं भेला, अपना के वर्तमानक संग सदिखन जोड़ी कर रखलनि। से लेखन में सेहो आ वैज्ञानिक साधन के अपनेबा में सेहो सोशल मीडिया पर हिनक सक्रियता में हिनक वयस बाधक नहीं बनलनि आ जीवनक अंतिम प्रहर धरि एहि पर सक्रिय रहलाह। पंडित गोविंद झा असल अर्थ में शब्द शिल्पी रहलाह। से भाषावेत्ताक रूप में सेहो आ साहित्यकारक रूप में सेहो पंडित गोविंद झा 101 बरखक वयस में 18 नवंबर 2023 के एहि नश्वर संसारक त्याग कयलनि, मुदा ओ अक्षर जगत में देल गेल अपन अमूल्य अवदान में सदिखन अमर छथि। विभिन्न साहित्य कृतिकर संग अपन कविता में सेहो मुखर छथि। पंडित गोविंद झाक कविता क्षेत्र में देल गेल योगदानो आने आन विधा जकां महत्वपूर्ण अछि। हिनक कविता संग्रह सेहो प्रकाशित छनि प्रलाप। आ साहित्य साधक कर पश्चात आव सुनै छी तारानंद झा तरुण सँ हुनकर काव्य पाठ।
1: करी संकल्प निज मन में बनी हम प्रगति पथ चारी, रह निज लक्ष्य प्राप्ति के हित हमर संघर्ष नित जारी। करी संकल्प निज मन में बनी हम प्रगति पथ चारी, रह निज लक्ष्य प्राप्ति के हित हमर संघर्ष नित जारी। अपन अधिकार केर संगहि अपन कर्तव्य हम जानी करी ओ का।

0: सहज जीवन में हुए जे राष्ट्र हितकारी, अपन अधिकार के संग ही अपन कर्तव्य हम जानी, करी ओ काज जीवन में हुए जे राष्ट्र हितकारी। तजी आलस्य के सदिखन बनी श्रम केर पुजारी, हम मनोबल पैघ हम राखी बनी निज शत्रु संघारी। तजी आलस्य के सदिखन बनी श्रम केर पुजारी, हम मनोबल पैघ हम राखी बनी निज शत्रु संघारी। क्यों नहीं पैघ आ नहीं अछि क्यों छोटे एते जानू, मेटा के भेद मन केर सब रही मिली आई भैयारी। क्यों नहीं पैघ आ नहीं अछि क्यों छोटे एते जानू, मेटा के भेद मन केर सब रही मिली आई भैयारी। रही हम स्वाभिमानी बनी करी नहीं काज किछु अनुचित, बनाबी योजना सुंदर भविष्यक हेतु सुखकारी। रही हम स्वाभिमानी बनी करी नहीं काज किछु अनुचित, बनाबी योजना सुंदर भविष्यक हेतु सुखकारी। अयाची केर थी कहूँ वंशज जकर इतिहास अछि साक्षी, रही दाता सदति बनिके बनी नहीं दीन दुखियारी। थी कहूँ हम तरुण भारत केर रही हिम्मत बढ़ौने सब, सफल जीवन बने बाहित बनी हम वीर व्रतधारी। थी कहूँ हम तरुण भारत केर रही हिम्मत बढ़ौने सब, सफल जीवन बने बाहित बनी हम वीर व्रतधारी। करी संकल्प निज मन में बनी हम प्रगति पथचारी, रहे निज लक्ष्य प्राप्ति के हित हमर संघर्ष नित जारी।
1: तारानंद झा तरुण केर काव्य पाठ अखन हमरा लोकन सुन रहल छलहुं। चलू आगा डेग बढ़ाबी आ करी शब्द विमर्श। आरंभ करै छी अपैत शब्द सँ। अपैत कहै छी जे वस्तु छूटल भेल तकरा किंवा दूषित के। हे अपैत हाथे बासन नहीं छुबू, माने दूषित हाथे बासन कर स्पर्श नहीं करू। आ अबाह, श्रोता बंधु अबाह कहै छी दुर्बल के। की कहै छी? हमर बामा हाथ बड्ड अबाह अछि, माने कमजोर अछि, दुर्बल अछि। आ अबाह एहनो स्थान के कहै छी जाहि ठाम भय होइत अछि। मानवेतर शक्ति कर कल्पना हमरा लोकनि करै छी, तकर संभावना जतो होइत अछि तकरो कहै छी अबाह। हे हुनकर गाछी बड्ड अबाह, ओहिठाम ओरिया कऽ जायब। आ अमनिया, अमनिया भेल पवित्र। आ उपयोग जाहि वस्तु केर नहि कयल गेल बासन के विशेष कऽ, तकरा सेहो कहै छी अमनिया। यौ हमर एहि लोटा के एखन छूछा नहि करब, अमनिया छै, पूजा भऽ जेतै तकर बाद एकर उपयोग करब। आ अमार, अमार भेल ढेरी। फल्लां वस्तु केर अमार लागि गेल, हुनका धन भी तक अमार लागल छनि, माने ढेरी धन के एतहि नहि समेटब तो घड़ी सेहो कहत जे हमरा लोकनि अततः कऽ रहल छी। तक विदा लेबा सँ पूर्व अपने सँ आग्रह जे मैथिली कार्यक्रम सिंहरहार अपने के केहन लगैत अछि, एहि मे की संशोधन परिवर्धन चाहै छी से हमरा लोकनि के अवश्य लिखी पठाबी। हमरा लोकनि कर पता थिक कार्यक्रम सिंहरहार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिनकोड 8460004। आ आब अगिला भेंट धरिक लेल अमलेंदु के देल जाय अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। रात्रि के 8:45 होने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क

0: नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
1: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
2: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
1: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
3: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
1: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
4: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
1: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठी चार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
0: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
2: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
3: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
4: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 1 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.

0: newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री कि ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
1: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमेरिकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, मॉनसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नमस्कार। एक तरफ आसमान से बरसती जिंदगी तो दूसरी तरफ उसी बारिश का रौद्र रूप। कहीं किसान की आंखों में अच्छी फसल के सपने हैं तो कहीं बाढ़ का पानी घरों की चौखट लांघ चुका है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं शहर कुछ घंटों की बारिश में थम जा रहे हैं और कहीं एक मोबाइल

0: पर आया छोटा सा मौसम अलर्ट हजारों जिंदगियां बचाने की उम्मीद बन जाता है। आज मॉनसून केवल एक मौसम नहीं रहा, ये विज्ञान की परीक्षा भी है, प्रशासन की तैयारी भी और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी। बदलते जलवायु परिदृश्य में मॉनसून का स्वरूप लगातार बदल रहा है। कहीं कुछ घंटों में पूरे महीने जितनी बारिश हो जाती है तो कहीं लंबे समय तक वर्षा का इंतजार बना रहता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम आने वाले खतरों को समय रहते पहचान पा रहे हैं? क्या हमारी चेतावनी प्रणाली, हमारा आपदा प्रबंधन तंत्र और हमारी सामुदायिक तैयारी इस बदलती चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज होगी चर्चा। हमारे साथ हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डीआर पटनायक, जो मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली के विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सूर्यप्रकाश, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के विशेषज्ञ, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन की रणनीतियों पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम चर्चा का विषय है में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: डॉक्टर पटनायक, शुरुआत आपके साथ करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि कुल मानसूनी बारिश भले सामान्य रहे, लेकिन जिसे कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, यानी कम समय में बहुत ज्यादा बारिश की घटनाएं बढ़ गई हैं। आईएमडी अपने मेशो स्केल और अर्ली वार्निंग मॉडल्स को इस सूक्ष्म स्तर के पूर्वानुमान के लिए पिछले कुछ वर्षों में अगर हम कहें तो किस तरीके का अपडेट उसमें आया है, क्या नई तकनीक आई है और उसका कितना असर आप देख रहे हैं?
2: जैसे आपने पहले भी बताया कि ये क्लाइमेट चेंज जो बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण जो हाई इंटेंसिटी रेनफॉल उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर बढ़ रहा है। ये एक बहुत परिमाण में हमारा जितने सारे भी डाटा देखा गया है पिछला 100 साल 50 साल अगर हम देखेंगे तो ये जो जितना हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का इवेंट जो है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज के कारण इसलिए हो रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें जो मॉइस्चर है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसका काफी बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, और जब इंस्टेबिलिटी होता है तो वो हैवी डाउनपोर हो जाता है। इसलिए अगर पूरा रेनफॉल, अगर सीजन का मॉनसून सीजन जैसे जून टू सितंबर में अगर टोटल रेनफॉल अगर कंट्री एज ए होल अगर हम देखेंगे पिछले 30-40 साल में 50 साल में तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ट्रेंड नहीं दिखने को मिलता है। वो बहुत अच्छी बात है, हमारा एग्रीकल्चर देश है। लेकिन तो हमारा जो एग्रीकल्चर देश है उसमें क्या होगा कि ये तो हमको अच्छी बात है कि रेनफॉल जो है डिक्रीजिंग ट्रेंड या इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। लेकिन जब हम टोटल रेनफॉल को हम डिवाइड देते हैं कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा या 20 सेंटीमीटर से ज्यादा एक दिन में अगर ऐसा होता है तो उसका अगर काउंट करेंगे तो वो सब दिन का बढ़ रहा है। तो आप जैसे सवाल किया कि हमारा प्रणाली में पिछले 5-10 साल में हमने क्या सुधार किया है जो कि उसका आलियन, तो हमने काफी हमारा इम्प्रूवमेंट इसमें किया है। पहली तो बात यह है कि ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन इवेंट को पहला मॉनिटर करना पड़ता है। मॉनिटर करने पर कि अगर कोई चीज क्लाउड डेवलपमेंट हो रहा है या कुछ इस समय हो रहा है तो ये कि ऐसा इमीडिएटली अगर एक दिन में या 12 घंटा में दे देगा तो उसको हम मॉनिटर कैसे करेंगे? हमारे पास मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे हैं, सरफेस ऑब्जर्वेशन है, हम बैलून छोड़ते हैं, हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, राडार है, सैटेलाइट है, उसमें कंटिन्यूअसली हमारे पास आज 50 राडार है तो हमने इसमें से कंटिन्यूअसली हम देखते रहते हैं कि कोई ये मैंने कन्वेक्टिव क्लाउड बन रहा है क्या। उसके बाद ये जब हो जाता है तो इमीडिएटली हमने इसका सूचित करते हैं कि इसी एरिया में बहुत हैवी रेनफॉल होगा। दूसरा है कि हमारे पास न्यूमेरिकल मॉडल, ये जो वेदर प्रेडिक्शन है खाली हम सैटेलाइट राडार इमेज देख के हम फोरकास्ट नहीं देते, उसमें से नहीं होगा, वो थोड़े से थोड़े हमारा 2-3 घंटा के लिए हम बता पाएंगे। लेकिन हम जब 5 दिन पहले कुछ बता रहे हैं कि 7 दिन पहले बता रहे हैं तो इस टाइप का इवेंट होने वाला है 2 दिन के बाद, इसके लिए हमें न्यूमेरिकल मॉडल चाहिए। तो न्यूमेरिकल मॉडल में हमने काफी इम्प्रूव किया है, हमारा सब जितना सारे डाटा अभी सैटेलाइट से AWS से सब आ रहा है वो मॉडल में जा रहा है, मॉडल में प्रोसेस हो रहा है, मॉडल का इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारे पास सुपर कंप्यूटर आया है, सुपर कंप्यूटर क्यों इसलिए चाहे कि बहुत पावरफुल कंप्यूटर का जरूरत पड़ता है जब वेदर प्रेडिक्शन करना पड़ता है। तो पावरफुल कंप्यूटर पहले नहीं था हमारा, अभी हमने लाया है पावरफुल कंप्यूटर जो कि अभी हमारे पास 20 पेटाफ्लॉप से भी ज्यादा मशीन है। इसका चलते हुए हमारा जो मॉडल का जो भी है अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो इसलिए अर्ली वार्निंग जो मॉडल फोरकास्ट दे देगा तो हम अर्ली वार्निंग इसमें अच्छा से कर पा रहे हैं, और अर्ली वार्निंग के कारण चलते हमारा वार्निंग जो मैकेनिज्म बाद में, और एक चीज है ऑब्जर्वेशन हो गया, मॉडलिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद हमारा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक जो बोलते हैं हम जब एक डिसीजन लेते हैं जो कि डिजास्टर मैनेजर को हेल्पफुल होगा, क्योंकि डिजास्टर मैनेजर खाली हम ये हो जाएगा कि ओडिशा में बारिश हो जाएगा ऐसा बोलने से उन्होंने पिन पॉइंट एक्शन नहीं ले पाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको लोकेशन स्पेसिफिक चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में उसको हम स्टेट लेवल से फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल में आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर कौन सा सिटी लेवल में आते हैं, तो वो इतना फाइन ट्यून करने के

0: हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम काफी मददगार होता है, और उसके लिए हमारा सेटेलाइट राडार के साथ साथ हमारा जितना भी मॉडल आउटपुट सब बन रहा है, हमारा मॉडल और हम कस्टमाइजली दूसरा मॉडल को भी यूटिलाइज करके हम एक कस्टमाइज फोरकास्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि हैवी रेनफॉल अभी जैसे ओडिशा में चल रहा है, ये काफी दिन से हमने रेड कलर वार्निंग दिया है, तो ये सब संभव है कि काफी जो ऑब्जर्वेशन मॉडलिंग कम्युनिकेशन हमारा पर डाटा एसिमुलेशन न्यूमेरिकल मॉडल फिर हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ये सारे कम्बाइंड अगर हम देखेंगे पिछले 10 साल में तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंस इंडिया में डिपार्टमेंट, उसके चलते हुए हमारा ये फोरकास्ट एक्यूरेसी भी काफी इम्प्रूव।
1: जी डॉक्टर सूर्य प्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक कह रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं मौसम विभाग की प्रणालियों में, जिससे कि जो पूर्वानुमान है वो 100% लगभग सही होने लगे हैं। अब एक व्यवहारिक सवाल पर आते हैं कि जब भी भारी बारिश या बाढ़ की चेतावनी जारी होती है तो एक आम परिवार को अपने घर के स्तर पर क्या सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए, खासकर अगर हम जैसे बात करें तो कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए, जैसे हम फर्स्ट एड किट रखते हैं अपने घर में, क्या उस तरीके से आपदा के लिए या भारी बारिश की चेतावनी बाढ़ की चेतावनी के लिए कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए, और उसमें कौन कौन सी जरूरी चीजें होनी चाहिए जो मुसीबत के समय जान बचा सकती है।
2: आनंद जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। जब भी भारी वर्ष की हम चेतावनी आती है तो जन समुदाय को तैयार रहने के लिए कहते हैं, न सिर्फ जन समुदाय बल्कि जो हमारे विभिन्न विभाग हैं जो आपदा प्रबंधन के लिए जिन जिम्मेदार हैं उनको भी तैयार रहने को कहा जाता है। अक्सर एक आम व्यक्ति को या परिवार को जब भारी वर्षा की चेतावनी मिलती है उस समय सबसे पहले तो यही होता है कि आपको कहीं भी घर से बाहर निकलने नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर रास्ते में कहीं पर भी बाढ़ मिल सकती है, कहीं पुल टूट सकता है, कहीं रास्ते बह सकते हैं, और इस तरह की कई संभावनाएं आपदाओं की होती हैं जो भूस्खलन या बाढ़ या भूमि के खिसकने के रूप में दिखाई दे सकती हैं। तो इमरजेंसीज में आपको एक तो टॉर्च, क्योंकि अक्सर जब भी भारी वर्षा होगी तो पावर सप्लाई ब्रेकआउट होगा, तो उस समय में आपको टॉर्च की एक आवश्यकता रहेगी, एक टॉर्च जरूर होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको जरूरी है घर से बाहर निकलना तो आपको एक प्रॉपर अम्ब्रेला या रेनकोट वगैरह की जरूरत रहेगी, और इसके साथ में आप जो है कहीं पर अगर जा रहे हैं और कहीं मिट्टी या मलबे से क्रॉस करते हैं तो अगर आप डंडा या रस्सी भी साथ में रखते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा जो जरूरी आपकी दवाइयां वगैरह हैं जो सर्वाइवल किट्स में जरूरी होती हैं, वाइटल मेडिसिन, वो भी आपके पास उपलब्ध रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में हो सकता है बाजार वगैरह भी खुले ना रहे, तो जो भी बारिश का समय होता है और आप पूरा चेतावनी आती है उसके अनुसार उस समय अवधि के लिए आपको पूर्ण तैयारियां अपने सर्वाइवल के लिए करके रखनी चाहिए। पहले से हम मॉक ड्रिल्स वगैरह करके रखते हैं, इवैक्यूएशन रूट का हमें पता है, कहीं पे फंस गए या रिक्तिकरण करना है तो कौन से सुरक्षित स्थल हैं या कौन से सुरक्षित भवन हैं जहां पर आप समय रहते हुए अपने बचाव के लिए जा सकते हैं, उनका भी आपको ज्ञान रहना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा आम व्यक्ति आजकल बारिश के सीजन में कहीं कहीं बाहर पर्वतीय स्थलों पर चले जाते हैं तो वहां पर बड़ा मतलब ध्यान से जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए भीड़ भाड़ इलाके में या फिसलन वाले इलाके में नहीं जाएं, और कहीं पर भी जैसे ज्यादा लोगों के जाने की संभावना है वहां जाने को आप अवॉइड करें, बचें, ताकि वहां पर भीड़ भाड़ ना हो और किसी तरह की भगदड़ ना मच पाए। तो ये अक्सर होता है कि बारिश के टाइम पे मंदिर में या जो हमारे पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं वहां इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एकदम बारिश होती है और लोगों में भगदड़ मच जाती है, उसकी वजह से भी कई बार डेथ्स हो जाती है। तो हमको तैयारी के लिए इमरजेंसी किट, जिसमें आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए, वाइटल मेडिसिन होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके पास रस्सी या लाठी हो तो और अच्छा है, और अगर सीटी भी रखते हैं तो अच्छा रहता है दूसरों को सचेत करने के लिए या बुलाने के लिए।
1: डॉक्टर पटनायक, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि मुंबई, दिल्ली और बाकी बहुत सारे महानगरों के छोटे छोटे ब्लॉक्स में अर्बन फ्लडिंग की समस्या काफी देखने को मिली है। अब इन अर्बन फ्लडिंग्स को लेकर आईएमडी के फ्लैश फ्लड गाइडलाइन सिस्टम, जिसे एफएफजीएस भी कहते हैं, उसका सटीक प्रभाव जमीनी स्तर पर नगर निगम और आपदा टीम तक कितनी तेजी से पहुंचाना संभव हुआ है, इस दिशा में क्या प्रगति हुई है?
0: आजकल जो है अर्बन फ्लडिंग जो है एक बहुत बड़ा समस्या है। हमारा जैसे अर्बनाइजेशन काफी हो रहा है, अर्बन डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बन रहा है जिसमें कि पॉपुलेशन भी बढ़ गया है, तो जब सिटी में पहले इतना बारिश होता था तो ये इतना नोटिस नहीं हो रहा था, उसका पानी थी से निकल गया, ड्रेनेज सिस्टम है, ये है।

0: तो थोड़ा सा अगर बेहतर है तो उसमें से ये फ्लडिंग नहीं होता। लेकिन आजकल क्या है, जब इंटेंस रेनफॉल इवेंट जब होते हैं, अगर 1 घंटा में कभी क्लाउड बस्ट टाइप का इवेंट, जो आपको भी पता है कि 1 घंटा में अगर 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाता है तो उसको हम क्लाउड बस्ट टाइप का भी बोलते हैं। तो ये है हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इवेंट जब होता है अर्बन में, तो इसमें ये अर्बन फ्लडिंग का समस्या आ रहा है। तो इसलिए अर्बन फ्लडिंग को हम, जो आप बता रहे हैं कि फास्ट फ्लड गाइडेंस सिस्टम हमारा जो FFGS है, ये एक WMO वर्ल्ड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन तरफ से है, ये इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारा जो इंडिया में है, हम सारे वाटर शेड रीजन के लिए हम ये अर्बन फ्लडिंग का FFGS है वो देते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि छोटे छोटे एरिया के लिए भी हमारा सब मैपिंग हुआ है, तो जितना भी रेनफॉल हमको ऑब्जर्वेशन रेनफॉल मिल रहा है वो सारे उसमें आएगा। एंड उसके बाद वो जो सॉयल मॉइस्चर है, क्योंकि जब क्या होता है, जब सॉयल मॉइस्चर ऑलरेडी वेट है, तो उसके बाद अगर बारिश हो जाता है तो उसका ड्रेनेज इतना जल्दी पानी निष्कासित नहीं हो पाता है। वो सब चीज उसी मॉडल में रहेगा FFGS, और उसमें हमें कितना रिस्क है ये एक तरह से हम गाइडेंस देते हैं। तो हर दिन हमारा सुबह भी बनता है, शाम को भी बनता है, 2 बार दिन में तो बन रहा है। तो अगले 6 घंटा के लिए देते हैं, जो कि ऑब्जर्व रेनफॉल में कितना रिस्क है, और उसके बाद हमारा फोरकास्ट भी अगले 24 आवर्स में जो कहाँ कहाँ ये होने वाला है इसका देते हैं। आज जैसे कि अभी हमने मानसून डिप्रेशन चल रहा है, अभी उड़ीसा में काफी किसी जगह में 300 मिलीमीटर रेनफॉल भी हुआ है, 250 बहुत जगह में उड़ीसा के इंटीरियर उड़ीसा में। तो हमारा फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम में हमने इंडिकेट किया था इसमें, जैसे कि अभी फिर छत्तीसगढ़ जाएगा। तो ये एक जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम है, ये आपको कम टाइम में हमको जो वार्निंग है रेनफॉल को ट्रांसलेट करके, खाली रेनफॉल कितना होगा ये इतना सफिशियंट नहीं, रेनफॉल जो होगा उसके बाद बाकी सॉयल मॉइस्चर को भी देखा जाएगा, बाकी उसका कितना ड्रेनेज में है, सॉयल मॉइस्चर का क्वालिटी है, अभी कितना वेट है, वो सब कंसिडर करके फ्लैश फ्लड। तो वही गाइडेंस जो हम दे रहे हैं ये काफी हद तक यूजफुल है। ऑलरेडी अर्ली वार्निंग हमने दे दिया, हैवी रेनफॉल या वेरी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दे दिया, तो फिर हम जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस भी उसके साथ साथ इमीडिएटली देते हैं कि कौन सा ब्लॉक है, कौन सा एरिया है, कौन सा वाटर शेड है जिसमें कि फ्लैश फ्लड गाइडेंस का रिस्क ज्यादा है।
1: इसी चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, जैसा डॉक्टर पटनायक बता रहे थे कि शहरों में जो कम समय में ज्यादा बारिश होने से बाढ़ की स्थिति हो जाती है, सूर्य प्रकाश जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब शहरों में जल भराव होता है तो अक्सर रास्तों पर चलने या बिजली के खंभों के पास जाने से हादसे हो जाते हैं। ऐसे जल भराव वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे कि सड़क पर निकलते समय और घरों के भीतर किन बुनियादी सावधानियों का पालन करें ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और आसपास के लोगों को भी वो जागरूक कर सकें?
2: आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब भी बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ ये समस्याएं होती हैं शहरी क्षेत्रों में, कि जो अवसंरचनाएं हैं, जो हमारी पावर लाइंस हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, वो भी कई बार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या प्रभावित होती हैं। ऐसे समय में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डेथ्स होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सभी को जो भी घर से बाहर हों, अगर सड़क पर हैं, तो ये ध्यान रखें किसी भी ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पोल या लाइव वायर्स के नीचे से ये ना क्रॉस करें और किसी तरह का रिस्क ना लें अगर वो पैदल भी चल रहे हों। दूसरा, अगर घर में आप रह रहे हैं तो जो भूतल पर रहते हैं उनके घरों में भी बाढ़ का पानी आ जाता है, भर जाता है, और कई बार उनका इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम भी बिल्कुल भूतल पर ही होता है, जो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है कई बार, तो उसको अगर हमने स्विच ऑफ नहीं किया तो उससे भी करंट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आप जो है अपना मेन कंट्रोल रूम जो है या स्विच है उसको हमेशा ऑफ कर दीजिए, ताकि पावर कंटिन्यूटी की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट लगने के खतरे कम से कम हो जाए। और दूसरा, अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, तो जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो सब पासिस हैं या अंडरवेज हैं, उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सबवेज में कई बार लो लाइंग एरिया होता है और काफी पानी भर जाता है जिसका अंदाजा हमें नहीं लगता है, तो ऐसे में भी डूबने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ये 2 बड़े प्रिकॉशन हैं जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है कि आप किसी भी पानी के भराव क्षेत्र में बिना अंदाज लगाए और अनुमान के आप कहीं भी उसमें एंटर ना करें, और दूसरा पावर सप्लाईज और करंट का हमेशा ध्यान रखें कि उनसे दूर रहें, बच के रहें, और कोई भी ऐसी संभावना नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी को करंट लग सके। तो ये 2 महत्वपूर्ण जानकारियां जिसका ध्यान रखने की जरूरत है। मैं इसके अलावा ये कह रहा था कि गैस सप्लाई का भी है, हमारे यहाँ PNG है दिल्ली में, जैसे उसमें भी कई बार लीकेज या कुछ चांसेस हो सकते हैं, तो उन चीजों का भी ध्यान रखें कि गैस सिलेंडर वगैरह या आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं वो भी आप जो है भराव वाले क्षेत्र से ऊपर रखें, मतलब जितना अगर आप ऊंचाई पे रखेंगे उतना

0: सुरक्षित रहेंगी वो चीजें। ठीक
1: डॉक्टर पटनायक,
0: है
1: अगर आपसे ये समझने की कोशिश करें कि हाल के वर्षों में डॉपलर वेदर रडार का नेटवर्क काफ़ी बढ़ा है और मौसम के सटीक और नाउकास्टिंग का मतलब तत्काल पूर्वानुमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रडार तकनीक से जो सुधार आया है, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कितने प्रतिशत का सुधार आप देखते हैं और इससे आम जनमानस को कितना फायदा हो रहा है, किसानों के लिए ये कितनी राहत की बात है और सरकारी तंत्र इससे किस तरह लाभान्वित हो रहा है।
2: देखिए, ये अभी जो आप बताए कि डॉपलर राडार हमारा काफी नेटवर्क बढ़ गया है। अभी हम अगर 2014-15 में जो 15-20 राडार के नीचे ही था, उसमें आज हमारा 50 राडार के आसपास आ गया। तो ये डॉपलर राडार में क्या हो रहा है कि जब इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है तो सारे जगह में हम जब रडार रखेंगे तो उसका 300 किलोमीटर का भी 400 किलोमीटर इफेक्टिवली 200 किलोमीटर ये रेंज में राडार जो है, कोई भी कन्वेक्टिव सेल जो है, जो कि ये हैवी रेनफॉल, जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल इवेंट को जो देता है, उसको मॉनिटर करने के लिए राडार एक बहुत उपयोगी है। तो पर्टिकुलरली जब हम जो जगह में जो हमारा ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन का कोई मैकेनिज्म है नहीं, जैसे पहाड़ी एरिया में, उत्तराखंड एरिया, ये एरिया में भी वो राडार जो बहुत हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि उसको मॉनिटर करेंगे। जैसे आपने बताया नाव कास्टिंग, तो ये राडार डाटा लेके हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नाव कास्टिंग देते हैं, अभी हर 3 घंटा में हम अपना नाव कास्ट देते हैं और अपडेट करते हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट एरिया में अगर कोई भी खतरा है तो उसमें रेड कलर वार्निंग दिया जाता है। तो जैसे कि आजकल ये हो रहा है कि आकाशीय बिजली में बहुत सारे लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, मैंने बहुत सारे कैजुअलिटी जो डेथ हो रहा है आकाशीय बिजली में होता है। तो ये मानसून टाइम में जो क्लाउड होता है, क्लाउड टू क्लाउड भी बिजली होता है, क्लाउड टू ग्राउंड भी बिजली होता है। तो जो क्लाउड टू ग्राउंड वाला जो बिजली स्ट्राइक होता है उसमें बहुत सारा जानमान का क्षति होता है। तो ये जो लाइटनिंग जो स्ट्राइक हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसमें हमारा नावकास्टिंग काफी हेल्पफुल है। तो हमने पहले इतना हमारा नहीं था, जो नावकास्टिंग में हमने जितना इम्प्रूवमेंट किया है राडार नेटवर्क के चलते, हमारे पास जो आपने और भी बताया AI ML भी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, उसको भी हम यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई भी अगर सेल जो कन्वेक्टिव सेल बनते हैं राडार में दिखता है, वो धीरे धीरे मूव होता है। वो अगर 2 घंटा पहले अगर इसी जगह में है तो ये हमारा दिल्ली की तरफ आ रहा है, 2 घंटा के बाद यहाँ हो जाएगा, तो हमने 2 घंटा पहले ही वार्निंग दे देते। तो ये छोटा सा शॉर्ट टर्म में जो वार्निंग भी है, काफी हद तक जो पॉपुलर सिटी है इसमें के लिए भी बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि लोग ट्रैफिक जाम हो जाता है, आप जैसे देखे होंगे कि बारिश के कारण। तो ये सब चीज के लिए हमारा राडार जो नेटवर्क, राडार जो इंटेंसिटी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं राडार रिलेटेड, वो सब यूजफुल होता है। और दूसरी बात, जो गाँव के लिए भी जो खेती में भी काम करते हैं वो एक्सपोज होते हैं, तो उसको लाइटनिंग का भी थोड़ा सा इंडिकेशन मिलना चाहिए। अगर उनको थोड़ा सा 2 घंटा पहले भी अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होने का अगर संभावना अगर बताया जाता है, तो वो क्या करते हैं कि उस जो सेफ एरिया में चले जाते हैं। तो वो सब चीज ये एक हिस्सा में काफी मदद करता है हमारा राडार एंड उसका जो हमारा जो टेक्निक है।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक बता रहे हैं कि थंडर स्ट्रॉम को लेकर भी जानकारी प्रदान की जाती है जिससे कि लोग सेफ जगह पर चले जाएं, आपसे इसी विषय पर समझना चाहते हैं कि जो सुरक्षित जगह है उसको लेकर भी बहुत सारी धारणाएं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो खुले में हैं तो किसी टीन शेड के नीचे चले जाएं या फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो वो सुरक्षित रहेंगे। जो किसान खेतों में रहते हैं वो कहाँ जाएं, चूंकि आसपास कोई छिपने की जगह नहीं होती है, पक्की छत नहीं होती है, तो वो क्या करें। और एक और बड़ा मिथ है, जो लोग समझते हैं कि वो घर में हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें किसी तरह की सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, वो घर में हैं, वो सुरक्षित हैं। तीनों ही स्थितियों के लिए आप आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें क्या सलाह देंगे?
0: बहुत ही संबंधित सवाल है, क्योंकि जब भी हमारे भारी वर्षा होती है उसके साथ थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग, ये दोनों इवेंट्स भी अक्सर होती हैं, पर्टिकुलरली क्लाउड वर्स के टाइम पर। तो उस समय में बड़े ये ध्यान देने की बात है कि आप अगर खेत में हैं किसान लोग, तो वो पेड़ तले ना जाएं। पेड़ तले बिजली लगने की जगह घटनाएं ज्यादा होती हैं, और अगर आप खुले मैदान में दोनों पैर एक साथ इकट्ठे करके उड़कू बैठ जाते हैं, जैसे मुर्गा बैठता है, तो उसमें करंट लगने की घटनाएं कम होती हैं। लाइटनिंग से हमारे यहाँ काफी डेथ्स होती रही हैं, और इसकी मेन वजह जैसे आपने कहा कि आप टीन शेड के नीचे चले गए, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल है, तो वहां पर करंट लगने का खतरा ज्यादा होता है। अगर ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और आप के जरिए अगर करंट पास करता है तो आपके बॉडी पे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो अक्सर लोग सोचते हैं छाता ले लें, पेड़ के नीचे चले जाएं, तो हम सेफ हैं, परंतु ऐसे में सेफ्टी आपके एक्शन पर है कि आप अगर उस समय में खुले में हैं और पास में नजदीक कोई सेफ शेल्टर नहीं है, तो आपको वहीं पर उकड़ू।

0: पैर जोड़ के बैठना चाहिए ताकि आपके बॉडी के थ्रू मिनिमम लेवल से करंट पास हो और सीधा ग्राउंड में चला जाए। तो ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन होती है। और दूसरा, शहरों की हम बात कर रहे हैं, शहरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हम बहुत यूज करते हैं। जब भी लाइटनिंग होती है तो उसमें अक्सर ये संभावना होती है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के जरिए जो लाइटनिंग का करंट फ्लो कर जाए और आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी फेल हो सकते हैं। तो कभी भी लाइटनिंग होती है तो उसमें अक्सर हमें प्लग्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के निकाल देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि घर में लाइटनिंग की वजह से कोई करंट का प्रवाह ना हो। तो ये दोनों प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं। और अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं तो भी आप सेफ साइड में होकर अपनी गाड़ी खड़ी कर दें ताकि आपको करंट की संभावना कम से कम रहे।
1: डॉक्टर पटनायक, आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि अलग अलग राज्यों में इस समय मॉनसून की वर्तमान स्थिति अलग अलग है। अगले 15 दिनों या अगले 1 महीने की हम बात करें तो भारत के कुछ राज्यों का जिक्र करते हुए अगर समझा पाएं आप कि मॉनसून की क्या स्थिति रहने वाली है।
2: आज तो 29 जुलाई है, आज अगर हम देखेंगे तो एक मानसून टाइम में जो बारिश देता है, मानसून डिप्रेशन सिस्टम जो है, बे ऑफ बंगाल के से होते हुए उड़ीसा, उड़ीसा के बाद इंटीरियर उड़ीसा, थोड़ा सा झारखंड एरिया, छत्तीसगढ़ तरफ मूव हो रहा है। तो आज अभी वो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के तरफ भी एंटर हो रहा है। इससे चलते काफी जो वेस्टर्न उड़ीसा में है, इंटीरियर उड़ीसा में आज जो है रिपोर्ट हो गया, बहुत बारिश रिपोर्ट हुआ है। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो गया है, कुछ कुछ जगह में 300 मिलीमीटर रेनफॉल भी ज्यादा हुआ है, उससे भी ज्यादा हुआ है। बहुत सारे स्टेशन में है 200 से भी ज्यादा रेनफॉल हुआ है, तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल है। तो ये एक बहुत हैवी रेनफॉल जो है वहाँ उसी एरिया में काफी फ्लडिंग उसके भी चलते, और वो थोड़ा सा वेस्टवर्ड जाएगा तो छत्तीसगढ़ एरिया में भी हमने चेतावनी दिया है, थोड़ा सा विदर्भा एरिया में भी चेतावनी दिए हैं। तो ये जो अभी एक्टिव जो मानसून सेंट्रल इंडिया मध्य भाग में है, एक दो दिन चलेगा वो, जब तक ये सिस्टम थोड़ा सा वीक ना हो जाए। तब जब ये उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है कि मानसून ट्रफ ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया के पार्ट में भी थोड़ा सा बारिश होगा। जुलाई महीना एंड होने वाला है, जुलाई तो आप रेनी मंथ है, आपको पता है जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश जो होता है हमारा मानसून सीजन में जुलाई महीना में होता है। और इस बार भी जुलाई खराब नहीं हुआ है, जुलाई अच्छा हुआ है। 1 जुलाई से अगर आज 3 तक देखेंगे तो हमारा जस्ट 1% रेनफॉल कम हुआ है। जून में हमारा 38% कम हुआ था, तो जुलाई में इतना कम होने के कारण आज के डेट में हम जो कंट्री का रेनफॉल है, फर्स्ट जून से अगर हम 28 जुलाई का मानेंगे तो लगभग 15% रेन थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि जो जून में जो कम हुआ था वो हमको जुलाई में काफी हद तक मेकअप हो गया है। लेकिन आप यस जो जैसा बता रहे हैं कि रेनफॉल जब देता है तो आपका हैवी रेनफॉल देता है, बाढ़ वगैरह भी स्थिति आता है। और दूसरा, अगले महीने के हर दिन हम फोरकास्ट करते हैं 7 दिन के लिए, जैसे कि वार्निंग देते हैं पर्टिकुलरली, लेकिन महीने का जो फोरकास्ट है हम वो महीने में एंड में करेंगे। जुलाई का एंड में अभी आ गया है तो 31 जुलाई को हम अगस्त के लिए ओवरऑल एक फोरकास्ट भी बनाएंगे कि अगस्त मंथ कैसे रहने वाला है। और बाकी हमारा जो रेगुलर फोरकास्ट है हर दिन, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए चाहिए सिस्टम वगैरह, वार्निंग वगैरह, वो देते रहेंगे। एंड हर हफ्ते अगर गुरुवार को हमने एक 4 हफ्ते का फोरकास्ट भी देते हैं, तो वो भी हमारे आने वाले गुरुवार को ये हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर हम मंथली फोरकास्ट भी देते हैं। तो इसीलिए हमारे जो फोरकास्ट है सारा डिफरेंट टाइम स्केल के देंगे। अभी अभी फिलहाल मानसून अगर कंट्री एज ए होल अगर देखेंगे, आज तक थोड़ा सा मानसून रेनफॉल कम हुआ है, 15% कम रेनफॉल हुआ है।
1: सूर्य प्रकाश जी, आकाशवाणी के इन कार्यक्रमों की कोशिश यही होती है कि श्रोताओं की जिज्ञासाओं को हम समाधान करें और साथ ही साथ समस्याओं का समाधान भी उन तक पहुंचाएं। मॉनसून में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में यात्रा करना पसंद करते हैं, आपने भी कुछ समय पहले उसका जिक्र किया था। वहां अचानक लैंडस्लाइड आ जाती है या फ्लैश फ्लड का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि सैलानियों या स्थानीय लोग जो वहां की यात्रा की योजना बना रहे हैं या जो वहां हैं, फंस जाने की स्थिति में तुरंत क्या सुरक्षात्मक कदम वो उठाएं?
0: भूस्खलन काफी मात्रा में और कई जगहों पर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, और उसकी जब भी ऐसा घटना में आप अगर उसमें फंस जाते हैं तो सबसे पहला तो ये कि आप अपना बचाव के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फंस गए हैं तो, अगर गाड़ी में हैं तो गाड़ी को जो भूस्खलन वाला क्षेत्र है उसे या तो पहले रोक दें या तुरंत आगे जा निकलने के बाद ही रोकें, बीच में नहीं रोकेंगे। ऐसे में भूस्खलन में दबने की चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपकी गाड़ी भूस्खलन क्षेत्र में खड़ी रहती है। दूसरा, अगर आप पैदल जा रहे हैं और अगर कहीं पर भूस्खलन में आप फंस जाते हैं तो आपको नियरेस्ट जो सुरक्षित बाउंड्री है उसकी तरफ जाना चाहिए, अप स्लोप एरिया में, नीचे की तरफ नहीं। लोग, आपने देखा होगा अभी जो पीछे धराली में हुआ था, लोग नीचे की तरफ भाग रहे थे, जिधर भूस्खलन चल रहा था उधर ही उसी दिशा में लोग भी भाग रहे थे। तो

0: ऐसे में दबने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा, अगर आप दर्शक हैं और आप देख रहे हैं कि कोई फंस गया है या कोई गाड़ी फंस गई है, तो तुरंत हमें 112 112 पर फोन कर देना चाहिए, ताकि सहायता करने वाले जो हमारे आपदा मोचन बल के कर्मी हैं वो वहां पहुंच जाएं और समय पर उनको रेस्क्यू कर पाएं। तो ये सब चीजों का ध्यान बहुत देना जरूरी है। और एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो जो है, भूस्खलन में ज्यादातर कैजुअलिटीज 2 वजह से होती हैं। एक, कोई पत्थर सिर पे आके गिर गया, हेड इंजरी हो जाती है। तो आपको जैसे भूकंप में हम हेड को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे ही भूस्खलन में भी अगर आपदा में फंस जाते हैं तो अपने सिर को हमेशा बचा के रखें, उस सिर पे हाथ डाल लें या कोई और कुछ रख लें, ताकि आपको हेड इंजरी नहीं हो। दूसरा, अगर मलबे में फंस जाते हैं तो मलबे में एक हम कहते हैं एस्फिक्सिएशन होता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर मलबा चला जाता है और आपको सांस लेने के लिए दिक्कत आने लग जाती है और उसकी वजह से डेथ्स होती हैं। तो ऐसे में कभी भी ऐसा हो तो आपको हमेशा अपना अंदाज लगाना है कि आप कैसे फंसे हैं, ऊपर हैं या नीचे हैं। अगर आप थूकेंगे तो ग्रेविटी से थूक हमेशा आपकी ठोड़ी की तरफ आएगा, और अगर नाक की तरफ जा रहा है इसका मतलब आप उल्टे हो गए हैं। भूस्खलन में फंसने में कई बार अपने घर में है और घर पूरा उलट पलट जाता है भूस्खलन के दौरान। तो पहले तो अपनी परिस्थिति की जानकारी लेनी है कि हम सही दिशा में ऊपर की तरफ हैं या उलट गए हैं। तो ऐसे कई सारे प्रिकॉशंस को हमें देना है और ध्यान रखना है, ताकि घबराहट ना हो और आप अपने बचाव के लिए उपाय कर पाए। इससे पूर्व आपको उनके संकेत भी देखने हैं। भूस्खलन जब भी शुरू होता है, वर्षा के दौरान जो पानी की वजह से भूस्खलन होते हैं, वो अक्सर पहले थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकलती है, फिर बड़े पत्थर खिसकते हैं। तो अगर कहीं से ऐसे मिट्टी खिसक रही है और बह रही है और आ रही है, तो हमेशा हम उस क्षेत्र में ध्यान पूर्वक जाएं, और जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी जहां जहां ऐसा भूस्खलन का खतरा होता है वहां पे बोर्ड लगाते हैं कि यहाँ भूस्खलन या भूधसाव की संभावनाएं हैं, तो उन क्षेत्र में वर्षा के दौरान जाने के लिए कोशिश ना करें। यही हमारे बचाव के उपाय हैं।
1: मानसून सिर्फ बादलों का बरसना भर नहीं है, यह हमारी मिट्टी की सौंधी महक है, हमारे किसानों की उम्मीद है और हमारी नदियों की रवानी है। लेकिन प्रकृति जब अपनी रौ में आती है तो एक बात हमें साफ समझा जाती है कि तैयारी ही बचाव है और जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा से स्पष्ट है कि मौसम विज्ञान की सटीक तकनीक और आपदा प्रबंधन की मुस्तैदी तब तक अधूरी है जब तक हम और आप एक सजग नागरिक बनकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। जरा सी सावधानी, सही जानकारी और आपदा के समय एक दूसरे का थमा हुआ हाथ किसी का घर बहने से बचा सकता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर पटनायक आपका, प्रोफेसर सूर्य प्रकाश आपका बहुत बहुत आभार।
2: नमस्कार।
0: धन्यवाद आपका भी।
3: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है लोक माधुरी।

कार्यक्रम लोक माधुरी में आप सबों का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं दीपक कुमार झा।

श्रोताओं, लोक माधुरी कार्यक्रम के आज के इस अंक में हम बात करेंगे लोक गाथाओं के बारे में। हम चर्चा करेंगे कि लोक गाथा क्या है, इसके क्या तत्व हैं, इसकी क्या प्रासंगिकताएं हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत आइए एक लोक गाथा से ही करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कप्पल पासवान और उनके साथियों द्वारा गाया गया ये लोक गाथा। श्रोताओं, अपने समाज में लोक गीतों की तरह ही लोक गाथा का भी प्रचलन रहा है। लोक गाथा को कथात्मक गीत भी कह सकते हैं। इसको गाकर

नृत्य करने की भी परंपरा रही है। लोक गाथा की परिभाषा करते हुए विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न विचार प्रकट किए हैं, किंतु परिभाषाओं में कुछ सर्वमान्य तत्व विद्यमान हैं। लोक गाथा को कथात्मक गीत अथवा गीत कथा भी कहा गया है। फ्रैंक सिजविक लोक गाथा को सरल वर्णनात्मक गीत मानते हैं, जो लोक मात्र की संपत्ति होती है और जिसका प्रसार मौखिक रूप से होता है। प्रोफेसर एफ बी गुमेर ने इनकी विस्तृत चर्चा की है। उनके अनुसार लोक गाथा गाने के लिए लिखी गई ऐसी कविता है जो सामग्री की दृष्टि से प्रायः व्यक्तित्व विहीन रहती है और संभवतः उद्भव की दृष्टि से सामुदायिक नृत्यों से संबद्ध रहती है, पर इसमें मौखिक परंपरा ही प्रधान है। डॉक्टर मेयर लोक गाथा को छोटे छोटे पदों में रची कविता मानते हैं, जिसमें कोई लोकप्रिय कथा विस्तार से कही गई हो। लूसी पॉन्ड लोक गाथा को एक साधारण कथात्मक गीत मानते हैं और इसकी उत्पत्ति को संदिग्ध बताते हैं। तात्पर्य यह कि लोक गाथाओं में गीतात्मकता अनिवार्य तत्व है। कथानक प्रभावशाली और विस्तृत होता है, पर उनके रचयिताओं का पता नहीं होता। ये समाज के किसी वर्ग और व्यक्ति विशेष से संबद्ध नहीं है, अपितु संपूर्ण समाज की धरोहर है। इनका उद्भव जनसाधारण की मौखिक परंपरा से होता है। काव्य कला के सौंदर्य और गुणों का इनमें अभाव रहता है। भारत में लोक गाथाओं की बड़ी ही व्यापक और दीर्घ परंपरा पाई जाती है, परंतु इसकी कोई निश्चित संज्ञा नहीं है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में इनके भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। महाराष्ट्र में इन्हें पांवड़ा, गुजरात में कथा गीत तथा राजस्थान में गीत कथा कहते हैं। अपने मिथिला क्षेत्र में भी कई प्रकार के लोक गाथा हैं, जैसे कि राजा सलहेश, डोमकच, झरनी, राजा भरथरी आदि। यूं कहें कि भारतीय लोक गाथाओं के अनेक प्रकार हैं। स्थूल रूप से इनका वर्गीकरण विषय तथा आकार की दृष्टि से किया जा सकता है। वृहत गाथाओं का आकार कभी कभी प्रबंध काव्यों के समान भी पाया जाता है, किंतु लोक गाथाओं का वास्तविक वर्गीकरण विषय की दृष्टि से ही समीचीन होगा। श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक लोक गाथा। इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं राजा गोपी चंद्र की गाथाओं को, जिसमें स्वर दिया है सुरेश लाल देव ने।

अभी आप सुन रहे थे राजा गोपी चंद्र की गाथा सुरेश लाल देव से। श्रोताओं, लोक गाथा के कई प्रकार हैं, जैसे प्रेम कथात्मक गाथा, वीर कथात्मक गाथा, रोमांच कथात्मक गाथा, योग कथात्मक लोक गाथाएं आदि। प्रथम कोटि की लोक गाथाओं में प्रेम संबंधी वर्णन ही अधिक रहता है। प्रणय में उत्पन्न अनेक घटनाएं एक स्थान पर संजो दी जाती हैं। इनमें प्रेम विषम परिस्थिति में उत्पन्न होता है तथा उसी में पलता और बढ़ता है। इसी कारण संघर्ष की अवस्था अनिवार्य होती है। पिहुला बाला लखंदर, शोभा नायका बंजारा तथा भरथरी चरित में वियोग की शीर्षावस्था के दर्शन होते हैं। द्वितीय वर्ग की गाथाएं वीर कथात्मक गाथाएं हैं। इन लोक गाथाओं में किसी वीर के साहसपूर्ण कौशल का वर्णन अभीष्ट होता है। इस प्रकार की लोक गाथाओं में प्रायः उसी वीर पुरुष के चरित्र को उभारा जाता है जो नायक होता है। कहीं तो वह किसी आपदग्रस्त नारी की रक्षा करते हुए दिखाई पड़ता है, तो कहीं न्याय की विजय के लिए अन्याय से संघर्ष करता हुआ। इस प्रकार की गाथाओं में आल्हा सर्वश्रेष्ठ है। लोड़िकायन तथा कुंवर विजयमल की गाथाएं भी इसी कोटि में आती हैं। तृतीय प्रकार की गाथाओं में रोमांच या रोमांस की प्रधानता होती है। इस प्रकार की गाथाएं प्रायः नायिका प्रधान पाई जाती हैं। नायिकाओं का लौकिक जीवन रोमांचकारी घटनाओं से भरा होता है। इस कोटे में प्रमुख रूप से दो लोक गाथाएं उल्लेखनीय हैं, सुरठी तथा बिहुला बाला लखंदर। इनका मुख्य उद्देश्य सत्य की असत्य पर विजय है। कथा में नायक बाद में योग धारण कर जोगी बन जाते हैं और सभी सुख सुविधाएं छोड़कर संसार से विरक्त हो जाते हैं। इन्होंने इस कोटि के अंतर्गत राजा भरथरि तथा राजा गोपीचंद्र की गाथाओं को अलग से स्थान दिया है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रधान रूप से कुछ प्रमुख लोक गाथाएं प्रचलित हैं। इनमें से कुछ हृदयग्राही लोक गाथाओं का विवरण भी आता है। आइए सुनते हैं राजा भरथरि पर आधारित लोक गाथा।

0: अभी आप सुरेश लाल देव से राजा भर्थरी पर आधारित लोक गाथा सुन रहे थे। इसी के साथ लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी अब यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के लिए वाचन और निर्माण दीपक कुमार झा का था, प्रस्तुतकर्ता थे विनीत कुमार ठाकुर और संयोजन था अमरनाथ प्रसाद का।
1: अभी आप लोक माधुरी सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है गीतों के रंग।

अभी आप सुन रहे थे गीतों के रंग, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। इस दौरान हमने आपको सुनाए कुछ कुछ होता फिल्म कसूर से, दिव्य शक्ति, दड़ी पार और राजा। गायक कलाकार थे कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। आकाशवाणी दिल्ली से समाचार होंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और

0: प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से आज संसद भवन में स्काई रूट एरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ पवन चंद्रा ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्काई रूट एरोस्पेस की प्रेरणादायक यात्रा, विक्रम 1 मिशन और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य को लेकर कंपनी की योजनाओं पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में HS प्रणॉय, थारुन मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।